शुभ सवेरा, नमस्कार। ₹90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं सुनीता सिंह, अपने सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं, हार्दिक अभिनंदन करती हूं। श्रोताओं, आज मंगलवार है, विक्रम संवत 2083 के आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि और शक संवत 1948 के आश्विन मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 13 अक्टूबर सन 2026। इस समय 7:04 और 20 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की ये सभा अब आरंभ होती है।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम जीवन सौरभ, उसके बाद अक्षय निधि, और फिर आनंद लीजिएगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम का। सुबह 8 बजे वतन का राग कार्यक्रम में हम बात करेंगे सिस्टर निवेदिता की। प्रकृति की पुकार, ये कार्यक्रम सुबह 8:30 बजे होगा। आज का विषय पर्यावरण संरक्षण और कानून। योग संवाद कार्यक्रम में आज की चर्चा का विषय होगा वैराग्य आदि गुणों से जीवन मुक्ति। हमारा विशेष कार्यक्रम होगा सुबह 9:30 बजे। 10 बजे सुनिएगा नगर की सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा। 10:10 का वक्त होगा रेडियो रिपोर्ट का। हिंदुस्तान हमारा कार्यक्रम में सुबह 10:30 बजे हम आपको सुनवाएंगे भूला भाई देसाई पर केंद्रित कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। प्रसारण समय सुबह 11:00 बजे। विषय आयुर्वेद में प्रकृति का स्वास्थ्य से संबंध। और 11:30 बजे सुनिएगा धारावाहिक युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो श्रोताओं, ये था एक संक्षिप्त सा परिचय आज सुबह प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। एक छोटा सा अंतराल लेते हैं और उसके बाद आज की पहली प्रस्तुति आप सुनेंगे, कार्यक्रम जीवन सौरभ।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: जीवन सौरभ।
2: एक गांव की चार महिलाएं कुएं पर पानी भरने गईं। पानी भरते समय चारों महिलाएं इधर उधर की बातें कर रही थीं। कुछ समय बात करने के बाद वे अपने बेटों की तारीफ करने लगीं। पहली महिला बोली, मेरा बेटा काशी से पढ़कर आया है। वह संस्कृत विषय का बड़ा विद्वान हो गया है। बड़े से बड़ा ग्रंथ उसे मुंह जुबानी याद है और वह बड़े विश्वविद्यालय में नौकरी भी करने लगा है। वहीं दूसरी महिला बोली, मेरे बेटे ने विज्ञान की पढ़ाई की है। वह वैज्ञानिक बन गया है और एक दिन सबसे बड़ा वैज्ञानिक बन जाएगा। तीसरी महिला बोली, मेरे बेटे ने अच्छी शिक्षा ली है और वह शिक्षक बन गया है और दूसरे गांव के विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाता है। चौथी महिला इन सब की बातें चुपचाप सुन रही थी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। बाकी महिलाओं से रहा नहीं गया तो उन्होंने उस महिला से पूछा, बहन तुम भी तो बताओ कि तुम्हारा बेटा आजकल क्या करता है। इस पर चौथी महिला ने थोड़ा संकोच करते हुए धीमी आवाज में कहा, मेरा बेटा पढ़ा लिखा नहीं है, वह खेतों में काम करता है। ये सब बातचीत होने के बाद चारों महिलाएं पानी का घड़ा लेकर अपने अपने घरों को चली। तभी पहली महिला का बेटा आता दिखाई दिया। उसने अपनी माँ के साथ अन्य महिलाओं को नमस्कार किया और आगे चला गया। इसी तरह दूसरी और तीसरी महिला के बेटे भी रास्ते में मिले और सभी को नमस्कार करते हुए आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद चौथी महिला के बेटे ने जब रास्ते में अपनी माँ को सिर पर पानी का घड़ा लेकर आते देखा तो वह दौड़कर आया, उसके सिर से घड़ा उतारा और बोला, माँ तुम क्यों चली आई, मुझे कह दिया होता। यह कहकर वह घड़ा अपने सिर पर रखकर घर की ओर चल दिया और तीनों महिलाएं देखती रह गईं।

0: श्रोताओं, जिंदगी में केवल किताबी ज्ञान ही काफी नहीं होता, बच्चों में व्यवहारिक ज्ञान का होना भी आवश्यक है। किताबी ज्ञान केवल हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए होता है और उस ज्ञान का उपयोग हमें इस दुनिया में करना है, लेकिन हमारे व्यवहार के तौर तरीके तो हमें इस दुनिया से ही सीखने होते हैं।
1: जीवन सौरभ।
2: न जी भर के देखा न कुछ

नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, हमारे प्राचीन ग्रंथ वेद, पुराण, उपनिषद जैसे अक्षय निधि हैं। यही अक्षय निधि डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी के स्वर में आपके लिए।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज सुनिए ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 41 से वाचन। ऋषि हैं ग्रत्समत एवं भार्गव शौनक, देवता हैं वायु इंद्रवायु मित्रा वरुण अश्विनी कुमार इंद्र विश्वेदवा सरस्वती धावा पृथ्वी एवं अग्नि। छंद है गायत्री अनुष्टुप एवं बृहती।
1: वायो ये ते सहस्रिणो रथा सस्ते भिरा गहि नियुत्वान सोम पीतये। हे वायुदेव, आप अपने घोड़ों से युक्त हजारों रथों से सोमपान करने के लिए आए। नियुत्वान वायवा गह्ययम् शुक्रो अयामिते गन्तासि सुन्वतो गृहम्। याज्ञिकों के पास नियुत रथ में सवार होकर पहुँचने वाले हे वायुदेव, आपके निमित्त यह देदीप्यमान सोमरस तैयार किया गया है। इस हेतु हम आपका आवाहन करते हैं। शुक्रस्याद्य गवाशिर इंद्रवायु नियुत्वतः आयातम पिबतम नरा। हे नेतृत्व प्रदान करने वाले इंद्र और वायुदेवो, आप आज घोड़ों से युक्त होकर गौ का दूध मिला हुआ तेजस्वी सोमरस पीने के लिए आए और पान करें। अयम वाम मित्रा

0: द्रुहा ध्रुवे सदस्युत्तमे सहस्रस्थूण आसाते। आपस में कभी द्रोह न करने वाले हे तेजस्वी मित्र और वरुण देवो, हजार स्तंभों पर स्थित सशक्त श्रेष्ठ यज्ञ मंडप में आप विराजें। तासम राजा घृतासुति आदित्या दानुनस्पति सचेते अनवह्वरम। सम्राट रूप घृताहुति स्वीकार करने वाले दानशील आदिति पुत्र मित्र और वरुण देव, कुटिलता से रहित सरल हृदय वाले साधकों याजकों की ही सहायता करते हैं। गोमधु शु ना सत्याश्वा वद्या तमश्विना वर्ती रुद्रा नृपायम। हे अश्विनी कुमारों, हे सत्य सेवी रुद्र देवो, जिस सोमरस का पान यज्ञ में नेतृत्व प्रदान करने वाले लोग करेंगे, उस सोमरस को गौओं तथा अश्वों से युक्त रथ में आप भली भांति लाएं। नयत परो नांतरम आदधर्षद वृषण वसु दुःशंसो मर्त्यो रिपुः। हे धनवर्षक अश्विनी कुमारो, समीप में रहने वाले या दूर रहने वाले कटुभाषी शत्रु जिस धन को नहीं चुरा सकते, उसे हमें प्रदान करें। ता न आ वोडहमश्विना रईम पशंग संदृशम धृष्ण्या वरिवो विदम। हे उत्तम स्तुति के योग्य अश्विनी कुमारो, आपके पास जो सुवर्ण युक्त नाना प्रकार का ऐश्वर्य है, वह धन हमारे लिए ले आए। इंद्रो अंग महद भयमभि शदप च्युयवत सहि स्थिरो वचर्षिणि। युद्ध में स्थिर रहने वाले विश्वद्रष्टा इंद्रदेव महान पराभवकारी भय को शीघ्र ही दूर करते हैं। इंद्रश्च मृडयाति नो न नह पश्चद्दघम नशत भद्रम भवाति नह पुरह। यदि इंद्रदेव हमें सुख प्रदान करेंगे तो हमें पाप नष्ट नहीं कर सकता, वे हर प्रकार से हमारा कल्याण ही करेंगे।
1: अभी आप सुन रहे थे ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 41वें वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।
2: रेडियो आजाद हिंद से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि, प्रस्तुति डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी की थी। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, जीवन में धर्म के जागरण के साथ ही घृणा खो जाती है, प्रेम बचता है, क्रोध खो जाता है, करुणा बचती है, अहंकार मिट जाता है, होश जागता है। जैसे लता फूट पड़ती है बीज से अपना विस्तार पाने के लिए, ठीक उसी तरह धर्म के जागरण से आत्मा चल पड़ती है परमात्मा की ओर, विराट में खोकर विराट हो जाने के लिए। और जीवन में धर्म के जागरण का अर्थ है हमारे भीतर मानवता का जागरण। तो अंतर जागरण के इसी प्रयास के साथ आइए आज की भजन यात्रा पर चलें।

श्रोताओं, उस परम सत्य तक पहुंचकर अंतर के सारे कलुष गिर जाते हैं, सारे विचार शांत हो जाते हैं, मन मुक्त हो जाता है, दर्शन छूट जाता है, दृष्टि छूट जाती है, हम भी नहीं बचते, फिर कोई भेद नहीं होता, हम उस परम सत्ता के विस्तार में खो जाते हैं, और यही हमारे जीवन का अनंतिम लक्ष्य है। सारी प्रार्थना, सारी वंदना इसीलिए है।

इस संसार में दौड़ है, आपाधापी है, खूब संघर्ष है, किंतु संतुष्टि नहीं है। इस संसार में न कुछ मिल सकता है, न मिलता ही है। ध्यान में, भक्ति में ये सारे भ्रम टूट जाते हैं। तृष्णा हमें बाहर की तरफ ले जाती है, जबकि ध्यान भीतर की ओर। और भीतर की ये यात्रा उस परम शक्ति से हमारा परिचय कराती है।

श्रोताओं, ईश्वर की पुकार अकारण होनी चाहिए। ये पुकार आनंद से फलित होनी चाहिए। किसी चाहत, किसी मकसद से उसकी याद आना, उसे आवाज देना बेमानी है। इसमें अड़चन है जो हमें कहीं नहीं पहुंचाती। प्रेम में डूबकर जैसे किसी अपने की याद आ जाए और हम उसे पुकार उठें तड़प कर। भक्ति में ये घटना ही वंदना है, यही उसकी पूजा है, यही उसकी आराधना।

वंदना की पूजा की विधि अलग हो सकती है, किंतु लक्ष्य सबका एक है। हमारे मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, किंतु गंतव्य सबका एक है। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग संप्रदायों ने जिसे परम सत्ता, परमेश्वर, खुदा या भगवान कहा, वो एक है। सदियों की साधना, युगों के भटकाव के बाद यही सत्य सामने है कि वो विराट एक है, चाहे हम उसे कहीं भी ढूंढें, किसी भी नाम से पुकारें।

श्रोताओ, क्या होता है हरि सुमिरन, क्या होता है नाम स्मरण। जिस दिन हमने नाम के बल का सहारा पकड़ लिया, जिस दिन हमने कहा कि मैं नहीं तू ही है, सब कुछ तुझ पर छोड़ा, मैं तो बस उपकरण हूँ। जिस दिन हमने कहा कि मैं तो मात्र बांसुरी हूँ, गीत तो उसके हैं, संगीत उसका है, मैं बस मार्ग हूँ उसके आने का, उसी दिन जीवन से पीड़ा के बादल छंट जाते हैं।

श्रोताओं, इस भक्ति रचना के साथ ही संपन्न होती है आज की भजन यात्रा। इस कार्यक्रम से अब अनुमति दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई। रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है। तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार। पर

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है। कर

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: ये मेरा इंडिया।
0: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है, जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: श्रोताओं, रेडियो आजाद हिंद की ये प्रसारण सभा आप सुन रहे हैं सुनीता सिंह के साथ। हमारी अगली प्रस्तुति कार्यक्रम वतन का राग।

0: वतन करा के श्रोताओं को सुधा अनुपम का नमस्कार।
1: ये वतन करा।
0: अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर से सब जग उपजा, कौन भला कौन गंदे। संसार में ऐसे लोग कम ही होते हैं जो ऊंच नीच जाति धर्म की सीमाएं लांघकर उस एक नूर एक ईश्वर एक पर ब्रह्म को समझ सकें। प्रयास तो बहुत लोग करते हैं लेकिन सब उसी ईश्वर की कल्पना को सत्य मान लेते हैं जो समाज में प्रचलित हो। स्वामी विवेकानंद के लिए ईश्वर का रूप निराकार पर ब्रह्म था। उनकी शिष्या भगिनी निवेदिता भी गुरु की सच्ची अनुयायी थी। 28 अक्टूबर 1867 को आयरलैंड में एक शिक्षक के यहाँ जन्मी मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल ने बचपन से ही धार्मिक मूल्यों की शिक्षा ग्रहण की थी। उन्हें पठन पाठन में गहरी रुचि थी। विद्यालय की शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने युवावस्था में विंबलडन में एक स्कूल की स्थापना की थी। सांसारिक परंपराएं निभाते हुए उनकी सगाई भी हुई लेकिन भगिनी निवेदिता बनना उनकी नियति थी। सगाई के कुछ दिनों के बाद ही उनके मंगेतर का असामयिक निधन हो गया और उनके मन में एक बेचैनी सी छा गई जिसे दूर करने के लिए उन्होंने विभिन्न धर्मों के बारे में पढ़ना शुरू किया। नवंबर 1895 के जाड़े में वे लंदन में अपने एक परिचित के यहाँ ठहरी हुई थीं। एक दोपहर वे एक हिंदू सन्यासी का वेदांत पर आधारित व्याख्यान सुनने गईं। संस्कृत मंत्रों का उच्चारण कर गूढ़ ज्ञान की बातें कहने वाला योगी गेरुए वस्त्र पहने भूमि पर बैठा था। यूं तो स्वाध्याय से मार्गरेट को पूर्व के धर्म और संस्कारों का ज्ञान हो गया था लेकिन उनके मन में समय समय पर कुछ शंकाएं और प्रश्न उठते थे। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के कई व्याख्यान सुने और अपने प्रश्नों का समाधान भी पाया। इसके बाद उनकी रुचि सनातन धर्म में गहरी हो गई और स्वामी विवेकानंद के प्रति उनकी असीम श्रद्धा का बीज रोपित हुआ। 1904 में मार्गरेट ने अपने एक मित्र को लिखे पत्र में कहा कि यदि वे स्वामी जी से नहीं मिलती तो उनका सारा जीवन निरुद्देश्य रह जाता। विवेकानंद को भी अपनी शिष्या में भारत का उज्ज्वल भविष्य नजर आया। सनातन धर्म और अपने गुरु के प्रति उनकी श्रद्धा के प्रति आश्वस्त होने पर विवेकानंद ने मार्गरेट को एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व सौंपा, भारतीय नारियों की दयनीय दशा को समुचित शिक्षा द्वारा सुधारने का। अपने गुरु के इस आग्रहयुक्त आदेश के परिपालन के लिए वे अपनी माँ मिट्टी और मुल्क सब कुछ छोड़कर 28 जनवरी 1898 को मोगबासा नामक जहाज से कलकत्ता आ गईं।

कुछ दिनों तक स्वामी जी ने मार्गरेट को स्वयं भारत और भारतीयता की शिक्षा दी और फिर 11 मार्च 1898 को कलकत्ता का परिचय इस नई विदेशी शिष्या से कराने के उद्देश्य से स्टार थिएटर में एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि इंग्लैंड ने हमें सुश्री मार्गरेट नोबल के रूप में एक उपहार दिया है। 25 मार्च 1898 को इंग्लैंड की मार्गरेट एक औपचारिक विधि करने के बाद आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर भगिनी निवेदिता बन गईं। ये नाम उनको स्वामी विवेकानंद ने दिया था, निवेदिता यानी कि ईश्वर को समर्पित। ब्रह्मचारिणी बनने वाली वो पहली विदेशी महिला थी। भारत को जानने की उत्सुकता ने उन्हें उनके गुरु की तरह ही यायावर बना दिया। उन्होंने स्वामी विवेकानंद, जोसेफिन मैकलॉड और सारा बुल के साथ भारत का भ्रमण किया। हिमालय यात्रा के दौरान उन्होंने अल्मोड़ा में ध्यान करना सीखा। स्वामी स्वरूपानंद से उन्होंने बांग्ला सीखनी शुरू की। निवेदिता ने अपने गुरु को बहुत निकट से देखा और उनके मूल्यों को आत्मसात किया। स्वामी विवेकानंद भी निवेदिता का हर पग पर मार्गदर्शन करते रहे। कोई आश्चर्य नहीं कि अपने गुरु की मृत्यु का पूर्वाभास उन्हें पहले ही हो गया था। निवेदिता एक सच्ची सेविका थीं। भारतीय महिलाओं को शिक्षित करने के लिए निवेदिता एक विद्यालय खोलना चाहती थीं, परंतु धन की कमी थी, इसलिए उन्होंने इससे निपटने के लिए इंग्लैंड और अमेरिका में कई व्याख्यान दिए और एकत्रित राशि से स्कूल की स्थापना की। उस दौर में महिलाओं को पारंपरिक नेपथ्य से निकालना आसान नहीं था। लड़कियों को शिक्षित नहीं किया जाता था, विदेशी शिक्षिका का विद्यालय तो दूर की बात थी। स्वामी विवेकानंद भी इस समस्या से अवगत थे। उन्होंने निवेदिता को आश्वस्त किया और अंततः 13 नवंबर 1898 को काली पूजा के दिन कलकत्ता के बाग बाजार में शारदा देवी द्वारा विद्यालय का उद्घाटन किया गया। परंतु समस्या पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। निवेदिता का उद्देश्य जितना ऊंचा था, प्रयास उतने ही कठिन। उनके घर घर जाकर महिलाओं और बालिकाओं को विद्यालय भेजने के आग्रह करने पर कई बार उन्हें पुरुषों द्वारा अपमानित भी होना पड़ा, लेकिन सेवा भाव असफल नहीं होता और धीरे धीरे उनके प्रयास सफल होने लगे। विधवाएं और प्रौढ़ महिलाएं उनकी विद्यार्थी बनी। उन्हें विद्यालय में सामान्य शिक्षा के अलावा मरीजों की सेवा और साफ सफाई की आधारभूत बातें भी सिखाई जाती थीं। विद्यालय का खर्च पूरा करने के लिए निवेदिता लेखन कार्य और लेक्चर्स के द्वारा राशि एकत्रित करती थीं। सन 1899 के दौरान जब कलकत्ता में प्लेग महामारी फैली, तब निवेदिता ने विद्यालय के कार्यों से थोड़ा विश्राम लेकर रोगियों की अथक सेवा की और युवाओं को सेवा कार्य के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने स्वयं सेवक बनकर शहर के कई इलाकों की गंदगी साफ की। पैसे की कमी दूर करने के लिए कई अंग्रेजी समाचार पत्रों में अपील की।

भगिनी निवेदिता के मित्रों में कई प्रसिद्ध व्यक्ति शुमार थे, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, जगदीश चंद्र बोस और अरविंद। जगदीश चंद्र बोस को उन्होंने उस समय प्रोत्साहित किया और उन्होंने तब वित्तीय सहायता दी जब उनकी खोज तारहीन रेडियो के आविष्कार को ब्रिटिश हुकूमत से ठंडी प्रतिक्रिया मिली। शायद कभी कभी उनका विदेशी मूल का होना लाभकारी सिद्ध हुआ, विशेषकर तब जब बात हिंदुस्तानी बनाम अंग्रेज की होती थी। लालन पालन अंग्रेजी में होने के कारण जहां उनमें विचारों की तर्कशीलता थी, वहीं भारतीयता आत्मसात करने के कारण वे बेहद संवेदनशील और धैर्यवान थीं। उन्होंने अंग्रेजों का भारतीयों के प्रति बर्बरतापूर्ण व्यवहार देखा और आंदोलनों में लोगों की सहायता की। 1905 के बंगाल विभाजन के दौरान उन्होंने अंग्रेजों के विरोध में आमजन की सहायता की, जिसके कारण उन्हें उनका कोपभाजन बनना पड़ा। अपने विद्यालय में उन्होंने वंदे मातरम के गायन को प्रोत्साहित किया। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि 1906 में सिर्फ कुछ पलों की मुलाकात में ही सुप्रसिद्ध तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती उनसे अत्यंत प्रभावित हुए। निवेदिता ने लेखन कार्य भी किए जिनमें अधिकतर उनके गुरु स्वामी विवेकानंद पर आधारित हैं। भगिनी निवेदिता जितना कुछ देने भारतवर्ष आई थीं, उससे कहीं अधिक दिया और किया भी। जिस शांति की खोज में उन्होंने सनातन धर्म अपनाया था, वो उन्हें मात्र 43 वर्ष की अल्पायु में प्राप्त हो गई। 13 अक्टूबर 1911 को दार्जिलिंग के रॉय वेला में गोधूली बेला में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका पूरा जीवन अनुकरणीय है। उन्होंने धर्म, भाषा, संस्कृति और देश की सीमाओं को तोड़कर मानवीय मूल्यों की सार्वभौमिकता को चरितार्थ किया। सचमुच सिस्टर निवेदिता पश्चिम से भारत को मिली एक अनुपम भेंट थी। जय हिंद।

0: फिर से हो रहा।
1: जननायक स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रीक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है। सुनकर सुन।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम प्रकृति की पुकार। इंतजार कीजिए बस कुछ पलों का।

0: देवे।
1: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज
0: ससुराल गेंदा फूल
1: और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 एफएम। कार्यक्रम है प्रकृति की पुकार। मैं हूँ धरा।
3: मैं हूँ बादल।

0: एक बीज था, गया बहुत ही गहराई में सोया। उसी बीज के अंतर में था नन्ना पौधा सोया। उस पौधे को मंद पवन ने आकर पास जगाया। नन्ही नन्ही बूंदों ने फिर उस पर जल बरसाया। सूरज बोला, प्यारे पौधे निंद्रा दूर भगाओ, अलसाई आंखें खोलो तुम, उठकर बाहर आओ। आंख खोलकर नन्हे पौधे ने ली जब अंगड़ाई, एक अनोखी नई शक्ति सी उसके तन में आई। नींद छोड़ आलस त्याग कर पौधा बाहर आया, बाहर का संसार बड़ा ही उसने अद्भुत पाया।
1: वाह वाह धरा वाह, कितनी सुंदर कविता है ये, हमने बचपन में शायद दूसरी या तीसरी कक्षा में पढ़ी थी।
0: हाँ हाँ बादल, बिल्कुल, लेकिन तब हमने इस कविता को सिर्फ पढ़ा था और रट लिया था, पर इसमें छिपी गूढ़ बातें अब समझ में आई हैं।
1: हाँ हाँ ये सही है कि प्रकृति से हमें वो सभी संसाधन मिलते हैं जो एक तरह से हमारी मदद करते हैं, ये हमें बढ़ने और विकसित करने में हमें सहयोग देते हैं।
0: यदि प्रकृति से बल्कि हमारी इस धरती से हमें वो सब मिलता है जो हमारे जीने के लिए आवश्यक है।
1: धरा, एक कहावत हम अक्सर कहते हैं, मिट्टी के मोल, लेकिन ये कहावत प्रकृति से मिले लाभ के लिए है, पर उस मिट्टी को चरितार्थ नहीं करती।
0: वो कैसे?
1: वो ऐसे कि अगर प्रकृति ने हमें भूमि आदि मिट्टी अगर नहीं दी होती तो हम अपना पेट कैसे भरते, और इस मिट्टी से उपजी हर फसल पृथ्वी के हर प्राणी के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी हमारे लिए।
0: पृथ्वी से अपनी फसल के लिए ऋग्वेद में कहा है, आपने भी जरूर पढ़ा होगा कि खेत में पैदा अनाज का क्रम से बंटवारा किया जाना चाहिए।
1: अगर बुरा ना मानो तो एक बात बताऊं?
0: हाँ हाँ जरूर, इसमें बुरा मानने की क्या बात है।
1: देखो, पहला हक जमीन में 4 उंगल भूमि गेहूं की बालों के नीचे पशुओं का, ठीक है। अब फसल की पहली बाली अग्नि की, और गेहूं के दानों को अलग करके मुट्ठी भर दाना पक्षियों का,
0: और इसके बाद आटा बनाने पर मुट्ठी भर आटा चींटियों का, चुटकी भर गुंधा हुआ आटा मछलियों का, फिर उस आटे की पहली रोटी गौ माता की,
1: और घर में तैयार खाने की पहली थाली घर के बुजुर्गों की, फिर अपनी थाली, और फिर आखिरी रोटी कुत्ते को दी जाए।
0: हाँ, हमारी संस्कृति हमें यही सिखाती है कि प्रकृति में अन्य जीवों और प्राणियों के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारी है।
1: हाँ, हमारी भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है जिसका उपयोग हम कभी वानिकी और खनन में करते हैं।
0: बिल्कुल, देखा जाए तो भूमि का उपयोग खेती, आवास, उद्योग, व्यापार, आना जाना, मनोरंजन सभी कामों में है। तो इतने कामों के इस संसाधन का उपयोग हम ऐसे करें कि इससे नुकसान ना हो।
1: हमें खेती के लिए मिट्टी की गुणवत्ता का ध्यान रखना होगा, स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है।
0: हाँ, परंतु अब के समय में बढ़ती जनसंख्या के कारण मांगें बढ़ रही हैं, और इस कारण वन भूमि और खेती की भूमि का दोहन हो रहा है, इससे प्रकृति की दी हुई नेमत कम होती जा रही है।
1: बिल्कुल सही धरा, और इसके साथ ही कम स्थान में अधिक और जल्दी पैदावार के लिए रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का उपयोग किया जा रहा है, इससे हमारी भूमि की प्रकृति नष्ट हो रही है।
0: खनन इतना ज्यादा हो रहा है कि लगातार भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी और तूफान सक्रिय हो रहे हैं।
1: पहाड़ी स्थान में भूस्खलन आए दिन होते रहते हैं, ऐसा लंबे समय तक लगातार वर्षा होने के कारण होता है। ये एक ऐसी आपदा है जो चिंता का मुख्य विषय है।
0: भूमि के उपयोग में मानव द्वारा किया गया परिवर्तन, जैसे कृषि भूमि, वन भूमि का कम होना, शहरीकरण के लिए अधिक भूमि का उपयोग करना है, हमारी भूमि को प्राकृतिक परिदृश्य से बिगाड़ रहा है।
1: बिल्कुल सही धरा, और ये बदलाव पर्यावरण, समाज और हमारी अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा प्रभाव डालता है।
0: बिल्कुल, भूमि के उपयोग का परिवर्तन से हमारी जैव विविधता भी प्रभावित होती है, साथ ही मिट्टी की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
1: इसीलिए भूमि उपयोग परिवर्तन एक ऐसी खतरनाक प्रक्रिया है जिसके नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए ठोस कदम उठाने जरूरी हैं।
0: जी हाँ, देखा जाए तो मानव गतिविधियों के कारण उपजाऊ भूमि में मरुस्थलीकरण बढ़ता जा रहा है, और वनस्पति में कमी आती जा रही है।
1: हाँ, तापमान साल दर साल बढ़ता जा रहा है, वर्षा कम हो रही है, वनों की कटाई निरंतर जारी है, सिंचाई के तरीकों का गलत उपयोग, ऐसी गतिविधियाँ मरुस्थलीकरण को बढ़ा रही हैं।
0: शहरीकरण के कारण मिट्टी की उपजाऊ ऊपरी परत, जिसमें पौष्टिक व भरपूरता होती है, नष्ट होती जा रही है, भूमि बंजर हो रही है।
1: इसका परिणाम फसल का उत्पादन कम होने के कारण खाद्य पदार्थों में कमी होती है और किसान की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ये सभी एक बहुत ही गंभीर समस्या है।
0: इस समस्या से निपटने के लिए हम सभी की भागीदारी आवश्यक है। बेहतर सिंचाई तकनीक और जल संरक्षण के उपाय अपनाकर हम मरुस्थलीकरण को रोकने में मदद कर सकते हैं।
1: हम अपने कार्यकलापों में परिवर्तन कर इस सिकुड़ती भूमि को बचा सकते हैं। आज पूरा विश्व इस समस्या से जूझ रहा है।
0: ये एक ऐसी भौगोलिक घटना है जिसमें हमारी उपजाऊ भूमि क्षेत्रों में मरुस्थल ऐसी विशेषताएं विकसित हो रही हैं, इससे वहाँ के रहवासी घबरा कर पलायन भी कर रहे हैं।
1: हाँ, क्योंकि ऐसी स्थिति में जमीन की उत्पादन क्षमता तो कम होती ही है, साथ ही हमारी प्राकृतिक वनस्पतियाँ भी खत्म होती जाती हैं।
0: मरुस्थलीकरण ये न केवल मानवीय जीवन बल्कि वन्य जीव भी प्रभावित कर रहा है। भूमि के बंजर होने से कृषि भूमि क्षेत्र कम हो रहे हैं।
1: हाँ धरा, यदि इस पर काबू नहीं पाया गया तो भविष्य में खाद्यान्न संकट गंभीर रूप ले सकता है। इससे निपटने के लिए पूरे विश्व को एकजुट होने की आवश्यकता है।
0: जी हाँ, भूमि की कमी नदियों के कटाव से प्रभावित होती है, हवा से भी मिट्टी के कटाव पर असर होता है।
1: वनों की कटाई मरुस्थल बढ़ने का प्रमुख कारण है। बढ़ती जनसंख्या के कारण पेड़ पौधों और वनस्पतियों को काटा जा रहा है। इस कारण कमल जंगल छोटे होते जा रहे हैं और मरुस्थल का बढ़ावा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है।
0: और इससे बचने के लिए सबसे पहले वृक्षारोपण तेजी से बढ़ाना है और वनों की कटाई एकदम से रोक दी जानी चाहिए।
1: हाँ, और इसके साथ ही मरुस्थली क्षेत्र के अनुकूल पौधों को लगाया जाए, मिट्टी के कटाव को रोका जाए
0: और कृषि कार्यों के अत्यधिक रासायनिक खाद के प्रयोग को भी रोका जाए। सिंचाई में भी मरुस्थली क्षेत्र के अनुसार काम किया जाए।
1: इसके साथ खनन गतिविधियों को तुरंत आवश्यकता से अधिक न किया जाए।
0: बिल्कुल, इस समस्या पर सबसे जल्दी नियंत्रण तभी हो सकता है जब वृक्षारोपण की दर को तेजी से बढ़ाया जाए, तो इस समस्या पर काबू पाया जा सकता है।
1: परंतु देखने में आता है कि संसाधनों की कमी हम मनुष्यों को प्रतिस्पर्धा में घसीटती है और जब ये प्रतिस्पर्धा बढ़ती है तो संसाधन अपने आप ही कम से कमतर होते जाते हैं।
0: किसी भी संसाधन का उपयोग हमारे हित में हो या आर्थिक क्रिया के रूप में, जिससे हमारी आवश्यकता की पूर्ति संभव हो, पर इसकी उपयोगिता हमारे वास्तविक उपयोग से जुड़ी हुई होना चाहिए।
1: नहीं तो प्राकृतिक आपदाएं जैसे सूखा, अकाल और बाढ़ का प्रकोप बना ही रहेगा। इससे भूमि का दुरुपयोग या वैज्ञानिक तरीकों की अनदेखी विनाश का आमंत्रण है।
0: हाँ, पर ये वातावरण तहरीली की समस्या का अभी भी समाधान हो सकता है, लेकिन तब तक बिना समय गवाए संसाधनों को रोककर हम व्यवस्थित होकर अपनी दिनचर्या और अन्य कार्यों को रोकने में कड़े अनुशासन को अपनाएं।
1: पानी की एक एक बूंद को सुरक्षित कर उसका सही उपयोग करें। वन क्षेत्र जितने भी बचे हैं उन्हें सुरक्षित कर लुप्त वनस्पति एवं जीव जंतुओं को संरक्षित करने में सहायता करें।
0: ईंधन की आवश्यकता होने पर अंधाधुंध वनों की कटाई ना करें, उन्हें नष्ट ना करें, पौधारोपण को बढ़ावा दें, बंजर भूमि है उसे ठीक कर पौधे लगाएं, सड़क या नदी तालाब के किनारों पर पेड़ लगाएं।
1: बिल्कुल सही कहा धरा, सौर ऊर्जा का विकास कर ऊर्जा की समस्या भी हल की जा सकती है। इससे काफी हद तक लकड़ी का उपयोग कम होगा और ये खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लाभदायक रहेगा।
0: इस तरह स्वयं तो पर्यावरण के प्रति जागरूक रहें, साथ ही औरों को भी ऐसा ही करने को कहें और इसके महत्व को समझाएं। इन बातों पर अमल करके ही हम पर्यावरण की सुरक्षा कर पाएंगे।
1: अगर अभी भी घर नहीं चेते तो पर्यावरण के गिरते स्तर का परिणाम हमें जल्दी ही और अधिक विभिन्न रूपों में भुगतना होगा।
0: हाँ, और यदि ऐसा हुआ तो इससे हम मानव ही नहीं बल्कि पूरी प्रकृति की समस्त क्रियाएं अपनी विपरीत दिशा की ओर न सिर्फ कदम उठा रही हैं, बल्कि आगे और तेजी से बढ़ती जाएंगी।
1: हाँ, प्राकृतिक आपदाएं तभी आती हैं जब प्रकृति के प्रतिकूल दशा होती है। जैसे जो मिट्टी या भूमि उर्वरा होती है वो उत्पादन करना बंद कर देती है।
0: जो वर्षा समय पर होती है वो कम या अधिक होने लगती है, या फिर समय से पहले या समय निकलने के बाद भी नहीं होती। यानी दोनों ही सूरत में हमें नुकसान ही उठाना पड़ता है।
1: पृथ्वी का तापमान भी सामान्य ना होकर कम या ज्यादा हो जाता है, और ये सभी प्रकृति की गतियाँ हमारे जीवन को खतरे में डाल रही हैं।
0: हाँ, और पृथ्वी का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। ऐसे में हम अपनी आवश्यक संसाधनों को भी नहीं जुटा पाएंगे और अनेक विपदाएं जन्म लेती रहेंगी।
1: पर्यावरण में आए इस असंतुलन को पुनः नियंत्रण में करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हम प्रकृति के प्रदत्त संसाधनों का उपयोग इतना अधिक कर रहे हैं, वे सब समाप्ति की ओर जा रहे हैं।
0: यदि हम इनका इस तरह से दोहन करते रहे तो ये प्राकृतिक संकट स्वयं नहीं आता, बल्कि हम मनुष्य अपने क्रियाकलापों के द्वारा इसे आमंत्रण दे रहे हैं।
1: हाँ, अपने विकास के लिए हम प्रकृति का खुलकर उपयोग करते हैं, लेकिन अब हम इतना उपयोग कर रहे हैं कि संसाधन समाप्ति की ओर हैं। हमने ही इनका शोषण किया है और हम ही प्रकृति में इस असंतुलन के उत्तरदायी हैं।
0: हमें अपने कार्यकलापों में परिवर्तन लाकर इस सुकुड़ती भूमि को बचाना है। आज पूरा विश्व इस समस्या से जूझ रहा है। सूखा पड़ने की स्थिति तो और भी भयानक होती है। गांव की तस्वीर बड़ी ही हृदय विदारक हो जाती है। किसानों के पास कोई काम नहीं होता।
1: घर के पालतू जानवरों के भोजन की व्यवस्था न होने के कारण या तो वे खत्म हो जाते हैं या फिर उन्हें जंगलों में छोड़ दिया जाता है, और तब लोग शहर की ओर रुख कर लेते हैं।
0: निसंदेह सूखा और अकाल एक हृदय विदारक और गंभीर संकट है। इस तरह बाढ़ भी एक ऐसी ही प्राकृतिक विपदा है जिससे बचना बड़ा ही मुश्किल काम है।
1: बिल्कुल सही कहा धरा। बाढ़ तो केवल प्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रित कर ही संभव है। इसके लिए बांधों का आवश्यकता अनुसार निर्माण बहुत जरूरी है।
0: इसी तरह भूस्खलन को भी प्राकृतिक विपदा ही माना जाता है, परंतु ये हम मानवों द्वारा किए गए खनन और वृक्षों की कटाई के कारण ही है।
1: और भूस्खलन की आए दिन होने वाली घटनाओं के कारण जिन स्थानों की अर्थव्यवस्था केवल पर्यटक पर ही टिकी होती है, वो भी अब बहुत डगमगाने लगी है।
0: पर्यावरण के प्रभाव में मिट्टी का भी प्रमुख रूप से योगदान होता है। इसे अगर यूं कहा जाए कि मिट्टी परिस्थिति की जननी होती है तो गलत ना होगा, क्योंकि जो भी व्यवस्था स्थापित होती है उसका आधार मिट्टी तो होती ही है बादल।
1: हाँ धरा, जीव जंतु पौधे वनस्पति और मानव सभी मिट्टी से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं। यहाँ तक कि प्राकृतिक दिशाएं भी मिट्टी से ही संबंधित होती हैं। ये मिट्टी भी एक प्राकृतिक तत्व है।
0: मिट्टी जब अपने पोषक तत्व भौतिकीय बनावट और रासायनिक संरचना खाने लगती है तो मिट्टी का विघटन प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार भूमि का क्षय होता है।
1: ईश्वर ने हमें सब कुछ बहुत सुंदरता से देखने के लिए बनाया है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि इस प्रकृति के रिश्ते के साथ हमारी भी कोई जिम्मेदारी है।
0: जी हाँ, अगर हमें स्वस्थ और चिंता मुक्त बढ़ना है तो अपने स्वार्थी और गलत कामों को रोकते हुए अपने ग्रह पृथ्वी को, अपनी धरती की सुंदरता को बचाना होगा और इसकी बिगड़ती प्रकृति को बेहतर करना होगा।
1: बिल्कुल, क्योंकि प्रकृति के असली उपयोगता तो हम ही हैं, तो इसे बचाना भी होगा। वो कहते हैं ना, जितना गहरा जोते खेत, बीज पड़े फल उतने देत।
0: यानी कि जितना गहरा हम खेत जोतेंगे और तब उसमें बीज डालेंगे तो फसल उतनी ही अच्छी होगी। मित्रों, आज हमने ढेर सारी बातें की प्रकृति के संरक्षण, मिट्टी के बचाव के बारे में, और निश्चित तौर पर आपको हमारी ये बातें बहुत ही काम की लगी होंगी। लेकिन अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का।
1: तो दोस्तों, मैं था आपके साथ बादल,
0: और मैं धरा।
1: इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़,
2: ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, और लेखन प्रमिला मुंशी दिवाकर का।
1: मैं था आपके साथ दीपक निमा,
0: और मैं थी आपके साथ वर्षा सिंह, और आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रकृति की पुकार। तो अब चलते हैं, आप सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 FM।
3: नमस्कार।

प्रकृति की पुकार। अभी आप हमारा ये कार्यक्रम सुन रहे थे। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz, आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: और अब हम आपको सुनवाते हैं ये देशभक्ति रचना।

आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। थोड़ी ही देर में हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम योग संवाद। उसके पहले एक छोटा सा अंतराल।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन यौगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, जीवन से विरक्ति का अर्थ जीवन से दूर हो जाना नहीं, बल्कि जीवन के बीच रहकर भी उसके मोह से मुक्त हो जाना है। जब मन की पकड़ ढीली पड़ती है, इच्छाओं का शोर थमता है और भीतर वैराग्य, विवेक, शम और संतोष जैसे गुण आकार लेने लगते हैं, तब मुक्ति किसी दूर के लोक की बात नहीं रह जाती, वो इसी जीवन में, इसी चेतना के उजले आकाश में उतरने लगती है। योग वासिष्ठ हमें इसी जीवन मुक्ति की राह दिखाता है, जहां संसार वही रहता है लेकिन उसे देखने वाला मन बदल जाता है। तो आइए आज के योग संवाद में समझें कि वैराग्य आदि सद्गुण किस प्रकार मनुष्य को जीवित रहते ही मुक्ति के अनुभव तक ले जाते हैं। आज इस बातचीत के लिए हमेशा की तरह हमारे बीच उपस्थित हैं योग, अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
2: नमस्कार।
1: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वैराग्य आदि गुणों से जीवन मुक्ति पर। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मुझे लग रहा है कि अब तक जितना भी योग संवाद हमने किया है उसका एक तरह से कहें कि जो प्रैक्टिकल जो किया जाना है उसकी एक बात आज मुझे लगता है होगी
2: जी।
1: तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि जीवन मुक्ति के लिए किस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए।
2: देखिए, जीवन मुक्ति के लिए जो बुद्धि होनी चाहिए वो रजोगुण और तमोगुण से रहित बुद्धि हो
1: जी,
2: और सतोगुण का अनुसरण करने वाली हो, तब जाकर के जीवन मुक्ति की तरफ व्यक्ति आगे बढ़ता है। वशिष्ठ जी कहते हैं, राघव तुम्हारा मन उत्तम गुणों से परिपूर्ण है, तुम में योग्य शिष्य के गुण हैं और तुम प्रश्नों को करने का सामर्थ्य रखते हो
1: जी।
2: और जो मैं समझाता हूँ उसे भली भांति समझते भी हो, इसलिए मैं तुम्हें ये जीवन मुक्ति का जो ज्ञान है ये देने के लिए उद्यत हुआ हूँ
1: जी, जी।
2: तो कहते हैं कि अब जो तुम्हारी बुद्धि रजोगुण तमोगुण से रहित है उसको शुद्ध सत्वगुण का अनुसरण करने की तरफ अग्रसर करो, आत्मा में स्थापित करो और ज्ञानोपदेश श्रवण करने के लिए तैयार हो जाओ। प्रश्नकर्ता में जितने गुण चाहिए वे सभी गुण तुम में वर्तमान हैं, तो तुम इस योग्य हो कि तुम इस विषय को समझ सकते हो। और जैसे चंद्रमा की किरणों के संपर्क से चंद्रकांत मणि में आर्द्रता आती है, उसी तरह तुम भी ज्ञान के संसर्ग से उत्पन्न हुए वैराग्य को प्राप्त हुए हो। तुम सर्वदा शुद्ध हो, तुम्हारा बाल्यावस्था से ही शुद्ध विस्तृत तथा अविच्छिन्न सद्गुण के साथ संबंध चला आ रहा है, ठीक उसी तरह जैसे कमल का अपने विस्तार वाले निर्मल और दीर्घ तंतुओं से लगाव रहता है। इसलिए तुम ही इस कथा को सुनने के योग्य अधिकारी हो।
1: तो बहुत ही सुंदर उन्होंने एक व्याख्या दी कि किस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए, तो रजोगुण तमोगुण से
2: रहित
1: होनी चाहिए। अच्छा, जो कामनाएं हैं वही हमें बांधती हैं।
2: बिल्कुल।
1: तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो दृश्य जगत है इसकी कामनाओं से मुक्ति किस तरह से मिल सकती है।
2: बहुत सुंदर कहा आपने। योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने
1: जी
2: दृष्टा और दृश्य को लेकर के सूत्र की चर्चा की
1: जी,
2: है
1: जी।
2: जिसमें कहते हैं कि जब चित्त वृत्तियों का निरोध होता है तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित होता है। और देखें तो दृष्टा का भी जो उपाधि मिला है वो दृश्य के संदर्भ से मिला है
1: जी, जी।
2: तो आपने सुंदर सवाल किया कि दृश्य जगत की कामनाओं से मुक्ति कैसे मिलती है। अब दृश्य जगत और अदृश्य जगत में भी हम दृश्य को ही स्थापित करते हैं, जैसे हम स्वर्ग की बात करें, नर्क की बात करें
1: जी, जी, जी।
2: जिसके द्वारा हम धर्म की नीतियों का अनुशासन लागू करना चाहते हैं
1: जी।
2: तो उसमें आप देखें तो वहां पर भी दृश्यों की ही कामना है, जैसे यहाँ के दृश्य की बात हम करते हैं वहां भी दृश्य हमने स्थापित किए हैं
1: जी, जी।
2: लेकिन यहाँ पर बात है कि मोक्ष कथा एक ऐसी कथा है जो दृश्य जगत से मुक्त हुए बिना आप उस मोक्ष कथा को न तो समझ पाएंगे न सुनने के अधिकारी हैं। तो ऐसे में ये कह रहे हैं वशिष्ठ जी कि अब मैं इस मोक्ष कथा का वर्णन करूंगा, तुम सावधान होकर इसे सुनो। यह कथा उस परम पद से संबंध रखने वाली है जिसका साक्षात्कार हो जाने पर जितने लौकिक कार्य और जितनी लौकिक दृष्टियां हैं वे सब के सब पूर्णतया शांत हो जाती हैं।
1: अच्छा,
2: तो आप देखें तो जो मोक्ष कथा है वो दृश्य जगत यानी लौकिक दृष्टियों को शांत करने का मूल कारण है, और बिना लौकिक कामनाओं के शांति के आप न मोक्ष कथा को समझ पाएंगे और न मोक्ष कथा सुनने के अधिकारी
1: हो पाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने मोक्ष कथा की बात की जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे सुनने वालों को एक बार फिर, हालांकि पहले चर्चा की हमने, तो मोक्ष कथा के विषय में बताएं।
2: मोक्ष कथा से परम पद का संबंध है। परम पद मतलब जैसे आप अपने स्वरूप का साक्षात्कार कर सकें, आपको अपने ब्राह्मी स्थिति का पता चले, जो ब्रह्म तत्व जिसकी वजह से ये सारा संसार विस्तार लिए हुए है उसको आप जान सकें, और इस मोक्ष कथा से लौकिक दृष्टियां पूर्णतया शांत हो जाती हैं। यानी संसार में जो कुछ भी हम दृश्य रूप में देखते हैं और उनके प्रति हमारे चित्त में आकर्षण और विकर्षण होता है तो ये पूरी तरह से शांत हो जाता है। तो एक तरह से कह सकते हैं ये शांति की कथा है कि जहां पर दृश्य जगत से उत्पन्न होने वाला कुतूहल या फिर द्वंद शांत हो जाए, तो उसको कहा गया, इन्होंने कहा कि वो मोक्ष कथा है।
1: अच्छा शशिकांत जी, यहाँ बीच में जब मैं देख रही थी योग वासिष्ठ तो गारुड़ मंत्र की भी चर्चा हुई है, तो ये क्या मंत्र है?
2: इसको कहते हैं वशिष्ठ जी, श्री राम संसार रूपी विष के आवेश से उत्पन्न हुई जो विषूचिका है वो बड़ी दुस्सह होती है, तो विष निवारक जो गारुड़ मंत्र है यही उसका मूल नाश करता है
1: जी।
2: तो ऐसे में ये गारुड़ मंत्र वही परमार्थ ज्ञान है जिसके बोध से ब्रह्म और जीव के बीच की एकात्मता का बोध होता है
1: जी।
2: यानी जीव और ब्रह्म के बीच जो अविद्या के नाते आवरण और विक्षेप हो रहा है, ये विक्षेप पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और जीव अविद्या के आवरण से मुक्त होकर अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो ये गारुड़ मंत्र ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति है जिसमें सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः की बात है कि आप उस जो तापत्रय है, तीन ताप, आदिदैविक आदिभौतिक आध्यात्मिक, इन तीनों तापों से जीव मुक्त हो जाता है क्योंकि तीनों तापों का कारण जो है वो अविद्या है, अज्ञान है। तो अज्ञान का जब आवरण हटता है तो जीव और ब्रह्म के एकात्म बोध की अनुभूति होती है और ये अनुभूति कराने वाला गारुड़ मंत्र है।
1: अच्छा एक प्रश्न मेरे मन में और है कि संताप से रहित होने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए?
2: संताप से रहित होने के लिए मनुष्य को शास्त्र चिंतन करना चाहिए साधु संगत में रहकर। शास्त्र चिंतन करने से इसी जन्म में संपूर्ण दुखों का समूल नष्ट होता है
1: जी।
2: विवेकशील सत्पुरुषों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। जिस विवेकी पुरुष को सम्यक दृष्टि उपलब्ध हो चुकी है वह पुरानी केचुली का त्याग करके संताप रहित हुए सर्प की भांति मानसिक व्यथाओं से परिपूर्ण इस संसार के अनुराग का परित्याग कर संताप रहित हो जाता है। यानी संताप रहित होने के लिए सम्यक दृष्टि की आवश्यकता है और जिसकी दृष्टि सम्यक होगी उसका अंतःकरण शीतल होगा, उसमें ताप नहीं होगा। नहीं तो सामान्यतया देखें तो सामान्य लोगों का अंतःकरण तीन तापों से जल रहा है ना, चाहे वो ताप आधिदैविक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे आधिभौतिक हो। तो ऐसे में अंतःकरण की शीतलता का मूल कारण सम्यक दृष्टि है और उस दृष्टि के द्वारा हम अपने शाश्वत सुख को अनुभव कर सकते हैं।
1: जी जी जी। तो मेरे मन में एक प्रश्न आता है कि जो दुख है इसका मूल कारण है क्या?
2: दुख का मूल कारण है तृष्णा। ये बहुत सुंदर सवाल आपने किया कि तृष्णा के संबंध में भर्तृहरि जी भी कहते हैं तृष्णा न जड़ना वय में उजड़ना। तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती, वो लगातार बढ़ती रहती है। तो कहते हैं वशिष्ठ जी राम से, तृष्णा तुम्हें जर्जर कर देती है, अधिक क्या? संसार में ऐसा कोई दुख नहीं है जो संसारी मनुष्य को तृष्णा से प्राप्त न होता हो। यानी संपूर्ण दुखों को उत्पन्न करने वाली तृष्णा है, और जबकि संसार में आप देखें तो तृष्णा बढ़ती ही है, न कि कभी शांत होती
1: जी,
2: है
1: जी, जी।
2: तो वो कह रहे हैं कि संपूर्ण दुखों को उत्पन्न करने वाली ये तृष्णा है और तृष्णा विषय भोग रूपिणी विसूचिका की दुष्परिणाम वाली है। यह नरक नगर रूप शरीर समुदाय के साथ अनुराग उत्पन्न करने वाली है। तृष्णा से ही शरीर में अनुराग उत्पन्न होता है और शरीर को नरक नगर की भांति कहा गया है कि जैसे
1: नरक नगर
2: यानी शरीर में जो देहात्म भाव है
1: जी, जी,
2: ये व्यक्ति को नारकीय जीवन जीने के लिए विवश करता है। और आप देखें तो गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर पंक्ति में कहा भी है, काम क्रोध मद लोभ सब नार नाथ नरक के पंथ, ये नरक के रास्ते हैं और ये सारा शरीर से जन्म लेता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि शरीर नरक नगर की तरह है कि जहां पर कामनाएं होंगी, लोभ भी होगा, क्रोध भी होगा, मोह भी होगा। तो ऐसे में इसका मूल कारण है वो तृष्णा है और यही सारे दुखों को जन्म देती है।
1: तृष्णा है जो वो सभी दुखों का मूल कारण है जिससे बचना आवश्यक है। अच्छा, देहाभिमान जो है उसको नष्ट करने का क्या उपाय है?
2: देहाभिमान को नष्ट करने के लिए वशिष्ठ जी कहते हैं कि सत्पुरुषों के साथ शास्त्र चिंतन करने से इस देहाभिमान को नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि सत्पुरुषों को तत्व का ज्ञान हो जाने से सर्वव्यापक आत्मस्वरूप विदित हो जाता है
1: जी।
2: वह शुद्ध बुद्धि द्वारा परब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है और अज्ञान रूपी घने बादल के विलीन हो जाने पर उसके मोह का विनाश हो जाता है। फिर तो उसके लिए इस जगत में विचरण करना रमणीय हो जाता है, अर्थात वह इस जगत में जीवन मुक्त के भांति विचरण करता है
1: जी जी।
2: क्योंकि उसके चित्त से अज्ञान रूपी बादल छट गए हैं, अर्थात जो अविद्या का आवरण था वो आवरण हट गया है और वह अविद्या के आवरण के हट जाने से जो है वो जीवन मुक्त हो चुका है। तो जीवन मुक्त की भांति इस जगत में वो विचरण कर सकता है, उसका विचरण रमणीय होगा, जगत में उसे दुख की अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि दुख का मूल कारण अज्ञान है और अज्ञान का आवरण हटते ही जीव और ब्रह्म के बीच का भेद भी मिट जाता है, यानी वो पूरी तरीके से अद्वैत भाव में प्रतिष्ठित हो जाता है।
1: जी जी, मतलब जो सत्पुरुष है उनकी संगत और शास्त्रों का साथ,
2: उनकी संगति में शास्त्रों का चिंतन।
1: अच्छा।
2: कारण क्या है कि देखिए, सत्पुरुषों के जीवन में शास्त्र सिर्फ ज्ञान का विषय नहीं होता, वो उनके व्यवहार में भी परिलक्षित होता है। वो संसार की अनुकूलता और प्रतिकूलता में अपने व्यवहार को सम रख पाते हैं, यानी योग के अनुशासन का वो पालन करते हैं। तो जब ऐसे व्यक्ति की सन्निधि में आप जाते हैं तो व्यक्ति का जो व्यवहार है वो व्यवहार बहुत अधिक सिखाता है। मैं तो ये कहना भी चाहूंगा अपने श्रोताओं से कि हम अपने बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, लेकिन बच्चे हमारी अच्छी बातें क्यों नहीं सीखते? क्योंकि वो अच्छी बातें हमारे व्यवहार में परिलक्षित नहीं होती। तो सत्संग और सत्पुरुष जो हैं वो उनको अपने व्यवहार में शामिल किए रहते हैं, इस नाते उनकी बातें प्रभावशाली होती हैं, क्योंकि व्यक्ति उसे व्यवहार में देखता है।
1: जी जी, मतलब जो चीजें शास्त्र से वो पढ़ रहे हैं उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण वो देख रहे होते हैं,
2: देख रहे
1: तो उसका प्रभाव होता है।
2: आपने सुना भी होगा कि एक महात्मा के पास एक महिला अपने बच्चे को लेके जाती है और कहती है कि बड़ा ये गुड़ खाता है, आप इसे मना कर दें। तो उन्होंने कहा कि 7 दिन बाद लेके आना। तो 7 दिन बाद जब लेके गई वो, तो उन्होंने कहा कि बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए। तो उन्होंने कहा ये बात तो आप पहले दिन भी कह सकते थे। तो कहा पहले दिन मैं खाता था गुड़, और 7 दिन पहले मैंने गुड़ नहीं खा करके ये कहने के लिए अधिकृत हुआ कि मैं इसे कह सकूं, तब ये मेरा सत्य बना। सत्य का मतलब ये नहीं होता कि सत्य दूसरों के उपदेश के लिए है।
1: जी, जी, जी।
2: सत्य को सबसे पहले आप धारण करिए, तब आपके द्वारा दिया गया सत्य ज्ञान किसी के धारण योग्य होगा।
1: बिल्कुल, बहुत सुंदर बात
2: जी।
1: अच्छा शशिकांत जी, जो आत्मज्ञानी पुरुष है वो संसार में कैसे रहते हैं, कैसा व्यवहार होता है उनका?
2: ये बड़ा सुंदर आपने सवाल किया। ये सवाल अर्जुन ने भी भगवान कृष्ण से किया है, स्थिति प्रज्ञस्य क्या भाषा समाधिस्थस्य केशव, कि कैसे वो रहता है। तो इसको वशिष्ठ जी बड़े सुंदर तरीके से कहते हैं, श्री राम जिन्हें आत्म स्वरूप का ज्ञान हो गया है, ऐसे उत्तम बुद्धि संपन्न महापुरुष इस संसार में ऐसे रहते हैं कि उन्हें जब न तो शोक होता है, न कामना होती है, और न वे शुभ और अशुभ की याचना ही करते हैं। वे इस संसार में सब कुछ करते हुए भी अकर्ता के समान रहते हैं। अब संसार का आदमी यहाँ आप देखें तो हर चीज में अपने कर्तापन को जोड़ लेता है, वो अकर्ता की भांति संसार के सारे व्यवहार करते हैं, लेकिन उसका कर्तापन अपने अंदर चिपकने नहीं देते, और कर्तापन के न स्वीकार करने से उस प्रभाव से वो अपने आप को वंचित रख पाते हैं, और वे हे और उपादेय के पक्षपात से रहित होते हैं। संसार का आदमी हे उपादेय के पक्षपात से युक्त होकर के कार्य करता है। हे का तात्पर्य है जो नहीं करने योग्य है, अर्थात त्यागने योग्य है, और उपादेय से तात्पर्य है जो करने योग्य है, अर्थात पक्षपात से रहित होकर के आत्मा में स्थित रहते हैं, पवित्रता से रहते हैं, और सत शास्त्रों में प्रतिपादित स्वच्छ कर्म करते हुए सन्मार्ग पर चलते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो आत्मस्वरूप का जिन्हें ज्ञान हो गया है। अन्य लोगों की दृष्टि में वे आते जाते हैं, कर्म करते हैं और बोलते हैं, परंतु वास्तव में न तो आते जाते हैं और न ही वे बोलते ही हैं, क्योंकि परमानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हुआ पुरुष न तो इंद्रजाल रूपी माइक कार्य करता है और न सांसारिक वासनाओं के पीछे ही दौड़ता है। वह बालकों की सी भ्रममूलक चपलता का परित्याग करके पूर्व कथित परमात्मा के स्वरूप में ही सदा विराजमान रहता है। ये आत्मस्थ पुरुष जो हैं, वो उन लोगों का संसार में जीने का ढंग है।
1: जी जी। अच्छा शशिकांत जी, एक बात मेरे मन में आ रही है कि इस संसार में हर मनुष्य किसी तलाश में है।
2: जी।
1: है ना, एक खोज के पीछे है, सुबह से शाम इसी प्रयास में जाता है, एक खोज की तरफ वो चलता है। लेकिन मनुष्य को दरअसल संसार में ढूंढना क्या चाहिए?
2: मनुष्य को चाहिए कि जीवन पर्यंत आत्मा की खोज करे, उसी की उपासना करे और उसी का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करे, क्योंकि जीवन में आत्म अन्वेषण एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अतिरिक्त उसके लिए और कोई कर्तव्य करना शेष नहीं है। जिस पुरुष को अपने अनुभव, शास्त्र वचन और गुरु के उपदेश की एक वाक्यता का निश्चय हो गया है, वह निरंतर किए हुए उपयुक्त अभ्यास के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। आत्मा की खोज से तात्पर्य है परमात्मा के साक्षात्कार करने से, क्योंकि आत्मा परमात्मा में भेद नहीं है।
1: जी जी
2: जी।
1: अच्छा ये बताएं कि जीवन में सबसे अधिक कष्टकारी क्या है?
2: जीवन में सबसे अधिक कष्टकारी कहा गया है आत्म

0: जन्म आयु और भोग की प्राप्ति होती है, यानी जो जीव इस संसार में शरीर को प्राप्त करता है या फिर जिस आयु को भोगता है उसके पीछे मूल कारण तृष्णा है, क्योंकि कोई तृष्णा आपकी शेष रह गई है जिसकी वजह से आपने ये शरीर धारण किया है और फिर इस शरीर के द्वारा आप फिर उसी भोगों के भवचक्र में फंसे हुए हैं।
1: जी जी, तो बहुत ही सुंदर बात आपने कही कि कोई तृष्णा अधूरी रह गई है, है ना। अच्छा, सांसारिक सुखों में हम तृप्ति ढूंढते हैं, हर इंसान इसीलिए सुख की कामना करता है। तो जो लोग सांसारिक सुखों में तृप्ति ढूंढते हैं उनके लिए वशिष्ठ जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, वो क्या है?
0: सांसारिक सुखों में तृप्ति ढूंढने वाले को वशिष्ठ जी कहते हैं कि उनको अंधे मेढक की भांति समझो। जो दुरात्मा पुरुष राज्य आदि जागतिक सुखों के उपलब्ध होने पर उनके उत्तम भोगों के आस्वादन मात्र से ही तृप्त बने रहते हैं तो उन्हें अंधा मेढक समझो। अंधे मेढक पर मुझे याद आता है उपनिषद की एक कथा कही जाती है कि जैसे सांप को भी काल के रूप में देखा जाता है, तो कहते हैं कि जैसे एक मेढक को एक सांप ने पकड़ रखा है और वो मेढक अपनी मृत्यु का ख्याल न करके लगातार दूसरे कीड़े को खाने के लिए उद्यत है।
1: जी,
0: तो ऐसे ही जो जीव है अंधे मेढक की भांति है, जो ये खुद नहीं सोच पा रहा है कि वो संसार में अपने जीवन को नष्ट कर रहा है, अबलो नसानी अबना नसई हो, तो इतने अभ्यासों में हम अपने आप को नष्ट ही कर रहे हैं। जो भर्तृहरि जी कहते भी हैं कि भोगों ने हमको नहीं भोगा, भोगम न भुक्ता वय में उभुक्ता, भोगों ने हमें ही भोगा, हम भोगों को नहीं भोग पाए। तो इस तरीके से संसार में व्यक्ति अपनी आयु क्षीण करता है, जबकि कबीर दास जी कहते हैं कि तोरा हीरा जैसा श्वासा बातों में बीता जाए, यानी एक एक श्वास हीरे से अधिक मूल्यवान है, क्योंकि जो सांस आप ले चुके वो फिर दोबारा मिलने वाली नहीं है, सांसें गिनी हुई मिलती हैं, ऐसा संत लोग कहते हैं। ये एक तरह से सावधान करने का संकेत है कि आप अपने हर श्वासों के द्वारा अपने सत्य की स्मृति को बनाए रखें, क्योंकि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथें गावा। तो अगर मनुष्य का तन बड़े भाग्य का विषय है जिसको देवता भी पाने के लिए तरसते हैं, तो वो सांसारिक विषयों का भोग करने के लिए भाग्य का विषय नहीं है, तो दुर्भाग्य हुआ, क्योंकि बाकी सांसारिक विषयों का भोग तो हर जीव कर रहा है। तो ऐसे में मनुष्य भी अन्य जीवों की भांति अगर आहार निद्रा और संतानोत्पत्ति करना अपने जीवन का धर्म समझ ले, तो फिर मैं समझता हूँ कि मनुष्य का तन पाना भाग्य का विषय कैसे होगा,
1: है ना।
0: तो भाग्य तो तब है कि मनुष्य अपना आत्म कल्याण करे, आत्मचिंतन करे और उस परम सत्य का साक्षात्कार करे, जिसके साक्षात्कार के लिए ये तन मिला हुआ है।
1: बिल्कुल
0: जी,
1: तो बहुत ही सुंदर चर्चा रही आज की शशिकांत जी, आज आप हमारे बीच उपस्थित हुए और बहुत ही विस्तार के साथ वैराग्य आदि गुणों से जीवन मुक्ति विषय पर आपने जानकारी दी। आपका बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: तो श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में आज हमने चर्चा की वैराग्य आदि गुणों से जीवन मुक्ति। उम्मीद है आज का ये अंक आपको पसंद आया होगा। चलते चलते आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर हमारे बीच उपस्थित होते हैं योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी, मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और आपसे बातचीत कर रही थी मैं सुनीता सिंह। अब इस कार्यक्रम से अनुमति दें। नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

रेडियो आजाद हिंद से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम योग संवाद। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगा।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: श्रोताओं, आज डायबिटीज एक आम बीमारी है, और जिस किसी को ये बीमारी हो जाती है वो व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है कि आखिर वो क्या खाए, क्या ना खाए, किस तरह का परहेज रखे, कैसा जीवन व्यवहार रखे वो। लेकिन हम आपको बता दें कि डायबिटीज से दूर रहना या इसे नियंत्रण में रखना इतना मुश्किल भी नहीं है। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख कर आप डायबिटीज से दूर रह सकते हैं, या अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो अपनी शुगर को कंट्रोल में रख सकते हैं, नियंत्रण में रख सकते हैं। जी हाँ, आप हरा सकते हैं डायबिटीज को। तो इस बीमारी को हम हराएं, इसके लिए जरूरी है कि पहले इसे हम जानें। डायबिटीज दो तरह की होती है, टाइप 1, जो कि अनुवांशिक गड़बड़ी या संक्रमण की वजह से होती है, जिसमें शरीर में इंसुलिन बनती ही नहीं और इंजेक्शन के द्वारा लेनी पड़ती है। गर्भावस्था की डायबिटीज मुख्यतः इस दौरान हार्मोन्स में होने वाले बदलावों के कारण होती है, और प्रसव के बाद अक्सर ठीक भी हो जाती है। इसलिए इसका उपचार जरूरी है, क्योंकि इससे बच्चे को भी अधिक खतरा होता है। डायबिटीज का दूसरा प्रकार है टाइप 2। आमतौर पर डायबिटीज का तात्पर्य इसी से होता है, जो किसी को भी हो सकती है। श्रोताओं, टाइप 1 और गर्भावस्था की डायबिटीज को रोक पाना हमारे वश में नहीं है, लेकिन टाइप 2 से बचाव, इसका उपचार काफी हद तक हमारे ही हाथ में है। कहने का अर्थ ये कि पहले समूह में वो लोग आते हैं जिनके रक्त संबंधों में डायबिटिक लोग होते हैं। दूसरे समूह में वे सभी लोग आते हैं जिनकी दिनचर्या अनियमित होती है, जो मोटापे के शिकार होते हैं और मेहनत नहीं करते हैं। इसमें 14-15 वर्ष से अधिक का कोई भी व्यक्ति हो सकता है। अब 25 से 35 के आयु वर्ग वाले लोग बड़ी संख्या में इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। श्रोताओं, ये भी जरूरी है कि हम जान लें कि इसके लक्षण क्या होते हैं। शुरुआती अवस्था में बिना वजह की थकान और कमजोरी महसूस होना, झुनझुनी, चश्मे का नंबर बार बार बदलना, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनसे आपको शक होना चाहिए कि कहीं ये डायबिटीज की शुरुआत तो नहीं। वजन घटना, घाव भरने में देरी या बार बार लघु शंका भी एक आम लक्षण है। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि डायबिटीज का मुख्य कारण है शारीरिक सक्रियता की कमी, और अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि सुबह और शाम लगातार कम से कम 1 या 2 घंटे पैदल चलें, ये आपको डायबिटीज से बचा कर रखेगा। लेकिन शारीरिक सक्रियता का अर्थ ये नहीं है कि आप गप्पे लड़ाते हुए टहलें। मांसपेशियों की मेहनत होना बहुत जरूरी है, यानी इतनी तेज चाल से चलना कि 8 से 10 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय हो जाए, या 3 या 4 मिनट में 1 किलोमीटर साइकिल चला लेना। चाहे कोई भी कसरत आप करें, धड़कनों की गति बढ़नी चाहिए। और श्रोताओं, अपने खान पान पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। हमारे खान पान में शक्कर जितनी कम हो उतना ही अच्छा, न हो तो और भी बढ़िया। घबराइए नहीं, चीनी की गैर मौजूदगी में भी जीवन में मिठास कायम रहेगी, और साथ ही आप ज्यादा स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेंगे। बस कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। श्रोताओं, शरीर को ऊर्जा की जरूरत होती है, वो उसे ग्लूकोज से ही मिलती है। ग्लूकोज बनता है कार्बोहाइड्रेट से। ये 2 प्रकार के होते हैं, जटिल और सरल। सारी दिक्कत सरल कार्बोज से ही है, जो खाते पीते ही खून में पहुंचना शुरू हो जाती है, और फिर हमारे खून में शर्करा का स्तर एकदम से बढ़ा देती है। ये शरीर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सरल कार्बोज का मतलब हुआ शक्कर और शहद। जूस और कोल्ड ड्रिंक्स में भी यही बात होती है। ऐसी मिठास दिन भर में 3 छोटे चम्मच से ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। वैसे हम आपको बताएं कि शक्कर की तुलना में गुड़ बेहतर है, लेकिन वो भी सीमित मात्रा में। श्रोताओं, डायबिटीज ना हो इसके लिए जरूरी है कि हम अपना वजन कम रखें। इसमें सहायक होते हैं योग, प्राणायाम और कसरत। इसके साथ ही खान पान पर ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। इस बात का भी ख्याल रखें कि उठने के 2 घंटे के भीतर ही नाश्ता हो जाए, 11 बजे के आसपास छाछ और फल, 1:30-2 बजे भोजन और फिर शाम को 5 बजे के आसपास चाय के साथ भुनी हुई मूंगफली, चने जैसे स्नैक्स और रात का खाना सोने से 2-3 घंटे पहले ले लें। भोजन में मोटे अनाज से बनी चीजों को प्राथमिकता दें तो ज्यादा अच्छा है। और हाँ, खाने के साथ 1/2 चम्मच दालचीनी का पाउडर और 1 चम्मच सिरका ले लिया जाए और खाने के बाद 15 से 20 मिनट टहल लिया जाए तो ब्लड शुगर नियंत्रण में मदद मिलती है। तो श्रोताओं, ये थी कुछ जरूरी बातें डायबिटीज को लेकर। अगर इन बातों का ख्याल आप रखेंगे तो निश्चित ही आपकी जिंदगी गुनगुनाएगी खुशियों के गीत।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आजादी दिलाई।
1: रेडियो आजाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।

यह है रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज और आप ध्रुव संगारी बिलाल चिश्ती को इस पे सुन रहे हैं। रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज, देश का चैनल, देश के लिए,

0: ये प्रस्तुति हुई 2 अक्टूबर की शाम एके राम रहीम भजन संध्या में।
1: जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्री सुनील लोधी जी का। प्रस्तुति आरंभ हो उसके पहले हम मंच पर उपस्थित कलाकारों से आपका परिचय करवा दें। श्री सुनील लोधी तो उपस्थित हैं ही मंच पर, आपके साथ सहगायन कर रहे हैं श्री गोलू कुशवाहा और श्री गोविंद तिवारी। कीबोर्ड पर हैं श्री आदित्य गोस्वामी, ऑक्टोपैड पर श्री अंकित ठाकुर, गिटार पर श्री शिवांशु, ढोलक पर श्री संजय पुरी, तबले पर श्री ध्रुव राजपूत और बांसुरी पर श्री हर्ष। तो देवी और सज्जनों, माँ सरस्वती का आशीर्वाद और भगवान श्री हनुमान का भरोसा लिए आपके बीच उपस्थित हैं श्री सुनील लोधी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। सुनील जी से हम आग्रह करते हैं कि वो प्रस्तुति आरंभ करें।

हमारे एवं समस्त भोपालियों वासियों का मैं कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ये जो कार्यक्रम रखा गया है उनको उनको नाम से पाएं और प्रभु का गुणगान करें। मेरे भोपाल वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय हमारे भाई बहन, हमारे मैं क्या बोलूं, मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। सभी को मेरा कोटि कोटि बहुत बहुत धन्यवाद।

और हमारे भोपाल वासियों को कैसा भजन लगा है तालियों के साथ बता सकते हैं। मैंने न जाने कितने भजन और कितने गाने गाए, बट हमारे दर्शकों ने इतना प्यार दिया है, इतना सपोर्ट किया है कि आज मैं बॉलीवुड में एक थोड़ा सा हनुमान अंश का एक हिस्सा बना सका अपने भजन का। बोलिए जय जय श्री राम।

0: सभी को जय जय श्री राम।
1: आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी और उनके साथियों का भक्ति गायन। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: ये मेरा इंडिया।
0: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज। लीजिए प्रस्तुत है नगर की सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा। नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त सुनीता सिंह। परिक्रमा के आज के सफर पर चलिए मेरे साथ।

श्रोताओं, रविन्द्र भवन में सोमवार को 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्री रामलीला उत्सव की शुरुआत हुई। पहले दिन जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी के कलाकारों ने मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के जरिए भगवान श्री राम की जीवन गाथा को मंच पर साकार किया। नारद मोह, श्रीराम जन्म, विद्या अभ्यास और ताड़का वध के प्रसंगों को नृत्य, अभिनय और पारंपरिक संगीत के साथ प्रस्तुत किया गया। कलाकारों की भावाभिव्यक्ति, लयबद्ध पद संचालन और नृत्य की कोमलता ने प्रस्तुति को खास बनाया। श्री रामचंद्र पथगमन न्यास की ओर से आयोजित उत्सव के आखिर में मोहित शिवानी के हृदय बैंड ने भजन जैमिंग से माहौल को राममय बना दिया। और श्रोताओं, आज से आरंभ हो रहा है अभिव्यक्ति गरबा। भेल दशहरा मैदान में मंगलवार से यानी आज से अभिव्यक्ति गरबा महोत्सव 2026 की शुरुआत हो रही है। इस बार आपकी सुविधा के लिए एंट्री, एग्जिट और पार्किंग में कुछ बदलाव किए गए हैं। अभिव्यक्ति हर बार की तरह अपने ट्रेडिशनल रंग में रंगा नजर आएगा। गरबा ग्राउंड भी पिछले साल से बड़ा बनाया गया है। प्रतिभागियों का सर्कल पहले 100 फीट का होता था, इस बार 110 फीट का होगा। स्टेज भी पिछले साल से बड़ा होगा। यहाँ अभिव्यक्ति के गायक लाइव म्यूजिक क्वायर के साथ प्रस्तुति देंगे। अभिव्यक्ति के मेन एंट्री गेट पर दोनों तरफ 6-6 यानी कुल 12 लेन बनाई गई हैं। पास ही 2 एग्जिट गेट बनाए गए हैं, जो लोग ग्राउंड से बाहर आना चाहते हैं वो आसानी से निकल सकेंगे। पीछे वाले एंट्री गेट पर 6 एंट्री लेन बनाई गई है। रात 8 बजे से गरबा की शुरुआत महाआरती से होगी। और श्रोताओं, अलग अलग क्लबों द्वारा भी गरबा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर क्लब की सभी सदस्यों ने पारंपरिक और रंग बिरंगे परिधानों में सज धज कर पूरे उत्साह, उमंग और जोश के साथ गरबा की थाप पर नृत्य किया। मधुर संगीत और उत्सव के इस उल्लास ने पूरे वातावरण को आनंदमय बना दिया। श्रोताओं, आप सुन रहे थे नगर की सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा। अब परिक्रमा के इस अंक से इजाजत दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार। आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए।
1: इस प्रसारण सभा में आज आपके साथ हूं मैं सुनीता सिंह। रेडियो आजाद हिंद से हमारी अगली प्रस्तुति आज की रेडियो रिपोर्ट। इंतजार कीजिए बस जरा सा।

रेडियो रिपोर्ट में हम आपको लिए चल रहे हैं मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में, जहां रविवार की शाम नृत्य गायन एवं वादन पर केंद्रित श्रृंखला संभावना के तहत गायन और नृत्य की प्रस्तुतियां हुईं।

0: आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में। यह बघेली गायन की प्रस्तुति, कलाकार हैं रमा दुबे और साथी।
1: हम गणेश वंदना प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमारे यहाँ परंपरा है कि कोई भी कार्य हो उसमें सबसे पहले गणेश जी का मान सम्मान आगमन और तरह तरह से उनकी स्तुति की जाती है। और गणेश जी तो इतने महान हैं कि उन्होंने माता को सर्वोपरि बताया है और उन्हीं के आदेशों का हम लोग पालन करते हैं। हम पहले गणेश जी की वंदना करते हैं कि वैसे जब उत्सव होता है तो गणेश जी स्तुति से आते हैं, लेकिन जहाँ माँ का महोत्सव होता है वहाँ गणेश जी भुइयां पे लौटते हुए आ जाते हैं। और कैसे भुइयां पे लौटते हुए आ रहे हैं उस दृश्य को हम देखते हैं।

हमारे विंध्य प्रदेश की विशेषता है कि हमारे यहाँ कोई भी कार्यक्रम करने के लिए जाते हैं तो गैलहाई गीत जरूर गाते हैं, रास्ते में जाते रहते हैं और चलते चलते वहीं भगवान की कल्पनाओं में डूबे रहते हैं, चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो या चाहे भोले बाबा हो। तो हम आप लोगों के सामने एक गैलहाई प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमें राम के वनगमन का वर्णन है। ककड़ीले पथरीले और कटीले रास्ते हैं, उस परिस्थिति में राम भगवान कैसे पैदल जा रहे हैं ये हमारी विंध्य की नारियां इस गीत के माध्यम से वर्णन कर रही हैं।

अगली प्रस्तुति है वो मैं अब सभी भक्त जनों की ओर से माँ अम्बा पराम्बा को अर्जी लगाती हूँ कि जितने भी भक्त यहाँ माता रानी की स्तुति का स्मरण कर रहे हैं उन सबकी सब पे कृपा बनाए रखिए और दया बनाए रखिए। इसके बोल हैं कि माता रानी हम तो आपके चरणों की धूल हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं, आप तो हमारे ऊपर बस कृपा बनाए रखिए। अब मैं इस गीत को आपके समक्ष रख रही हूँ।

0: श्रोताओं, ये थी आज की रेडियो रिपोर्ट। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
0: श्रोताओं, राष्ट्र मात्र भूखंड नहीं, ये हमारी अनुभूति है, हमारी चेतना, हमारा अभिमान है। तभी तो हर भारतवासी गर्व से कहता है, हिंदुस्तान हमारा। जी हाँ, यही है हमारा अगला कार्यक्रम। इंतजार कीजिए बस कुछ पलों का।
2: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।

0: हाँ मुन्ना, आपको और कुछ चाहिए भाई? चावल या रोटी?
1: अरे नहीं नहीं गजभी है काका, बस। काका एक बात तो बताइए, हम लोग अक्सर आपके ढाबे पर खाना खाने आते हैं, आप हमेशा ही देश प्रेम के गीत सुनवाते हो, क्यों काका?
2: अरे गजभी काका को प्रेम प्यार पसंद नहीं है ना काका, इस तरह के गीत लगाकर कहीं आप अपने परिवार से दूर रहने के गम को कम तो नहीं करते?
3: नंदी बात।
2: अरे ये तोता भी हमें डांट रहा है।
0: मेरे बारे में कोई कुछ भी कड़वा बोलेगा तो ये डांटेगा ही है।
2: तो तोता राम जी, गजभी काका प्रेम भरे गीत क्यों नहीं लगाते?
0: है? ये कह रहा है कि देश प्रेम बड़ा है, यानी कि देश से प्रेम करना ही सबसे बड़ा प्रेम है।
2: अच्छा, क्या आप किसी ऐसे देशभक्त को जानते हैं जिसने अपने दिल दिमाग से जंग जीती हो?
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जहाँ एक ओर राजनैतिक आंदोलनकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, वहीं दूसरी ओर ऐसे महान व्यक्तियों का योगदान भी कम नहीं है जिन्होंने अपने बुद्धि कौशल, स्पष्ट दृष्टिकोण और वाक चातुर्य से अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया। ऐसे ही एक व्यक्ति थे भूला भाई देसाई, जिन्होंने एक वकील की हैसियत से अंग्रेजों की अनेक चालों को नाकाम कर दिया।
2: तो फिर काका आप हमें सुनाएंगे भूला भाई की कहानी?
3: सुनाएंगे, गजभी काका सुनाएंगे।
0: ठीक है ठीक

0: भाई भूला भाई देसाई का जन्म वलसाड़ गुजरात में हुआ। उनके पिता जीवन जी एक सरकारी वकील थे जिन्हें निजी मुकदमे लड़ने की छूट थी। उन्होंने बहुत धन कमाया, जमीनें खरीदी और खेती बाड़ी भी की। भूला भाई ने मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से पढ़ाई की और साहित्य, इतिहास और अंग्रेजी में स्नातक हुए। उन्हें कॉलेज में प्राध्यापक का पद मिला। अध्यापन करते हुए उन्होंने कानून की विद्या हासिल की। उन्हें हिंदी, फारसी, अंग्रेजी भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। सन 1905 में मुंबई उच्च न्यायालय में एक वकील की हैसियत से उनका नामांकन हुआ। वो बहुत ही तेज दिमाग के हंसमुख इंसान थे और बातों ही बातों में लोगों को अपने पक्ष में कर लिया करते थे। इसी खासियत के कारण वो बिना कागजों को देखे मुंह जबानी केस लड़ते थे।
1: ऑर्डर, ऑर्डर। क्यों मनसुख भाई, आपसे अपना पासपोर्ट सबमिट करवाने के लिए कहा गया था, कहाँ है पासपोर्ट?
0: जज साहब, वो मेरी पत्नी के पास कनाडा में है, तो मैंने वहाँ पत्र लेकर मंगवाया है। ये देखिए, ये रहा रजिस्टर्ड लेटर।
2: वाह, क्या बात है, आप खुद यहाँ और आपका पासपोर्ट कनाडा में।
0: जी वो
1: मनसुख भाई, ये कोर्ट है, यहाँ बहानेबाजी नहीं, सबूत चाहिए।
2: जैसा मुझे लगता है मनसुख भाई ये चाहते हैं कि मैं खुद कनाडा जाकर इनके घर से पासपोर्ट लेकर आऊं। भाई ये तो मेरे लिए टिकट भी लेकर आए हैं, इसी बहाने मैं भी कनाडा की सैर कर लूंगा, क्यों मनसुख भाई?
1: ऑर्डर, ऑर्डर।
0: जी वो
2: आप मेरे लिए टिकट लाए हैं या अभी खरीदने हैं?
0: जी
2: चलिए छोड़िए, मुझे पैसे दे दीजिए, टिकट मैं स्वयं ही ले लूंगा। पर हाँ, ये तो बता दीजिए कि आपकी पत्नी कनाडा में है या दुबई में? भाई पिछली बार आपने कहा था कि वो दुबई गई हुई है, कनाडा या दुबई? बिजनेस आपकी पत्नी ही संभालती है, आप निठल्ले बैठे रहते।
0: नहीं माई बात, मैं ही
2: आप कोई काम नहीं करते, आपकी पत्नी बिजनेस संभालती थी, बिजनेस में पैसा भी उसी का लगा हुआ है, आप सिर्फ गमाते हैं। आपको पैसा चाहिए था, उसने दिया नहीं और आपने उसका कत्ल कर दिया।
0: जी वो
2: ताकि सारी दौलत आप हड़प सकें। क्यों आप अदालत में ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जिंदा है? जैसा ये आदमी झूठ पर झूठ बोलकर अदालत को गुमराह कर रहा है। मेरे पास और भी सबूत है जैसा।
0: भूला भाई देसाई अपनी चतुराई से बात करते हुए केस जीत जाया करते थे। उन्होंने वकालत करते हुए अथाह पैसा कमाया। अपने से कई बड़े और अनुभवी वकीलों के साथ मुंबई उच्च न्यायालय की बार में उनका उठना बैठना था। बात उन दिनों की है जब 1928 में किसानों के बरदौली आंदोलन की शुरुआत हुई। किसान बहुत गुस्से में थे, वो लोग महात्मा गांधी के पास आए।
3: अरे ऐसा भी कभी होता है? कब तक सहन करेगा?
4: कब तक बर्दाश्त करेंगे हम अंग्रेजों की ज्यादती?
0: गांधी जी को एक ऐसे वकील की तलाश थी जो प्रभावी तरीके से किसानों की बात अंग्रेजी सरकार तक पहुंचा सके। उन्होंने वकील भूला भाई देसाई का बहुत नाम सुना था, इसके लिए उन्होंने भूला भाई को अपने ऑफिस आने का निमंत्रण भेजा।
5: भूला भाई जी,
0: जी
5: मैं चाहता हूं कि अंग्रेजी हुकूमत के सामने हमारी ओर से मांगे आप रखें।
0: जी
5: आपको तो वकालत का अच्छा खासा अनुभव है, सुना है आप केस हमेशा ही जीतते हैं।
2: मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं गांधी जी, आपने मुझे याद किया और अपने साथ काम करने का मौका दिया, ये मेरी खुशनसीबी है।
5: अरे बस
2: आप मुझे बस अपनी मांगें और अन्य जानकारी दें, मैं स्टडी कर लूंगा।
5: देता हूं। और भूला भाई जी, हमें अच्छा लगेगा अगर आप स्वराज प्राप्ति के उद्देश्य के लिए किए गए कार्यों में हमें अपना बहुमूल्य सहयोग दें।
6: भारत मेरा भी देश है गांधी जी, मैं हमेशा आपके साथ हूँ।
5: मुझे आपसे यही उम्मीद थी भोला भाई जी।
0: भोला भाई ने किसानों की मांगों को इस कुशलता से पेश किया कि सरकार को भूमि कर में संशोधन करना पड़ा, जब्त की हुई भूमि लौटानी पड़ी, साथ ही कैद किए गए किसान भाइयों को भी छोड़ना पड़ा। इस घटना से उत्साहित होकर भोला भाई ने कांग्रेस में विधिवत प्रवेश कर लिया। इसी दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ब्रिटिश सरकार के बीच आर्थिक लेन देन हुआ, जिसमें भारत को भविष्य में खर्चों का वहन करना था। इस बारे में कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ।
5: भोला भाई
6: जी, गांधी जी,
5: आपने ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार के बीच आर्थिक लेन देन के बारे में विस्तार से पता लगाया?
6: जी बापूजी।
5: क्या लगता है आपको कि इस ऋण से भारत की आर्थिक स्थिति सुधरेगी?
6: सुधरेगी तो तब बापूजी, जब वो भारत के कल्याण के लिए लिया गया हो। वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने फायदे के लिए लिया है और चुकाना हमें पड़ेगा।
5: आपके कहने का अर्थ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो ऋण भारत के नाम से ब्रिटिश सरकार से लिया है, वो भारत की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए नहीं बल्कि कंपनी के लिए है
2: और चुकाना हमें पड़ेगा।
3: ये क्या बात हुई, ब्रिटिश सरकार हमें बेवकूफ बना रही है?
6: वो तो सालों से होता आया है।
5: ये तो सरासर अन्याय है, ये अन्याय है भोला भाई जी।
3: ये हमारे साथ धोखा है बापूजी।
2: हाँ बापूजी,
6: हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी।
7: ये अन्याय है, हम इसका विरोध करेंगे, हम इसका विरोध करेंगे। अन्याय।
5: शांत भाइयों, शांत।
0: सन 1932 में अंग्रेजों ने भोला भाई को स्वदेशी सभा की गतिविधियों के लिए गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। देश के लिए जेल जाने का ये उनका पहला अवसर था। पढ़े लिखे होने के कारण उन्हें उच्च श्रेणी का हकदार माना गया और उसी के अनुसार सुविधाएं दी गईं। वहां रहकर उन्होंने भगवद गीता और कानून की कई किताबें पढ़ डाली, मगर बाहर की दुनिया से बराबर कटे रहने के कारण वो अस्वस्थ रहे। उन्होंने अपने बेटे को पत्र लिखा।
6: पुत्र, मैंने यहां बहुत सी किताबें पढ़ ली हैं, बाहर की दुनिया से दूर मैं बहुत परेशान हो जाता हूं। हालांकि मुझे उच्च श्रेणी का कैदी होने की सभी सुविधाएं मिली हुई हैं, लेकिन यहां करने के लिए कुछ नहीं है, कोई उत्साह नहीं है। खाली खाली दीवारें, सूनापन, एक बंधी सी दिनचर्या, सब कुछ जैसे जड़ होता जा रहा है। पर सोचता हूं कि आजादी की राह में मेरा यह कदम तो उठना ही था। बेटा, मुझे सबके हाल बताना, गांधी जी, जवाहरलाल और सब लोग कैसे हैं?
0: सन 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पारित हुआ, जिसमें प्रांतीय स्वायत्तता प्राप्त हुई। उस समय तक भोला भाई लगातार अस्वस्थ रहे और उन्हें इलाज के लिए यूरोप जाना पड़ा। जब वो लौटे तो उन्हें इस प्रांतीय स्वायत्तता की जानकारी मिली। देश भर से चुने हुए प्रतिनिधियों को विधानसभा में आकर ब्रिटिश सरकार के सामने विपक्षी दल के रूप में कार्य करना था। इस बात पर कांग्रेस में बहस छिड़ गई।
8: हम क्यों विधानसभा में शामिल हों?
3: क्यों हमें शामिल होना चाहिए?
8: क्यों हो?
3: कारण तो बताइए। शामिल होना चाहिए।
9: कांग्रेस विधानसभा में शामिल नहीं होगी।
5: आप बताइए भूला भाई।
6: गांधी जी, मेरा मत है हमें धीरे धीरे अपना कदम आगे बढ़ाना होगा। ये हमारा पहला कदम होगा ब्रिटिश सरकार के सामने जाकर अपनी बातें रखने का।
5: देखिए, फूला भाई जी ने तो बता दिया कि वो तो कांग्रेस के विधानसभा में भाग लेने के पक्ष में हैं। आप लोग क्या सोचते हैं?
3: अच्छा, तो हमारे विधानसभा में शामिल होने से क्या होगा?
5: हाँ, बताइए।
6: इससे सबसे बड़ा फायदा होगा कि हम अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा सकेंगे। अरे भाई, दुश्मन को मारना है तो उसके नजदीक रहकर ही उस पर तगड़ा वार किया जा सकता है। और हमारे लिए तो ये एक अच्छा बहाना होगा।
5: मैं भूला भाई की बात से 100% सहमत हूँ। क्यों जवाहरलाल
10: जी? बापू, मैं भी सहमत हूँ।
5: अब बताइए आप लोग।
8: मैं भी सहमत हूँ बापू।
5: हम भी सहमत हैं बापू। तो सर्वसम्मति से फैसला हो गया कि कांग्रेस विधानसभा में शामिल होगी।
3: जी जी जी।

0: भूला भाई देसाई गुजरात से केंद्रीय विधानसभा के लिए चुने गए। जब वो अपनी प्रखर बुद्धि से विश्वास पूर्वक किसी बात को कहते तो पूरा सदन चुप हो जाया करता था। उसके बाद 1937 में भी कांग्रेस ने प्रांतीय विधानसभा में अपने उम्मीदवार खड़े किए तो अधिकतर स्थानों से कांग्रेस ही जीती। 1938 में द्वितीय महायुद्ध की घोषणा की गई, जिसमें बिना औपचारिक सहमति प्राप्त किए भारत को भी युद्ध में शामिल कर लिया गया। ये जानकर सभी भारतीय नेता बौखला उठे।
1: ये गलत है। हमारा देश क्यों लड़े? ना, बिल्कुल गलत है। हमारा देश क्यों लड़े? नहीं लड़ेगा हमारा देश। क्यों?
2: साइलेंट, इतना क्यों शोर मचाता है तुम लोग? सिंगल मैन बोले,
3: तुम जनतंत्र जनतंत्र का झूठा नारा लगाते हो।
4: हम जनता के प्रतिनिधि हैं। हमारी सहमति के बिना भारत को द्वितीय महायुद्ध में शामिल क्यों किया गया?
1: क्यों किया गया?
2: चिल्लाओ मत, सरकार हमारी है, हम कुछ भी कर सकता है। ओके,
5: तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, ये हमारा देश है।
3: हमें आपसे जवाब चाहिए, जनता आपसे जवाब मांग रही है।
2: ओफो, तुम लोग कितना चिल्लाता है, सिंगल पर्सन क्यों नहीं बोलता?
4: ठीक है,
6: भूला भाई आप बोलिए।
4: बोलिए।
7: ठीक है, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब भारत इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता तो उसे जबरन वॉर में इन्वॉल्व क्यों किया जा रहा है? क्यों हमारे देश के संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है? हमें नहीं चाहिए युद्ध, नहीं चाहिए किसी अन्य देश की बर्बादी।
2: लुक, दिस इज एन ऑर्डर बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, हमें युद्ध करना ही होगा। ओके,
7: ये महायुद्ध ब्रिटिश साम्राज्य के अपने मतलब के लिए हो रहा है। हम अपने बेगुनाह भाइयों को मौत के मुंह में क्यों डालें? इस मुद्दे के सभी बजट को रद्द किया जाए, हम सब इसका विरोध करते हैं।
3: हाँ, विरोध करते हैं, बिल्कुल विरोध करते हैं।
2: शट अप, आई से शट अप, कुछ वापस नहीं होगा। डिसीजन हैज बीन टेकन, वी डोंट वांट एनी आर्गुमेंट, अंडरस्टैंड?
3: नो, वी डोंट वांट टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स।
2: शट अप, शट योर माउथ।
1: वॉक आउट।
0: द्वितीय महायुद्ध अपनी चरम सीमा पर था। 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों की ओर से लड़ रहे भारतीय सेना के हजारों सैनिकों को अपने साथ मिलाकर एक सेना का गठन किया, आजाद हिंद फौज।
8: वंदे मातरम।
9: हम चाहते हैं कि आजाद हिंद फौज अर्थात INA की लीडरशिप में जापानी फौजें भारतीय सीमा पर तैनात ब्रिटिश सेना पर आक्रमण करें।
10: Why, Mr. Bose? जापानी सेना इंडिपेंडेंटली हैंडल कर सकती थी, then why under INA?
9: ये हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई है, हमें अपनी सीमा और
10: सैनिक हर बात की जानकारी रखते हैं।
9: देखो, ऐसा करते हैं कि पहले INA के सैनिक आक्रमण करेंगे। अगर हम सफल होते हैं तो जापानी फौजें आ जाए, इससे आपकी सेनाओं को अधिक हानि नहीं होगी।
10: वेल, आई थिंक इट इज बेटर ऑप्शन। ओके, दिस इज डन।
0: गांधी जी रिहा हो चुके थे। इधर मुस्लिम लीग और कांग्रेस अपने अपने उसूलों पर टिके किसी प्रकार का समझौता करने को राजी नहीं थे। मई 1944 में INA ने भारतीय सीमा पर मौजूद अंग्रेजी सेना पर आक्रमण किया। उन्होंने मणिपुर जीतकर अपना झंडा फहराया। उसके बाद जापानी फौजें सहायता के लिए आ गईं, लेकिन जल्दी ही जापानी फौजों को पीछे हटना पड़ा क्योंकि महायुद्ध में कई जगह जापानी सेनाओं की हार हो गई थी। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम से हमला हुआ। 17 अगस्त 1945 को ताइपे से उड़ान भरते समय वायुयान दुर्घटनाग्रस्त होने से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की आशंका जताई गई। जापान ने भारत से अपनी फौजें वापस बुला ली। मजबूरन आईएनए के सैनिकों को भी पीछे हटना पड़ा। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार ने आईएनए के 3 जांबाज सैनिक अफसरों शाहनवाज खान, पीके सहगल और जीएस ढिल्लों को बंदी बनाकर उनका कोर्ट मार्शल करने का फैसला कर लिया।
6: Your Honor, इन तीनों लोग शाहनवाज खान, पीके सहगल और जीएस ढिल्लों ने ब्रिटेन की महारानी के खिलाफ साजिश किया है। माय लॉर्ड, ये लोग देशद्रोही हैं। इनको
7: ऑब्जेक्शन मे लॉर्ड। हमारे जाबाज सैनिक ऑफिसर्स को सरकारी वकील बिना फैसला हुए ही देशद्रोही कह रहे हैं, यह गलत है।
2: ऑब्जेक्शन सस्टेन।
7: थैंक यू योर ऑनर। हमारे ऑफिसर ब्रिटिश सरकार की ओर से कितने ही देशों के खिलाफ लड़ने के लिए गए, जापान, बर्मा, मलाया और सिंगापुर, सभी देश के सैनिक अपने देश को बचाने के लिए अपना जी जान लगा रहे थे। तो हमारे ऑफिसर्स के मन में अपने हिंदुस्तान को आजाद करने की ललक उठी योर ऑनर। इसी कारण से आजाद हिंद फौज का गठन किया गया, ना कि ब्रिटेन की महारानी के खिलाफ लड़ने के लिए फौज का गठन हुआ।
11: इंकलाब
12: जिंदाबाद,
11: इंकलाब
12: जिंदाबाद,
11: इंकलाब
12: जिंदाबाद,
11: इंकलाब
12: जिंदाबाद।
6: लेकिन ये लोग पूरे ढाल बाल और शास्त्रों के साथ गलत तरीके से इंडिया में घुसे थे।
7: आप अंग्रेज लोग शायद भूल रहे हैं कि ये देश भारत है, हमारा है, और ये तीनों ऑफिसर्स भारतीय हैं।
12: जिंदाबाद।
6: अब माय लॉर्ड, लेकिन यहाँ तो जो सरकार है वो ब्रिटेन की है।
7: योर ऑनर, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इन ऑफिसर्स के मन में अपने देश को आजाद करने की भावना हिलोरे ले रही थी। ये लोग गैर मुल्क के चंगुल से बचाने के लिए ही अपने देश, अपने इंडिया में घुसे हैं, ना कि किसी गैर मुल्क में घुसे। योर ऑनर, ये लोग निर्दोष हैं। ब्रिटिश सरकार के देशद्रोह के लगाए हुए आरोप गलत हैं योर ऑनर। इनका कोर्ट मार्शल किया जाना गैर कानूनी है।
9: एडवोकेट भूला भाई, ये बात आप क्यों भूल रहे हैं कि अगर देश की सरकार के खिलाफ कोई कदम उठाता है तो ये क्राइम है। आर्मी ऑफिसर्स के लिए तो ये गुनाह और भी संगीन हो जाता है। सरकार जो भी हो उसके खिलाफ विद्रोह तो हुआ ही है।
7: योर ऑनर, हम भी आपको एक बात याद दिलाना चाहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत किसी भी देश को स्वतंत्र रहने का और अपनी रक्षा के लिए हथियार रखने और उठाने की अनुमति है। हमारे ऑफिसर्स ने कोई गलत कार्य नहीं किया।
9: देखो, आपकी दलीलें बेबुनियाद हैं। हम इसे नहीं मानते और इन्हें देशद्रोही मानते हुए काला पानी की सजा का हुक्म सुनाते।
11: ब्रिटिश सरकार
12: हाय हाय,
11: ब्रिटिश सरकार
12: हाय हाय,
11: ब्रिटिश सरकार
12: हाय हाय,
11: अपने देश
12: वापस जाओ, वापस जाओ,
11: ब्रिटिश सरकार
12: हाय हाय,
11: ब्रिटिश सरकार
12: हाय हाय।
13: माफ करना दोस्तों, मेरी कोशिश नाकाम रही।
14: भोला भाई, आपकी तबीयत कैसी है?
13: ठीक हूं। बैठो तेज बहादुर, बैठो जवाहरलाल।
15: लगातार 3 महीने से दिन रात केस के लिए स्टडी कर रहे थे, बीमार तो पड़ेंगे ही।
13: मुझे अपनी तबीयत की नहीं, अपने देशभक्त उन ऑफिसर्स की चिंता है जवाहरलाल। मैं चाहकर भी उनकी रक्षा नहीं कर सका।
14: किसने कहा कि तुम रक्षा नहीं कर सके? जानते हो, पूरे देश में तुम्हारी दी हुई दलीलों और हिम्मत की चर्चा हो रही है।
15: और तो और, नौसेना और वायुसेना के सैनिकों में भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के स्वर उठने लगे हैं। और जानते हो, अंग्रेजों ने डर कर तीनों को बरी कर दिया है।
16: सच? जवाहर, क्या तुम सच कह रहे हो? तेज बहादुर, मेरी कोशिश सफल हो गई, मैं कामयाब हो गया। दोस्तों, मैं कामयाब हो गया।
14: हाँ भोला भाई, लोग तुम्हारे मुंबई लौटने का इंतजार कर रहे हैं, पलकों पर बिठाने का झंडा फहरे।
15: इस ऐतिहासिक केस लाल किले का मुकदमा के बाद तो भोला भाई को बच्चा बच्चा जानने लगा होगा, है ना गजबिये काका?
17: हाँ, मगर इस मुकदमे में अपनी जान झोंकने का असर उनका शरीर झेल नहीं पाया और स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ महीने पहले 6 मई 1946 को देश के ये महान वकील, स्वतंत्रता सेनानी भोला भाई देसाई सदा सदा के लिए अमर हो गए।
14: सही कहा है आपने गजभिये काका, अपने देश पर मर मिटने के लिए तलवार की ही जरूरत नहीं होती, दिल दिमाग से भी लड़ा जा सकता है।
17: मेरा मन कहता है कि ऐसे देशभक्तों को हम सलाम करें। जय हिंद।
14: जय हिंद।
18: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदोस्ता हमारा, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन, संस्कृति विभाग। इसी समय फिर मिलेंगे एक और क्रांतिवीर की जीवन गाथा लेकर, कार्यक्रम हिंदोस्तान हमारा।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकाथा।
1: ये थे राष्ट्र अभिमान के स्वर, देश की गौरव गाथा, कार्यक्रम हिंदुस्तान हमारा। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर इस वक्त आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए। अगले कार्यक्रम के लिए इंतजार करें बस जरा सा।

नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

श्रोताओं, रेडियो आजाद हिंद की ये प्रसारण सभा आप सुन रहे हैं सुनीता सिंह के साथ। दोस्तों, कहते हैं कि जान है तो जहान है। बिल्कुल सच, 100% सही बात है ना। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो ये दुनिया खूबसूरत है। जो कुछ हमारे पास है उसका हम मजा ले सकते हैं, उसका आनंद उठा सकते हैं। लेकिन अगर हम बीमार हो गए, अगर हमारा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है, तो फिर कुछ भी हमारे पास हो, दुनिया की सारी दौलत हो, सारे सुख और सारी सुविधाएं हो, लेकिन वो सभी कुछ बेमजा हो जाती हैं। तो इसी बात के मद्देनजर आपसे हम करते हैं स्वास्थ्य चर्चा। कुछ छोटी छोटी बातें जिनका आप ख्याल रखें तो आप रह सकते हैं चुस्त दुरुस्त, जिंदगी आपकी खुशनुमा रह सकती है और आप हमेशा मुस्कुराते हुए जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा अंतराल, हाजिर होते हैं बस कुछ ही पलों में।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण और कार्यक्रम है स्वास्थ्य चर्चा। श्रोताओं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मनुष्य इस प्रकृति की ही उपज है और सभ्यता के विकास के साथ ही हमने अपने हर प्रश्नों हर समस्या का समाधान भी इसी प्रकृति से ही तो प्राप्त किया है। विशेष रूप से यदि भारतीय ज्ञान और परंपराओं की बात की जाए तो सदियों से हमारी यही विचारधारा रही है कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो सजीव हों या निर्जीव, उनके निर्माण में प्रकृति के 5 तत्वों जिन्हें की पंच महाभूत जाता है, इन्हीं का हाथ है। तत्व हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। यानी इन्हीं तत्वों से संसार की, ब्रह्मांड की हर चीज बनी है, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी। और इन्हीं 5 तत्वों पर टिका है हमारा स्वास्थ्य भी। आज के हमारे कार्यक्रम का विषय भी यही है और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं विषय विशेषज्ञ आयुर्वेदाचार्य श्री शैलेश मानकर जी। मानकर जी विगत 25 वर्षों से प्रैक्टिसरत हैं, लगभग 15 वर्षों से सुवर्ण प्राशन संस्कार एवं गर्भ संस्कार के नियमित परामर्शदाता और अनुसंधानकर्ता भी रहे हैं। ये अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी हैं, जो आयुर्वेद के अध्ययन, परामर्श और चिकित्सा में समर्पित हैं। सन 2018 में मानकर जी को प्रतिष्ठित पंडित उद्धव दास मेहता राज्य स्तरीय चिकित्सा सेवा सम्मान से विभूषित किया गया है। सर, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद, नमस्कार।
1: आज हम इस कार्यक्रम में आपसे यही जानना चाहते हैं कि जो हमारी प्राचीन ज्ञान और विज्ञान की परंपरा रही है, उसमें हमारे स्वास्थ्य के संबंध में क्या प्रावधान है और इसमें प्रकृति की क्या भूमिका है।
2: आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है
1: जी।
2: हम जितने भी भारतीय लोग हैं, हमारी भारतीय परंपरा है, यह सारा का सारा ज्ञान प्रकृति से ही अर्जित किया हुआ है। हमारी सारी परंपराओं में यह बहुत स्पष्ट रूप से मिलता है। हमारे यहाँ एक सेंटेंस कहा जाता है, जैसा जैसा इस ब्रह्मांड में है वैसा वैसा इस पिंड में है। तो जहाँ इस पूरे ब्रह्मांड में जो चीज हो रही है, वही चीजें रिफ्लेक्ट हमारे शरीर में, हमारे किसी भी पिंड में भी वही चीज हो रही है। मतलब हमने उनको एकाग्र किया है कि प्रकृति के साथ, इस ब्रह्मांड के साथ हमारा कैसा एकाकार है। आपने मूल तत्व इसमें बता ही दिए हैं, जो हमारे पंच महाभूत होते हैं। जो पंच महाभूत में आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है और पृथ्वी है। यही हमारे तत्वों के, हमारे शरीर के, हमारे सृष्टि का मूल आधार है। इन्हीं से हमारा शरीर बना हुआ है। हम लोक भाषा में भी बोलते हैं ना, सामान्य रूप से ये मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा। ऐसे अनेक उदाहरण आपको मिलेंगे जब हम दिनचर्या में, लोक भाषा में आराम से बोलते हैं। और यही इसका सार है कि जो पंच महाभूत है, उसी से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। पंच महाभूत में ही हमारी सब्जियां भी उग रही है
1: जी,
2: हमारे पेड़ पौधे भी है, इसी जल का उपयोग भी हमारे शरीर में हो रहा है। हमारे शरीर का जो रिक्त स्थान है वह आकाश को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारी श्वास प्रश्वास को हम प्राण बोलते हैं
1: जी, प्राणवायु,
2: प्राणवायु
1: जी।
2: यह प्राण को ही हम वायु के रूप में हम देख रहे हैं। आकाश महाभूत से जो हमारा अंदर अंग है, जो खाली स्थान है
1: जी,
2: जो आमाशय है, पक्वाशय है, ऐसे जो स्टमक वगैरह है, इनमें जो होलो स्पेस है वह आकाश को रिप्रेजेंट कर रहा है।
1: अच्छा।
2: जो वायु हम सांस ले रहे हैं, यह हमारे प्राण को, वायु को रिप्रेजेंट कर रही है। हमारे शरीर में जितना रक्त है, लसीका है, जो भी चीजें जो द्रव रूप में, तरल रूप में बह रहा है, वो हमारे सारे जल को रिप्रेजेंट कर रहा है।
1: अच्छा।
2: और हमारी मांस है, हड्डियां हैं, यह हमारे सर्वे जो है वो सब का सब पृथ्वी महाभूत को ये कर रहा है।
1: जो
2: साथ में रह गई बात अग्नि की,
1: तो
2: अग्नि जो हमारी पाचन अग्नि है, हम बोलते ही है कि हमारे शरीर में जठर अग्नि होती है, हमारा खाना जो पचता है वह अग्नि के माध्यम से ही पचता है। हमारी जितनी मेटाबॉलिज्म होती है वो 13 प्रकार की अग्नियां हमारे शरीर में बता के रखी हैं।
1: 13 प्रकार की अग्नियां,
2: 13 प्रकार की अग्नियां। तो जठर अग्नि के साथ में हमारे सारे धातुओं का पोषण करने वाली, हम आज के समान में जो मेटाबॉलिज्म वगैरह बोलते हैं, यह सारा का सारा अग्नि के स्वरूप में हमारे ज्ञान परंपरा में उसको वर्णित किया है।
1: अच्छा।
2: और उत्तर उत्तर एक के बाद एक धातु पूरी तरह से जब सम्यक रूप से समान अवस्था में बनी रहेगी तो ही हम स्वस्थ रह पाएंगे। मतलब हमारे शास्त्र में बहुत अच्छे से बताया कि ये जो पंच महाभूत है
1: जी,
2: या हम आयुर्वेद के हिसाब से जो दोष सप्त धातु वगैरह सभी लगते हैं, इनकी सबकी साम्य अवस्था, ये सब एक बैलेंस कॉम्बिनेशन में रहेंगे तो ही हम स्वस्थ कहलाएंगे।
1: अच्छा,
2: ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज बढ़ी है कम हो, वो चीज जो होती है इसके सम्यक रूप से हमारे इसमें कहा भी गया है कि जब हमारी इंद्रियां प्रसन्न हो, जब हमारे अंग सुचारू रूप से काम कर रहे हो
1: जी,
2: है ना, हमारी मानसिक स्थिति सम्यक हो और हमारी आध्यात्मिक भी, हम भारतीय परंपरा में आध्यात्म को भी मानते हैं, तो इनका जब सम्यक रूप से समान अवस्था जब रहेगी तभी हम स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ की परिभाषा ही ऐसी दे के रखी है।
1: अच्छा,
2: स्वस्थ रहने के लिए सबका बैलेंस कॉम्बिनेशन होना
1: जरूरी
2: बेहतर है। और एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ कि जब हमारा जन्म होता है तो हमारे जन्म के समय हम पे छह चीज की काम करती हैं, छह तत्व काम करते हैं
1: जी,
2: जिसमें हमारे माता के भाव होते हैं, पिता के भाव होते हैं, उसी के साथ में जो हम अन्न ग्रहण करते हैं उसका प्रभाव होता है
1: जी,
2: जो मन का जो हमारा प्रभाव, जब उसी हमारी मानसिक स्थिति होती है
1: जी, जी,
2: उसका भी प्रभाव पड़ता है, और इसके साथ में जो जीवात्मा है वह अपने कुछ गुणधर्म लेके आती है, तब जाके एक जीव का
1: निर्माण होता है,
2: निर्माण होता है और उसमें एक बैलेंस कॉम्बिनेशन बनता है और इसके कारण वह अस्तित्व में रहता है। यह सारा का सारा कॉम्बिनेशन, ये सारा कार्य जो है वो पंच महाभूत से बने हुए शरीर पर ही हो रहा है।
1: अच्छा, तो सर यहाँ पर एक प्रश्न मन में ये उठता है कि ये जो पांच तत्व हैं वो क्या हर मनुष्य में समान अनुपात में होते हैं या इनके अनुपात भी मनुष्य मनुष्य में अलग अलग होते हैं?
2: बिल्कुल सहज रूप से इसमें हर मनुष्य में इसके अनुपात में थोड़ा सा अंतर आता है,
1: शरीर की जो गुणधर्म है उस पर भी ये चीज निर्भर करेगी।
2: निर्भर करेगी, ये स्वाभाविक है हमारे प्रकृति में। पहाड़ी क्षेत्र में रहने वालों की शरीर कदकाठी अलग होती
1: जी,
2: है
1: जी, बिल्कुल।
2: हमारे जो साधारण देश होता है वहाँ की कदकाठी अलग होती है और जो गर्म सिर ये हमारे कफ को रिप्रेजेंट करता है।
1: अच्छा,
2: ये कफ का है
1: जी।
2: जो आपके नाभि के आसपास का एरिया मध्य शरीर है हमारा, यह पित्त को रिप्रेजेंट करता है और कमर से नीचे का हिस्सा वात को रिप्रेजेंट, जब भगवान दक्षिणायन होते हैं तब हमारा शरीर वहां से बनना शुरू, दिनचर्या दिन में भी उसका डिवाइडेशन किया है और वर्ष में भी डिवाइडेशन किया हुआ।
1: अच्छा, वर्ष में किस तरह से सर?
2: वर्ष में हमारे 12 पूरे महीने होते हैं, उसमें 6-6 महीने का साइकिल, उसको दो हिस्सों में बांटा है, आदान काल विसर्ग काल।
1: अच्छा,
2: सरल भाषा में हम समझे तो हम पतंग उड़ाते हैं, मकर संक्रांति आती है
1: जी,
2: मकर संक्रांति से भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण होते हैं
1: जी,
2: यहाँ से हमारा शरीर घटना शुरू होता है।
1: अच्छा,
2: और जुलाई के माह में कर्क संक्रांति आती है
1: जी,
2: जब भगवान दक्षिणायन होते हैं तब हमारा शरीर वहाँ से बनना शुरू होता है।
1: अच्छा,
2: तो ये 6 महीने हमारा शरीर घटता है, 6 महीने हमारा शरीर।
1: तो सर जो आप ये बोल रहे हैं शरीर का घटना या शरीर का बढ़ना, इससे क्या अभिप्राय है?
2: शरीर का घटना या बढ़ना से अभिप्राय ये है कि हमारी जितनी भी वाइटल एनर्जीज हैं, हमारी अग्नि है वही पचन का कार्य कर रही है ना
1: जी,
2: तो वो धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे हम मकर संक्रांति के बाद जब हमारा शरीर पूरी तरह से बलवान होता है तो जो फाल्गुन महीना आता है, जो होली का समय है
1: जी,
2: उस वसंत ऋतु में हमारे शरीर में कफ का सबसे ज्यादा आधिक्य होता है, तो हमारा कफ प्रकोप का समय बता के रखा है।
1: अच्छा,
2: उसके बाद में हमारा कफ जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो कफ धीरे धीरे शमन होने लगता है
1: जी,
2: उसके बाद में हम जो वात का समय है वो वर्षा ऋतु है, उस समय हमारे शरीर में वात का प्रकोप होता है और हमारा शरीर कम हो रहा है, हमारी अग्नि सबसे कम है, हम अपने शरीर में सबसे कम इम्यूनिटी वाले टाइम में जो है वो वर्षा ऋतु
1: में,
2: इसलिए आपने देखा होगा हमारी अग्नि भी कमजोर है उस समय, इसलिए हमारे मैक्सिमम उपास वो उस कालखंड में आते हैं,
1: संक्रमण का काल भी वही है।
2: तो मूवमेंट भी कम होना चाहिए और इम्यूनिटी वाइज हमने ऐसे पैरामीटर्स बनाए कि आप उससे सुरक्षित रह सके, तो हम कम खाना खाते हैं, सुपाच्य खाना खाते हैं और हल्का खाना खाते हैं। वैसे ही जैसे शरद ऋतु आती है तो नवंबर दिसंबर के महीने में जब शरद ऋतु, तो शरद पूर्णिमा हमारा एक ऐसा माइलस्टोन है जब हम दूध को औटा औटा के गाढ़ा करके पीते हैं।
1: हाँ,
2: मतलब कर्क संक्रांति के बाद धीरे धीरे जब अग्नि बढ़ना शुरू होती है तो पहला माइलस्टोन हमको मिलता है शरद पूर्णिमा का।
1: अच्छा,
2: कि हमारी अग्नि अब बढ़ गई
1: है,
2: अब आप गरिष्ठ भोजन भी आप कर सकते हैं।
1: अच्छा,
2: इस तरीके से फिर हम वहां से भारी अन्न लेते हैं और हमारा शरीर, हम हेल्दी सीजन बोलते हैं ना, इस समय जो भी खाइए वो पच जाएगा।
1: हाँ,
2: आपके शरीर को लगेगा
1: जी। ठंड की ऋतु में जैसे बहुत फल खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, घी खाइए,
2: आपका खाना पूरा सारे षड्रसात्मक होके उसको पूरा बलिष्ठ होके उसमें सारे न्यूट्रिशन हो, उसकी क्वांटिटी भी थोड़ी सी ज्यादा रहेगी
1: अच्छा,
2: सामान्य ऋतुओं के हिसाब से, और ये समय हमारे शरीर का निर्माण होगा। तो शरद ऋतु में पित्त प्रकोप का काल है, ऐसा हमारा डिवाइजेशन हो गया। वसंत ऋतु में कफ प्रकोप है, वर्षा ऋतु में आपका वात का प्रकोप है, और जो शरद ऋतु है उसमें पित्त का प्रकोप।
1: जी, यानी सर यदि हम दिन देखें तो उसके अलग अलग कालखंड में वात पित्त और कफ का प्रभाव अलग अलग है। महीने देखेंगे या वर्ष देखेंगे या ऋतुएं देखेंगे तो उसमें भी हमको वात पित्त और कफ का अलग अलग प्रभाव है। और शायद यही हमारे खान पान में भी हमको ध्यान में रखना होगा कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे तो हम किस मौसम में किस तरह की चीजें लें, या फिर दिन में और रात में हमें किस तरह का आहार लेना चाहिए।
2: निश्चित रूप से अभी वर्तमान में आपके पास में ऐसे लोगों की बढ़ोतरी होगी कि सर देखिए मैं इतना संभल के रहता हूँ, मैं कुछ नहीं खाता हूँ तो भी बीमार हूँ।
1: जी,
2: तो मैं उनसे वही आग्रह करता हूँ कि जब मौसम बदला तो अपने अपने कपड़े बदले, तो मौसम बदला तो अपने अपना आहार क्यों नहीं बदला।
1: जैसे सर्दी में हम स्वेटर यूज कर रहे हैं या गर्मियों में पतले कपड़े यूज कर रहे हैं, सेम ऐसे ही हमें हमारा आहार भी मौसम के अनुसार
2: करना चाहिए,
1: बदलना चाहिए।
2: हाँ, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमको ये परिवर्तन करना ही चाहिए। हमारी दिनचर्या में, हमारी ऋतुचर्या में, हमारे शास्त्र में बता के रखा है कि कैसे प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना। प्रकृति हमारे हाथ में नहीं है, उसको वो अपने गति से चल रही है।
1: जी।
2: उसमें ऋतुएं बदल रही है, उसके स्वरूप है, उसके मापदंड सामने आ रहे हैं। हमको हमारे शरीर को उसके अनुसार बदलना है। देश काल में हमको कुछ कुछ अंतर मिलते हैं, इसलिए कई बार हमको पता चलता है कि इस सीजन में ये लोगों का अडॉप्ट काम करने के तरीके में और वहाँ के काम करने के तरीके में अंतर है, क्योंकि वो देश का प्रभाव है। तो इसीलिए मैंने बोला कि लचीली बुद्धि के साथ अगर आप एकदम से रिजिड हो जाएंगे तो फिर कंफ्यूजन होगा, लेकिन ऋतु और उसके हिसाब से तालमेल बिठाना।
1: अब सर ये तो बिल्कुल ऊपरी बातें हो गई आयुर्वेद से संबंधित, तो आप जो दिनचर्या के बारे में बात कर रहे थे हम उसी पर आते हैं कि हमारी दिनचर्या किस तरह की होनी चाहिए।
2: दिनचर्या भी जो हमारी दोषों के हिसाब से ही होनी चाहिए।
1: अच्छा, वात पित्त और कफ के हिसाब से।
2: वात पित्त कफ, हमने डिवाइडेशन करके रखा हुआ है। अब एक सहज प्रश्न आता है कि ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए।
1: हाँ जी,
2: इसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है यह वात दोष का समय है।
1: अच्छा,
2: हमारे शास्त्र में स्पष्ट बताया हुआ है कि हमारे शरीर में जो पित्त है, जो कफ है, हमारी जो सातों धातुएं हैं वो सब के सब पंगु है। इसको जो मूवमेंट देना है वो वात करेगा।
1: अच्छा,
2: तो जब आपके शरीर के मूवमेंट को उसको गति देने का कार्य करना है तो वात के कालखंड में वह गति देने का कार्य सबसे उत्तम रीति से हो सकता है।
1: जी बिल्कुल,
2: अर्थात जब हम जो धातु या जो व्यक्ति जिस समय बलवान है उससे उसी का कार्य कराना चाहिए।
1: सही बात है।
2: बिल्कुल सरल सहज भाषा में तो जब हमारा वात बलवान है तो हमको वात का कार्य कराना चाहिए।
1: अच्छा,
2: तो जब हमको गति देने का कार्य है इसलिए हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। हमारे यहाँ वात भी 5 प्रकार के है, पित्त भी 5 प्रकार के है और कफ भी 5 प्रकार के, ये उनके कर्मों के हिसाब से डिवाइडेशन है।
1: अच्छा अच्छा जी।
2: तो वात में हम बोलते हैं ना, हम पूजा करते हैं तो उसमें प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा।
1: जी।
2: तो इसमें जो अपान वायु है वो अपने शरीर से मल भाग को बाहर निकालने का कार्य करती है। तो अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमको एक वेग आएगा और हमारा जो मल है उसको निष्कृषण करने में हमको सहायता होगी। इसीलिए हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। इसी तरीके से सोने का भी समय, रात्रि के समय हम जल्दी खाना और जल्दी सो जाना। जब हमारा पित्त का समय चल रहा है
1: जी।
2: और वात का समय, तब हमको शरीर को रेस्ट दे रहे हैं
1: जी।
2: रात के खाने के बाद 100 कदम चलना, क्योंकि उसके बाद हमारा सारा शरीर शिथिल होने वाला है
1: जी।
2: और फिर हमको सोना, ऐसा एक संतुलन बनाने का दोषों में बता के रखा हुआ है।
1: तो सर दिनचर्या में जैसे हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए, अब उसके बाद हमारी एक आगे की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए।
2: हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, उसके बाद हमारे इसमें जो नियम बताया हुआ है कि हमको शौच के लिए जाना है। सबसे पहला कर्म मैंने बताया कि ब्रह्म मुहूर्त के बाद हमको जो इच्छा है, तो उठने का क्या नियम बताया है, बहुत सरलता से बताया हुआ है कि रात्रि का भोजन पचा है या नहीं पचा है इसका चिंतन करना और उसके बाद में बिस्तर से पैर नीचे करना।
1: अच्छा
2: कि अगर हमने लेट खाया है
1: हुँ,
2: ना, तो हमको थोड़ा सा एक बहुत अच्छा सा उसमें सम्यक रूप से बताया कि आप थोड़ा सा 5 मिनट के लिए और सो जाइए,
1: अच्छा जी
2: है ना। तो ये जो हम थोड़ा सा सोते हैं कि अलार्म बजने के बाद में हमको जो छोटी सी नींद आती
1: नींद
2: है उसकी
1: आती
2: क्वालिटी अच्छी होती
1: जी
2: है,
1: जी ये तो होता
2: उसी तरीके से
1: है
2: रात में जब हम इसका चिंतन करके हमको देखते हैं कि पेट थोड़ा भारी लग रहा है या ऐसा है और हम थोड़ा सा सो जाते हैं, तो वो प्रक्रिया थोड़ी सी तेज होके फिर आपको हल्कापन शरीर में आता है।
1: अच्छा
2: आप
1: जी
2: बिल्कुल प्रैक्टिकल इसको देख पाएंगे। और उसके साथ ही सवेरे उठते समय हमारे यहाँ कुछ नियम बताए हैं कि कराग्रवस्थी करना है,
1: जी जी
2: मतलब आपको हाथ जोड़ना है, हाथ में
1: हाथों
2: भगवान का आराधना,
1: जी
2: लक्ष्मी जी सरस्वती जी और उनको देखना है। उसके
1: जी
2: बाद हमको हाथ को रब
1: रगड़ना
2: करना
1: है
2: है,
1: जी
2: रगड़ना
1: जी
2: है। हाथ को गर्म करने के बाद उसको आंखों पे सेक देना है,
1: जी
2: मतलब हमारा शरीर एक सामान्य तापमान पे कार्य करता है, उसको प्रकृति के साथ जब तालमेल आप बिठा लो तब आप धरती पे पैर रखो। तो
1: अपने
2: उसके
1: कदम
2: पहले
1: के
2: हम धरती के विषय भी क्षमा मांगते
1: प्रणाम
2: हैं,
1: करते जी
2: विनम्रता का भाव लाते
1: जी
2: हैं, साथ में हम उस टेम्परेचर के साथ एकाकार होने के बाद में बिस्तर से उठ के बाहर जाते हैं, क्योंकि हम रात भर अपने शरीर को ढके हुए रहते हैं
1: जी
2: और हमारा शरीर का एक तापमान थोड़ा
1: तापमान
2: सा बढ़ा
1: बढ़ा
2: हुआ
1: रहता
2: होता
1: है
2: है,
1: जी।
2: तो
1: तो
2: हमको ध्यान
1: यहाँ
2: रखना
1: पर
2: चाहिए।
1: आप एक चीज क्लियर कीजिए सर कि ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या है।
2: ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो बहुत स्पष्ट बता के रखा है कि सूर्य उदय के 48 मुहूर्त पहले,
1: अच्छा जी
2: मतलब घोर अंधकार वाला जो समय होता है 3:30 से 4 बजे का, 4-4:30 बजे का जो समय रहता है वो ब्रह्म मुहूर्त वाला
1: ब्रह्म
2: है
1: मुहूर्त होता
2: और
1: है।
2: उस समय हमको उठना चाहिए इसमें।
1: तो हम अब उठ गए और हम फ्रेश भी हो गए, उसके बाद फिर हमारी क्या दिनचर्या है।
2: इसके बाद में हमको अपना दंत धावन,
1: जी
2: अपने दांतों को जो मुंह में है, क्योंकि रात भर का जो भी कफ है,
1: जी
2: जो सिक्रेशंस हैं, जो हमने रात को भोजन किया वो हमारे मुख में है और उस कफ का आवरण है। मैंने फिर बताया कि जो लोग सूर्योदय के बाद उठते हैं वो कफ का कालखंड होता है।
1: अच्छा
2: तो अगर आपको प्रैक्टिकल देखना है तो सूर्योदय के बाद उठने के बाद आपके मुंह में एक कफ का आवरण मिलेगा। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो वो कफ के आवरण का प्रमाण बहुत कम हो जाएगा,
1: अच्छा
2: मिनिमाइज, और आपके जितने मुख के रोग हैं उसमें कफ का आवरण रहेगा तो ही मुख के रोग बढ़ने वाले हैं,
1: अच्छा अच्छा अच्छा
2: जिसके
1: जी
2: कारण हम बोलते हैं कि मंजन करना है। अब मंजन कैसे करना है, तो मंजन के लिए अपने शास्त्र में बताया कषाय चीज, जो ऐसी चीज जो थोड़ी सी रूखीपन लेके आए, जो कफ का शमन करे,
1: अच्छा
2: तो इसलिए हमने दतून बताई है ना। हम राख की बात की तो राख
1: हाँ
2: मतलब बहुत स्पष्ट है कि जो कंडे की राख होती है उसको ऊपर के हटा के जो बीच का जो सफेद राख होती है उसका
1: अच्छा अच्छा
2: इस्तेमाल करना, और एकदम महीन
1: महीन
2: है
1: जी
2: ना, उसको आप जब घुमाएंगे तो वो सारा कफ निकल जाएगा और उससे मुंह में एक सूखापन आपको समझ में आएगा, कफ का आवरण खत्म हो। तो हमको मंजन उससे करके फिर अच्छे से कुल्ला कर लेना चाहिए।
1: तो सर जैसे आपने बताया कंडे की राख, और वो भी कंडा जो है वो मतलब बिल्कुल बारीक राख,
2: बारीक उसमें
1: तो हर एक व्यक्ति को तो आज तो उपलब्ध नहीं है या वो अरेंज नहीं कर सकता, तो उसका कोई वैकल्पिक उपाय है।
2: वो एक प्रकार है, हमने उसका एक उदाहरण दिया था, क्योंकि हमारे जो बहुत सारे जैसे बबूल
1: हाँ
2: हम
1: जी
2: बोलते हैं,
1: नीम
2: बबूल
1: है
2: नीम है, बबूल है, इनके जो दांत होती है, आपका वज्रदंती
1: अच्छा
2: है ना,
1: जी जी
2: इनका उपयोग होता है ना। तो ऐसे जो औषधि द्रव्यों के जो चूर्ण होते हैं उनके माध्यम से हम अपना मंजन कर सकते हैं।
1: अच्छा
2: और एक सरल सा है कि हमारे यहाँ पहले मुख स्वच्छता में, खाना खाने के बाद पंगत में बैठने के बाद नमक से भी
1: हाँ
2: आप
1: जी जी
2: मुंह, क्योंकि
1: जी
2: नमक जो रहता है वो कफ के आवरण को हटा देता है
1: हटा देता है जी
2: ना? पहले इसका लोगों ने मना किया, फिर टूथपेस्ट में नमक की
1: नमक आने
2: मार्केटिंग
1: लग
2: करने
1: गया
2: लगे,
1: जी
2: तो वो आपको उस कफ के आवरण को हटाने वाली जो चीजें
1: जी
2: हैं
1: जी
2: उनको
1: हाँ
2: अगर आप इंक्लूड करेंगे तो आप अपने मुख को स्वस्थ रख पाएंगे। और
1: अच्छा
2: ऐसा करना है कि वो इतने कड़े ना हो
1: हाँ
2: कि आपके मसूड़ों को और दांतों
1: छिल
2: को
1: जाए जी
2: नुकसान पहुंचाए,
1: जी
2: इसलिए
1: जी
2: जितना सॉफ्ट और जितना महीन होगा उतना उसका ध्यान रखना है।
1: सर एक चीज और आती है कि ज्यादातर ऐसा आता है कि सुबह उठकर आपसे जितना भी पानी पीते बने कम से कम 1 ग्लास आप पानी पिए, तो ये क्या

0: बहुत आसानी से बोलते हैं ना कि हमारा शरीर जो है 70% पानी से बना है,
1: जी,
0: तो पानी की रिक्वायरमेंट तो होनी ही चाहिए। तो उसके कारण भी हमको, क्योंकि सवेरे लेंगे तो वो थोड़ा सा आपको फायदा ही करेगा, पर शरीर तापमान का पानी लीजिए,
1: अच्छा, नहीं, ना तो बहुत गर्म ना
0: गर्म
1: ठंडा।
0: ठंडा
1: अब हमने मंजन कर लिया,
0: कर
1: उसके
0: लिया।
1: बाद
0: इसमें
1: अब दिनचर्या में आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या है?
0: इसके बाद जो है हमको जो है आंखों का, कान नाक,
1: जी
0: इनकी
1: जी
0: स्वच्छता भी रखनी चाहिए,
1: जी
0: स्नान करना चाहिए, है
1: हाँ जी
0: ना। स्नान करने से उसका बहुत महत्व है कि उससे आपकी अग्नि प्रज्वलित होती है,
1: अच्छा
0: आपके शरीर में लाघवता आती है, प्रसन्नता आती है, और आपका जो फ्रेश, तो स्वाभाविक है हमारा जितना आलस्य उससे ख़त्म होता है, पेट की अग्नि भी दीप्त हो रही है, मतलब हमको उसके बाद भूख भी लगने वाली है,
1: अच्छा
0: और हमारी दिनचर्या को एक अच्छा मिलना चाहिए। तो शरीर की स्वच्छता, लोकल हाइजीन जो हम मेंटेन करते हैं, जैसा ओरल हाइजीन हमने मेंटेन किए,
1: जी
0: वैसे हमको जितनी अपनी ज्ञानेंद्रियां हैं उनको भी स्वच्छ रखना चाहिए। और उसको स्वच्छ रखने के बाद स्नान, तो हमारे पूरे शरीर को स्वच्छ रखने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में हमको निश्चित रूप से जो अल्पाहार, तो उसके पहले हम भारतीय परंपरा में क्या करते हैं कि अपना जितना कार्य रहता है समर्पण से करते हैं, तो पूजा करते हैं या भगवान के सामने अपना
1: जी
0: शांत मन से जो सवेरे का अल्पाहार हमको करना चाहिए।
1: तो सर, अभी तो हम जो चीज़ देखते हैं कि नाश्ता जो होना चाहिए वो बहुत हैवी हो जाना चाहिए, और फिर उसके बाद लंच जो हो आपका वो, क्योंकि हमारा समय जो है बहुत आगे खसक गया है, लंच का लंच टाइम जो है वो 1:30 बजे 2 बजे वाला हो गया है, तो वो लाइट हो जाए, बट जो सुबह का ब्रेकफास्ट जिसको हम बोलते हैं, जिसको आप अल्पाहार बोल रहे हैं, वो बहुत हैवी होना चाहिए। ये सही है ये कंसेप्ट, या हमारे हिसाब से गलत है आयुर्वेद के
0: नहीं,
1: हिसाब से?
0: सही गलत का विषय नहीं है,
1: जी
0: एरिया एरिया वाइज आपको चेंजेस मिलेंगे। आप उत्तर भारत में जाएंगे तो वहाँ पे परंपरागत रूप से उनका जो सवेरे का नाश्ता रहता है वो बहुत हैवी रहता है,
1: जी जी पराठे, आलू के
0: पराठे
1: पराठे,
0: उसमें सब
1: जी
0: चीज़ें रहेंगी। हमारे यहाँ पे उतना हैवी नाश्ता हम नहीं करते हैं,
1: नहीं
0: लेकिन इसमें सवेरे आपको कुछ ना कुछ अल्प मात्रा में ही अन्न ग्रहण करना चाहिए।
1: अच्छा
0: हमारा कंसेप्ट बहुत सीधा है, हमको दोपहर का जो भोजन है वह 9:10 से लेके 12 बजे के बीच में, मैंने समय का कालखंड थोड़ा सा ज़्यादा रखा है, लेकिन हमको इस बीच में हमको कर ही लेना चाहिए।
1: अच्छा
0: तो 12 बजे तक अगर आपका भोजन हो जाता है तो वो भोजन की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। सादा सा नियम है कि दोपहर का भोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, रात का भोजन दोपहर के भोजन से कम होना चाहिए,
1: अच्छा
0: ऐसा एक हमारे यहाँ पे नियम है। दोपहर के भोजन के बाद हमको बाई करवट लेटना है,
1: अच्छा
0: और रात के खाने के बाद हमको कम से कम 100 कदम चलना है, स्वस्थ रहने का ये नियम है, क्योंकि हम दिन भर काम करते हैं, हमारे शरीर की गति बनी रहती है, रात को हमको शिथिलता के ऊपर, तो खाना खाने के तुरंत इमीडिएट बाद नहीं सोना है, उसके 2 घंटे बाद सोना है।
1: जी
0: तो इस तरीके से हमारा भोजन का नियम है, सवेरे जो है वो कम मात्रा में, दोपहर का जो भोजन है वह थोड़ा सा
1: अधिक
0: अधिक मात्रा में, जो हमारी शरीर क्षमता के हिसाब से, और उसका भी नियम ये बताया हुआ है कि आपको जब भी भोजन करना है तो आपको आधा पेट भोजन से, 1/4 भाग पानी से, और 1/4 भाग खाली रखना है।
1: अच्छा
0: ऐसा एक
1: जी
0: कैलकुलेशन
1: जी
0: करना चाहिए कि हमको जितनी भूख है उसको हम जब खा रहे हैं तो पेट में इस तरीके की मात्रा हमको अन्न की रखना चाहिए।
1: जिस तरह से आपने दिनचर्या को बताया, उसी तरह से आप हमें रात्रिचर्या के बारे में भी बताइए।
0: रात्रिचर्या का भी बहुत महत्व है, क्योंकि हमको स्वस्थ रहने के लिए आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये 3 मुख्य सूत्र दिए हुए हैं। तो निद्रा का महत्व इसी से सिद्ध हो जाता है। तो जब हम रात को सो रहे हैं तो नियम मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि रात्रि भोजन के बाद में आपको कम से कम 100 कदम चलना है, और 1.5 से 2 घंटे बाद ही बिस्तर पे जाना है
1: भोजन के?
0: भोजन के,
1: जी
0: है ना। तो इससे हमारा जो भारीपन होता है पेट का वो भी कम होगा, और रात में जो डाइजेशन की समस्या आने वाली है वो नहीं आएंगी।
1: अच्छा
0: इसके साथ में हमारे यहाँ दिनचर्या में कुछ चीजें जोड़ी हुई थी, जब आप बिस्तर पे जाते हैं तो आपको पैर के तलवों पे घी और पानी की मालिश करनी चाहिए,
1: अच्छा
0: उसको तेल पे, जितनी तेजी से उसको रगड़ेंगे उसके कारण हमारे दिन भर के जो पैरों की थकान होती है वो भी कम होती है, और हमारा मस्तिष्क भी शांत होता है। हमारा जो सोने का बिस्तर होना चाहिए वो बिल्कुल सम्यक होना चाहिए, सरल हो, बहुत ऊंची गर्दन, तकिया भी नहीं लेनी है,
1: जी
0: मुख्य रूप से हमको गर्दन पे सहारा देके सोना चाहिए,
1: जी
0: और जब हम सो रहे हैं तो शांत चित्त हो। इसीलिए फिर से बहुत सारे लोग उस समय हमारे इष्ट का ध्यान करते हैं
1: जी,
0: कि
1: जी,
0: आज हमने दिन भर में जो भी गलतियां की है उसकी क्षमा याचना करके हमको फ्रेश होने के लिए। तो जब आपका मन स्थिर होगा तभी आपकी नींद की गुणवत्ता अच्छी होगी
1: जी।
0: तो इसको ध्यान में रखते हुए हमको सोना चाहिए। तो और हमारे पैरों के मैंने मसाज के बारे में आपको बता ही दिया
1: जी, जी।
0: आंखों के में भी है कि हमको उसमें आई ड्रॉप वगैरह कुछ डाल लेना चाहिए तो दिन भर का जो हमारे आंखों पे स्ट्रेन है वो ठीक होता है। साथ में रात में सोते समय 1 से 2 बूंद नाक में गाय का घी अवश्य डालें।
1: अच्छा,
0: क्योंकि हमारा जो नाक है वो हमारे मस्तिष्क का सिर का द्वार ऐसा कहा गया है।
1: अच्छा,
0: और घी जो होता है वो धी धृति स्मृति आपके मस्तिष्क को ताकत देता है, तो आपके नींद को भी इम्प्रूव करता है और आपके पूरे जितने सेंस ऑर्गन्स हैं उसको हेल्दी रखने में मदद करता है।
1: अच्छा,
0: तो इस तरीके से हम दिन भर के जितने प्रभाव को कितना न्यूट्रलाइज कर सकते हैं ऐसे सभी चीजों को सम्मिलित करके रात को आराम से बिस्तर पे नरम बिस्तर पे हमको सो जाना चाहिए।
1: तो सर उसमें भी एक चीज आती है कि बाएं करवट और दाएं करवट का क्या रोल रहता है इसमें?
0: ऐसा नहीं है, वो हर व्यक्ति का अपना अपना पैटर्न होता है।
1: अच्छा अच्छा
0: सीधा सो सकते हैं, दाएं सो सकते हैं, बाएं सो सकते हैं, और रात में व्यक्ति अपने करवट ले, पर वो सुखासन में होना चाहिए उसके लिए सुख पूर्वक हो ताकि उसका मस्तिष्क हमारी नींद जिसमें आए।
1: अच्छा,
0: क्योंकि वो नींद की क्वालिटी अच्छी होगी
1: जी
0: तो हम सम्यक रूप से रहेंगे। साथ ही हमारा जो रात में हम 6 घंटे की नींद हम बोलते हैं
1: जी,
0: तो ये 6 घंटे की नींद में हमारा शरीर को शांत होना चाहिए, मसल्स रिलैक्स हो जाए, अंदर के अंग रिलैक्स हो जाए, और इन नींद के बीच में एक गहरी नींद आती है
1: जी,
0: वो जो नींद होती है वो हमारे मस्तिष्क को शांत करती है, उसमें हमारे विचारों का ऊहापोह नहीं रहता है
1: जी,
0: है ना। तो ऐसा जब शांत मन होता है तभी हमारी नींद की क्वालिटी को हम उत्तम मिलते हैं। जब सवेरे उठते हैं तब हमको हल्कापन लगना चाहिए, आसानी से आंखें खुलनी चाहिए, फ्रेश लगना चाहिए,
1: हम खुश होके उठे,
0: खुश होके उठे, तो हम सम्यक नींद, एक अच्छी नींद जिसको हम बोलते हैं वो इसमें सामने हमको मिलती है, इसका चिंतन करना चाहिए।
1: चलिए सर, आपने आज इतनी आयुर्वेद का जो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है उसे समझाया, हमारी क्या दिनचर्या होना चाहिए, ये जो 5 पंच महाभूत है जिन्हें 5 तत्व जो कहा गया है उनसे हमारा जो शरीर बना है, उनके साथ जो वात पित्त कफ इनका जो बैलेंस है वो हमारे शरीर में किस तरह से हो सकता है, इसके बारे में आपने इतनी महत्वपूर्ण और सारगर्भित जानकारी दी। सर आप यहाँ आए, अमूल्य समय आपने हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जितने ज्ञान में से मैं जितना आपके समक्ष बोला हूँ उससे आपके श्रोताओं को स्वास्थ्य का लाभ होगा, यही इच्छा के साथ में आप सभी को प्रणाम।
1: सर बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। कार्यक्रम में मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी और समन्वय सहयोग सतीश बाथम का। मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो मित्र पूर्वा खले। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।

तो श्रोताओं, आपने अभी सुना कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। छोटी छोटी कुछ बातें जिनका ध्यान रख करके हम स्वस्थ बने रह सकते हैं। वैसे तो कहा नहीं जा सकता है कि कब कौन सी बीमारी किस तरह से हमें आ घेरेगी, लेकिन अगर हमें बीमारियों के बारे में जानकारी हो तो शुरुआती लक्षण को देखते ही हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं, चिकित्सक से संपर्क कर सकते हैं, और अगर हम जल्दी उसके पास पहुँचते हैं तो हम जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं और बहुत सी परेशानियों से हम बच जाते हैं। इसके अलावा कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो हमारे आहार व्यवहार की हैं, किस तरह से हमें रहना चाहिए, हमारी दैनिक दिनचर्या किस तरह की हो। कुल मिलाकर इस तरह की कुछ बातें इस कार्यक्रम में आप सुनते हैं और आपको वो बातें पसंद भी आती हैं और आपके लिए बहुत ज़रूरी भी हैं वो बातें। तो उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो बहुत कुछ अभी आगे आपके लिए है, हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए रेडियो आज़ाद हिंद से, सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूं गोविंद नामदेव और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

इस वक्त आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुन रहे हैं देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज। श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे धारावाहिक युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी विवेकानंद जी का उनके शिष्यों के साथ तथा विभिन्न व्यक्तियों के साथ समय समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर वार्तालाप होता था। ये वार्तालाप धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक आदि विभिन्न विषयों पर हुए थे और उनके द्वारा हमें स्वामी जी के उद्बोधन तथा स्फूर्तिदायक विचारों की जानकारी प्राप्त होती है।
1: हमारे देश का पुनरुत्थान किस प्रकार हो सकता है तथा फिर से अपने प्राचीन गौरव को कैसे प्राप्त कर सकता है, इसका भी दिग्दर्शन स्वामी जी ने अपनी ओजपूर्ण वाणी में इन वार्तालापों में किया है। राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए व्यक्ति का पुनर्निर्माण पहले होना चाहिए, व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। इस सत्य का भी यथार्थ ज्ञान हमें इन वार्तालापों से होता है। अब आप प्रियनाथ सिंह जी से स्वामी जी के वार्तालाप के कुछ अंश सुनिए।
2: स्वामी जी उन दिनों कलकत्ते में बलराम बसु के यहाँ ठहरे हुए थे। एक दिन मैं भेंट करने पहुंच गया। जापान और अमेरिका पर बड़ी देर तक चर्चा होती रही। मैंने पूछा, स्वामी जी पश्चिम के देशों में आपके कितने शिष्य हैं?
3: बहुत से हैं।
2: 2-3 हजार?
3: शायद अधिक।
2: क्या आपने उनको मंत्र दीक्षा दी है?
3: हाँ।
2: आपने उन्हें मंत्रों का उच्चार करने की अनुमति दे दी?
3: हाँ।
2: आपने कैसे अनुमति दी महाराज?
3: कि जिन्हें मैंने दीक्षित किया है मेरे सब शिष्य हैं। मैं स्वीकार करता हूँ कि मंत्रोच्चार का अधिकार नहीं है, पर ब्राह्मण का पुत्र सर्वदा ब्राह्मण ही नहीं होता, यद्यपि उसके ब्राह्मण होने की संभावना अवश्य रहती है। क्या तुमने नहीं सुना, बाग बाजार के अघोर चक्रवर्ती का भतीजा दलित बन गया और दलितों का सब काम करता है, क्या वो ब्राह्मण का पुत्र नहीं था?
2: स्वामी जी जरा विस्तार से समझाइए।
3: जाति से ब्राह्मण होना और गुणों से ब्राह्मण होना, ये दो भिन्न बातें हैं। भारतवर्ष में ब्राह्मण जन्म लेने से ही हर कोई ब्राह्मण कहलाने लगता है, पर पश्चिम में यदि कोई ब्राह्मण गुण युक्त हो तो उसे ब्राह्मण ही मानना चाहिए। जिस प्रकार सत्व, रज, तम 3 गुण हैं, उसी प्रकार ऐसे कुछ गुण हैं दुर्भाग्यवश आज इस देश में क्षात्र व ब्राह्मण गुणों का ह्रास हो रहा है, पर पश्चिम के देशों में लोग क्षत्रियत्व तक पहुंच चुके हैं और क्षत्रियत्व से एक सीढ़ी आगे ही तो ब्राह्मणत्व है। उनमें से कई लोगों ने तो ब्राह्मण कहलाने योग्य योग्यता भी प्राप्त कर ली है।
2: तो जो स्वभाव से सात्विक हैं, वही आपके अनुसार ब्राह्मण है?
3: बिल्कुल। जैसे हर एक व्यक्ति में सत्व, रज और तम 3 गुण न्यूनाधिक अंश में विद्यमान हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण व क्षत्रिय आदि के गुण भी सब मनुष्यों में जन्मजात ही कमोबेश मात्रा में विद्यमान रहते हैं। समय समय पर उनमें से एक न एक गुण अधिक प्रबल होकर उनके कार्यकलापों में प्रकट होता रहता है। आप मनुष्य का दैनिक जीवन क्रम ही लें। जब वो अर्थ प्राप्ति के लिए किसी की सेवा करता है, जब वो स्वयं अपने लाभ के लिए कोई क्रय विक्रय करता है, जब वो अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाता है, तो उसमें क्षात्र भाव सर्वोपरि होता है, और जब वो ईश्वर चिंतन में लगता है, भगवान का कीर्तन करता है, तो वो ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लेता है। ये स्पष्ट है कि मनुष्य के लिए एक जाति से दूसरी जाति में चला जाना संभव है। यदि नहीं तो विश्वामित्र ब्राह्मण कैसे बन सके और परशुराम क्षत्रिय कैसे बन सके? पर इस बात को अभी रहने दो।
0: स्वामी जी ने इसके पश्चात पश्चिम की व्यवहारवादिता की बहुत प्रशंसा की और बताया कि वे धर्म साधना में कितनी व्यवहारिकता प्रकट करते हैं।
2: सच है महाराज, मैंने भी सुना है कि जब वे धर्म साधना करने लगते हैं तो उनकी आध्यात्मिक और मानसिक शक्तियां शीघ्र ही जागृत होने लगती हैं। अभी कुछ दिन हुए स्वामी शारदानंद जी को उनके एक पाश्चात्य शिष्य का पत्र आया, जिसमें ज्ञात हुआ कि 4 मास की साधना से उनकी कितनी अधिक आध्यात्मिक प्रगति हो गई है।
3: देखा ना, अब तुम समझे कि पश्चिम में ब्राह्मण है या नहीं। आज भी गुरु शिष्य को दीक्षा देता है, पर ये उसका व्यवसाय बन गया है। और आजकल गुरु शिष्य संबंध भी तो कितना विचित्र हो गया है। अगर गुरु के घर में खाने को दाने नहीं रहते तो गुरु पत्नी उसको ये बात बताती है और बोलती है, अपने किसी यजमान के यहाँ एक बार फिर हो आओ, सारे दिन चौसर खेलने से तो पेट भरेगा नहीं। और गुरु जी जवाब देते हैं,
4: अच्छा अच्छा सुन लिया, अब चुप भी तो रहो, कल मुझे याद दिलाना। अभी अभी मैंने सुना है कि अपने एक यजमान के यहाँ अच्छी कमाई हुई है। उनके यहाँ बहुत दिनों से नहीं गया हूँ, कल चला जाऊंगा।
3: यही तो है आपके पुरोहितों और कुल गुरुओं की दशा। पाश्चात्य देशों में ऐसा पतन नहीं हुआ है, वहां के धर्मगुरु अपने से कहीं अच्छे हैं।
2: शनिवार 22 जनवरी सन 1898 का दिन था। मैं प्रातःकाल ही बलराम बाबू के घर पहुंच गया। स्वामी जी वहीं ठहरे हुए थे। उनका कमरा श्रोताओं से भरा था। स्वामी जी कह रहे थे,
3: आज हमें श्रद्धा की आवश्यकता है, आत्मविश्वास की आवश्यकता है। बल ही जीवन और निर्बलता ही मृत्यु है। हम आत्मा हैं, अजर अमर मुक्त और शुद्ध। फिर हमसे पाप कार्य कैसे संभव है, असंभव। इस प्रकार की दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए। इस प्रकार का अडिग विश्वास हमें मनुष्य बना देता है, देवता बना देता है। पर आज हम श्रद्धाहीन हो गए हैं और इसलिए हमारा और देश का पतन हो रहा है।
2: हम श्रद्धाहीन कैसे बन गए?
3: बचपन से हमारी शिक्षा ही ऐसी रही है, उसमें निषेध और नकार का ही प्राबल्य है। हमने यही तो सीखा है कि हम नगण्य हैं, नाचीज हैं। कभी भी हमें ये नहीं बताया गया कि हमारे देश में भी महान पुरुषों का जन्म हुआ है। हमें एक भी तो अच्छी बात नहीं सिखाई जाती। हमें हमारे हाथ पैर तक तो चलाना नहीं आता। हमें इंग्लैंड के इतिहास की तो एक एक घटना तिथि याद हो जाती है। पर दुख है, हमारे देश के गौरवमय अतीत से हम अनभिज्ञ ही रहते हैं। हम केवल निर्बलता का पाठ पढ़ते हैं। परतंत्र होने से हमें अब ये विश्वास हो गया है कि हम शक्तिहीन हैं और परावलंबी हैं, हम असमर्थ हैं और निकम्मे हैं।
2: क्या इसी कारण से हम श्रद्धाहीन हो गए?
3: श्रद्धा और निष्ठा का ह्रास होने के सिवाय और इसका क्या परिणाम होगा? अब हमें पुनः एक बार वो सच्ची श्रद्धा और निष्ठा का भाव जागृत करना होगा, हमारे सोए हुए आत्मविश्वास को जगाना होगा। तभी आज देश के सामने जो समस्याएं हैं वे सुलझाई जा सकेंगी।
2: ये क्या तभी संभव होगा? केवल श्रद्धा से ही हमारे समाज के असंख्य दोष कैसे दूर होंगे? देश में जो बुराइयां कुरीतियां हैं उन्हें दूर करने के लिए राजनीतिक पार्टियां प्रचार और आंदोलन कर रही हैं, तथा अंग्रेज सरकार से प्रार्थना भी कर रही हैं। क्या इससे अच्छा भी अन्य कोई मार्ग है? श्रद्धा का इन सब बातों से क्या संबंध है?
3: पहले ये बताओ कि समाज के दोष दूर करने की आवश्यकता आपको है या सरकार को? यदि आपको आवश्यकता है तो क्या सरकार उन्हें दूर करेगी या आपको स्वयं ही उन्हें दूर करना होगा?
2: पर यह तो सरकार का कर्तव्य है कि प्रजा की आवश्यकताएं समझे और उन्हें पूरी करें। यदि हम हर वस्तु के लिए राजा का मुंह नहीं ताकें तो और किसका ताकें?
3: भिकमंगों की इच्छा कभी पूरी नहीं होती। माना सरकार आपको आपकी आवश्यकता की वस्तुएं देने को एक बार राजी भी हो जाए, पर प्राप्त होने पर उन्हें सुरक्षित और संभाल कर रखने वाले मनुष्य कहाँ है? इसलिए पहले आदमी मनुष्य उत्पन्न करो। हमें अभी मनुष्यों की आवश्यकता है और बिना श्रद्धा के मनुष्य कैसे बन सकते हैं?
2: पर बहुसंख्यक लोगों का मत ऐसा नहीं है।
3: जिसे तुम बहुसंख्यक कहते हो वो मूर्खों और साधारण बुद्धि वालों की बहुसंख्या है। सभी देशों में जिनके पास विचार करने के लिए मस्तिष्क है ऐसे व्यक्ति कम होते हैं। यही कुछ मेधावी और विचारशील व्यक्तित्व सर्वत्र अगुआ होते हैं और बहुसंख्या सदैव उनका अनुकरण करती है। यही अच्छा भी है, क्योंकि जब तक नेताओं के बताए हुए मार्ग पर बहुसंख्या चलती रहती है तब तक सब काम ठीक से चलता रहता है। जो सोचते हैं कि वे इतने ऊंचे हैं कि किसी के सामने सर झुकाना उनकी शान के खिलाफ है वे मूर्ख हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी दुर्बुद्धि से अपना विनाश कर लेते हैं।
2: फिर समाज सुधार कैसे होगा?
3: आप समाज सुधार की बातें करते हैं पर आप करते क्या हैं? आपके समाज सुधार का मतलब होता है विधवा विवाह या स्त्री स्वातंत्र या ऐसी कोई और बात। क्या ऐसा नहीं है? और ये भी किसी वर्ग विशेष तक ही सीमित रहता है। इस तरह के सुधार की योजना से कुछ लोगों का भला अवश्य होता है, पर समूची जाति या राष्ट्र को इससे क्या लाभ? ये तो सुधार नहीं, एक प्रकार का स्वार्थ ही है। अपने घर को झाड़ बुहार कर साफ रखना और दूसरों के घर ढहने देना।
2: तो आपका तात्पर्य ये है कि समाज सुधार की कोई आवश्यकता ही नहीं?
3: ये कौन कहता है? अवश्य समाज सुधार की आवश्यकता है, पर जिसे आप समाज सुधार कहते हैं उससे सर्वसाधारण जनता, भारत की कोटि कोटि जनता का क्या हित होगा? विधवा विवाह, स्त्री स्वातंत्र आदि जिन सुधारों के लिए आप चिल्ला रहे हैं, उनकी भारत की बहुसंख्यक जनता को आवश्यकता ही नहीं है। उनमें विधवा विवाह की प्रथा भी है और स्त्रियों को स्वतंत्रता भी प्राप्त है, इसलिए वे इन बातों को सुधार ही नहीं मानते। मेरा तात्पर्य ये है कि ये सब दोष हम में श्रद्धा के अभाव से ही घुस आए हैं और दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। पर मैं ये चाहता हूं कि रोग समूल नष्ट किया जाए, नहीं तो वो फिर बढ़ जाएगा। सुधार अवश्य हो, कौन इतना मूढ़ है जो ये नहीं मानता। उदाहरण के लिए, हमें अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना जाति की शारीरिक निर्बलता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है।
0: उस दिन सूर्य ग्रहण था, इसलिए प्रियनाथ जी बोले, अब मैं गंगा स्नान के लिए जाऊंगा, फिर कभी सेवा में उपस्थित होऊंगा, और प्रणाम कर चले गए। एक दिन एक शिष्य ने स्वामी जी के सम्मुख अंतर विवाह का विषय छेड़ा और पूछा,
4: भिन्न भिन्न जातियों और प्रांत वासियों में अंतर विवाह कैसे प्रारंभ किया जाए?
3: मैं भिन्न धर्मावलंबी जातियों या प्रांत वासियों में अंतर विवाह करने के पक्ष में नहीं हूं। कम से कम आज तो उससे समाज के बंधन बहुत ढीले पड़ जाएंगे और कई अनिष्ट होने की आशंका है। मैं तो अभी केवल समधर्म के अनुयायियों के ही परस्पर अंतर विवाह का समर्थन करता हूं।
4: तो भी इससे कई जटिलताएं उत्पन्न होंगी, जैसे कि मेरी पुत्री बंगाल में जन्मी और वहीं उसका लालन पालन हुआ है, और मैं उसकी किसी महाराष्ट्रियन या मद्रासी से शादी कर दूं तो वो ना अपने पति की भाषा समझेगी और ना उसका पति उसकी भाषा समझेगा, और फिर उनके रहन सहन, उनके रीति रिवाज में भी बहुत अंतर है। इस तरह कई अड़चने हैं, और फिर समाज तो एक तूफान खड़ा कर देगा।
3: अभी वो समय बहुत दूर है जब इस प्रकार के विवाह संभव हो सकेंगे, और आज तो ऐसे विवाहों के एकदम प्रारंभ कर देने का कोई औचित्य भी नहीं प्रतीत होता। काम करने का एक गुप्त गुरु मंत्र ये है कि जिधर कम से कम विरोध हो उस रास्ते चलो। इसलिए प्रारंभ में ही अपनी जाति की उपजातियों में अंतर विवाह शुरू होने चाहिए। बंगाल के कायस्थों का ही उदाहरण लो, उनमें कई उपजातियां हैं, जैसे उत्तराढ़ी, दक्षिण राढ़ी, बंगज आदि, और उनमें परस्पर विवाह नहीं होते। अब दक्षिण राढ़ी और उत्तराढ़ियों में परस्पर विवाह संबंध शुरू करने चाहिए, और यदि ये अभी संभव नहीं है तो बंगजों और दक्षिण राढ़ियों के विवाह ही शुरू हों। इस तरह आज जो चीज विद्यमान है उसी में यथासाध्य सुधार करें। आखिर सुधार बनी बनाई चीज को उखाड़ फेंकने में ही तो नहीं है ना?
2: अच्छा, यही सही, पर इससे लाभ क्या होगा?
3: क्या आप नहीं देखते कि शादियों से एक ही उपजाति तक विवाह संबंध सीमित होने से हमारे समाज में एक ऐसी स्थिति आ गई है कि प्रकारांतर से निकट के कुटुंबियों और आत्मियों में ही विवाह हो रहे हैं, और इससे हमारे समाज की शरीर संपदा का ह्रास हो रहा है। परिणाम स्वरूप सभी प्रकार की बीमारियां और बुराइयां उसमें घुस रही हैं। एक सीमित संख्या के व्यक्तियों में परिभ्रमण करते करते रक्त दूषित हो गया है, और जन्म से ही नवजात शिशुओं को वंशगत रोग प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार की निर्बल संतति रोग के कीटाणुओं के आक्रमण का अवरोध करने में नितांत असमर्थ होती है। विवाहों की परिधि विस्तृत करने पर ही हम हमारी संतति में नए और ताजे खून का संचार कर पाएंगे, जिससे उसकी आजकल के विविध रोगों से रक्षा हो सके।
2: महाराज, आपका बाल विवाह के संबंध में क्या मत है?
3: बंगाल के शिक्षित वर्ग में बाल विवाह की प्रथा धीरे धीरे नष्ट हो रही है। लड़कियों का विवाह भी पहले की अपेक्षा एक दो वर्ष अधिक होने पर ही होने लगा है, किंतु इसका कारण समाज सुधार की भावना नहीं अर्थाभाव है। किसी भी कारण से क्यों ना हो, विवाह की उम्र और भी अधिक हो जानी चाहिए, पर बेचारा बाप करे क्या। जो ही लड़की जरा बड़ी होती है, माँ से लेकर अन्य सभी स्त्रियां और पड़ोसी ने यही एक टेर लगाने लगती हैं कि वर की खोज की जाए, और जब तक वर नहीं मिल जाता तब तक बेचारे बाप को चैन नहीं लेने देती। सरकार ने कानून बनाकर 12 वर्ष की कन्या से विवाह दंडनीय कर दिया तो ये सब धर्मगुरु चिल्लाने लगे कि धर्म नष्ट हो गया, मानो 12-13 वर्ष की कन्या के माँ बनने में ही धर्म रह गया हो। इसलिए सरकार भी यही सोचेगी कि वाह क्या धर्म है इन लोगों का, और ये आंदोलन कर राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हैं।
2: तो आपके मत से लड़के लड़कियों का विवाह ज्यादा उम्र हो जाने पर ही होना चाहिए?
3: अवश्य, पर साथ साथ उन्हें अच्छी शिक्षा भी दी जाए, नहीं तो भ्रष्टाचार और व्यभिचार बढ़ने की आशंका है। शिक्षा से मेरा तात्पर्य आधुनिक शिक्षा की प्रणाली से नहीं, वरन ऐसी शिक्षा से है जो भावात्मक हो तथा जिससे स्वाभिमान और श्रद्धा के भाव जागे। केवल किताब पढ़ा देने से कोई लाभ नहीं, हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिससे चरित्र निर्माण हो, मानसिक शक्ति बढ़े, बुद्धि विकसित हो और देश के युवक अपने पैरों पर खड़े होना सीखें।
2: हमारे नारी समाज में भी कई सुधारों की आवश्यकता है।
3: इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त होने पर स्त्रियां अपनी समस्याएं स्वयं ही हल कर लेंगी। अब तक तो उन्होंने केवल असहाय अवस्था में दूसरों पर आश्रित हो जीवन यापन करना और थोड़ी सी भी अनिष्ट या संकट की आशंका होने पर आंसू बहाना ही सीखा है। पर अब दूसरी बातों के साथ साथ उन्हें बहादुर भी बनना चाहिए। आज के जमाने में उनके लिए आत्मरक्षा करना सीखना भी बहुत जरूरी हो गया है। देखो झांसी की रानी कैसी बहादुर थी।
2: आप जैसा बता रहे हैं यह एक नई बात है, और मुझे मालूम पड़ता है कि वैसी शिक्षा व्यवस्था होने में काफी समय लगेगा।
3: फिर भी हमें यथाशक्ति प्रयत्न तो करना होगा। हमें सिर्फ स्त्रियों को ही शिक्षा नहीं देनी है, वरन अपने को भी शिक्षित करना है। साथ ही साथ महिलाओं को विज्ञान व अन्य विषय, जिनसे कि केवल उनका ही नहीं अन्य लोगों का भी हित हो, सिखाए जाए। ये जानकर कि परोपकार के लिए ये करना है, भारतीय नारी प्रसन्नता से और सरलता पूर्वक कोई भी विषय सीख लेगी। हमारी मातृभूमि के उत्थान के लिए आज उसे ऐसे पुण्य संकल्प, पवित्र आत्मा ब्रह्मचारियों व ब्रह्मचारिणियों की आवश्यकता है।
2: इससे देश का किस तरह भला होगा?
3: उनके आचरण से तथा सर्व साधारण के लिए राष्ट्रीय आदर्श में उपस्थित करने के उनके प्रयत्नों से लोगों के विचारों और आशा आकांक्षाओं में एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। आज क्या स्थिति है, माँ बाप येन केन प्रकारेण अपनी कन्या का विवाह निपटा देना चाहते हैं, चाहे वो 9 वर्ष की हो या 10 वर्ष की। और यदि 13 वर्ष की अवस्था में ही उसकी संतान हो जाती है तो समूचे परिवार के लिए ही महोत्सव हो जाता है। यदि इन विचारों का प्रवाह बदल दिया जाए तो पुरातन श्रद्धा के पुनरागमन की कुछ आशा हो सकती है। और जो ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन यापन करेंगी उनका तो कहना ही क्या, उनकी स्वयं में कितनी महान श्रद्धा और विश्वास होगा और उनसे कितना हित और कल्याण होगा।
0: एक दिन संध्या के समय बलराम बाबू के घर रामकृष्ण मिशन की साप्ताहिक सभा भरी थी। मठ से स्वामी तुरियानंद, स्वामी योगानंद, स्वामी प्रेमानंद व अन्य लोग भी आए हुए थे। स्वामी जी बरामदे में विराजमान थे और चारों ओर बरामदे में लोग भरे थे। जब जब स्वामी जी कलकत्ता आते इसी तरह लोग जुट जाते थे।
1: सभा में उपस्थित कुछ लोगों ने ये सुन रखा था कि स्वामी जी बहुत अच्छा गाते हैं, इसलिए वे स्वामी जी से कोई भजन सुनने के इच्छुक थे। ये जानकर मास्टर महाशय यानी श्री महेंद्र नाथ गुप्त ने स्वामी जी के समीप बैठे कुछ सज्जनों के कान में कहा कि स्वामी जी से गाने का आग्रह करो। स्वामी जी ने उनका आशय ताड़ लिया और वे मुस्कुराकर बोले,
3: मास्टर महाशय, ये आपस में क्या कानाफूसी चल रही है, जरा जोर से बोलें।
1: मास्टर महाशय के प्रार्थना करने पर स्वामी जी अपने सुरीले कंठ से ये गीत

0: ऐसा प्रतीत होता था मानो वीणा बज रही हो। भजन समाप्त होने पर वे मास्टर महाशय से बोले,
1: अब तो खुश हो ना, पर अब और नहीं गाऊंगा, नहीं तो मैं भावावेश में आकर गीत की मादकता में डूब जाऊंगा और पश्चिम में व्याख्यान देते देते मेरा गला भी तो अब खराब हो गया है। मेरे स्वर में अब बहुत ज्यादा कंपन उत्पन्न हो गया है।
2: स्वामी जी ने एक ब्रह्मचारी को मुक्ति पर कुछ कहने का आदेश दिया। ब्रह्मचारी ने खड़े होकर काफी देर तक भाषण दिया। उसके बाद अन्य ब्रह्मचारी भी बोले। फिर स्वामी जी ने इस विषय पर उपस्थित सज्जनों को अपने विचार प्रकट करने को कहा। उनके एक गृहस्थ शिष्य ने वाद का प्रारंभ किया। जब वे अद्वैत और ज्ञान को भक्ति और द्वैत से श्रेष्ठ बताने लगे तो बीच में कहीं किसी श्रोता ने प्रतिवाद किया। जब वे दोनों अपने अपने पक्षों का खंडन करने लगे तो एक अच्छा खासा वाद विवाद आरंभ हो गया। स्वामी जी कुछ देर तो सुनते रहे, पर जब उन्होंने देखा कि दोनों आवेश में आ रहे हैं तो उन्हें शांत करते हुए बोले,
1: देखिए आप लोग विवाद में इतना आवेश लाकर सब मजा किरकिरा कर देते हैं। सुनो, श्री राम कृष्ण देव कहते थे कि विशुद्ध ज्ञान और भक्ति में कोई अंतर नहीं है। भक्ति योग में परमेश्वर से परे कोई प्रेम का अस्तित्व ही नहीं है। भक्त के हृदय में जो ईश्वर प्रेम है, वो प्रेम भी तो परमेश्वर ही है।
0: उन्होंने बात को समझाते हुए आगे कहा,
1: इस तरह भक्ति द्वैत कहां रहा? इसी प्रकार जो भी इच्छाएं हैं, आकर्षण हैं, वृत्तियां हैं, वे भी ईश्वर के ही रूप हैं। माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, इन सब भावनाओं और वृत्तियों में भी ईश्वर ही है। एक ग्रह पुंज दूसरे ग्रह पुंज को आकर्षित करता है, उसमें भी ईश्वर ही है, सर्वत्र वही है। ज्ञान योग के अनुसार भी वो सर्वत्र विद्यमान है, इसलिए ज्ञान और भक्ति में विरोध कहाँ है? वे तो एक ही विषय का प्रतिपादन करते हैं।
3: महाराज, माँ की ममता में ईश्वर रह सकता है, पर इससे तो यही निष्कर्ष निकलता है कि ईश्वर जगत के सत्कार्यों का जितना कारणीभूत है उतना ही पाप का भी है।
1: ये दृष्टि केवल परम सिद्धावस्था तक पहुंच जाने पर ही प्राप्त होती है। तभी ऐसा लगता है कि जहां भी प्रेम या आकर्षण है वहीं ईश्वर है। पर अपने जीवन में ऐसी दृष्टि प्राप्त करने के लिए उस अवस्था का प्राप्त होना आवश्यक है।
3: फिर भी ये तो स्वीकार करना ही होगा कि पाप में भी ईश्वर ही है।
1: देखो, यथार्थ में ना तो कोई चीज भली है और ना बुरी है, ये तो केवल एक परिपाटी है कि हम किसी चीज को भली या बुरी कह देते हैं। एक ही चीज को हम बुरी कह देते हैं तो किसी अन्य अवसर पर उसे भली कहने लगते हैं। कोई वस्तु अच्छी है या बुरी, ये उसके उपयोग पर निर्भर करता है।
3: वो कैसे स्वामी जी?
1: उदाहरण के लिए इस दीप ज्योति को ही लो। इसके प्रकाश में हम पढ़ते हैं और कई अन्य उपयोगी काम भी करते हैं, ये उसके उपयोग का एक प्रकार है। अच्छा, अब यदि उसमें कोई अपनी उंगली रखे तो वो जल जाएगी, ये उसके उपयोग का दूसरा प्रकार है। इस प्रकार कोई वस्तु जिस प्रकार उपयोग में लाई जाती है, इसी से उसके भले बुरे का निर्णय होता है। इसी प्रकार सद्गुण दुर्गुण पाप और पुण्य है। हमारी मानसिक व शारीरिक प्रवृत्तियों का उचित उपयोग ही पुण्य है और उनका अनुचित उपयोग व ह्रास ही पाप है।
2: इस तरह कई प्रश्नोत्तर हुए। फिर किसी ने कहा, नक्षत्र तारा ग्रह मंडलों के परस्पर आकर्षण में भी ईश्वर है। ये सिद्धांत सच हो या ना हो, पर यह विचार अत्यंत कवित्वमय है, इसमें कोई संदेह नहीं।
1: नहीं महाशय, ये कल्पना की उड़ान नहीं। ज्ञान प्राप्ति होने पर इस महान सत्य का आप स्वयं दर्शन कर सकते हैं।
0: स्वामी जी आगे जो कुछ बोले उसका आशय ये था, पुरुष और प्रकृति, आत्मा और जड़ यद्यपि भिन्न मालूम होते हैं, तथापि वे एक ही तत्व के दो रूप हैं। इसी प्रकार ब्रह्म और अंतर जगत में जो भिन्न भिन्न शक्तियां क्रियाशील हैं, वे भी एक ही महाशक्ति की अभिव्यक्तियां हैं।
3: महाराज, तो यह माया क्यों है और आई कहां से?
1: ईश्वर के संबंध में क्यों का प्रश्न करना गलत है। जो अपूर्ण है, जिसमें अभाव और कामनाएं हैं, उसी के संबंध में क्यों का प्रश्न किया जा सकता है। जो निष्काम है, जो पूर्ण है, एक है उसके संबंध में क्यों कैसा, माया कहां से आई, ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। देश काल निमित्त ही माया है। तुम, मैं और हम सब माया में हैं, तथा तुम माया में रहते हुए ये प्रश्न कर रहे हो कि माया के परे क्या है। तुम जब तक माया में हो तब तक ये कैसे कह सकते हो।
2: इसके पश्चात फिर कई प्रश्नोत्तर हुए। फिर मिल, हैमिल्टन, हर्बर्ट, स्पेंसर आदि पाश्चात्य पंडितों के दर्शन शास्त्र पर चर्चा हुई और स्वामी जी ने सरलता से सब समझाया। सबको स्वामी जी का पाश्चात्य दर्शन का अगाध ज्ञान देखकर आश्चर्य हुआ। इसके बाद विविध सामयिक प्रश्नों पर चर्चा हुई और सभा विसर्जित हो गई।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

युग प्रवर्तक विवेकानंद। अभी आप ये धारावाहिक सुन रहे थे 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद से, देश का चैनल देश के लिए।

0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नाइन्टी पॉइंट एट मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा में आपके साथ थी मैं आपकी रेडियो दोस्त सुनीता सिंह। मैं आपसे विदा लूं उसके पहले प्रस्तुत है आज शाम प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का एक संक्षिप्त सा परिचय। शाम 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम अक्षय निधि, उसके बाद भक्ति संगीत का आनंद लीजिएगा। शाम 6 बजे हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम वतन का राग। आज का ये कार्यक्रम सिस्टर निवेदिता पर केंद्रित होगा। प्रकृति की पुकार, ये कार्यक्रम शाम 6:30 बजे आप सुनेंगे, विषय पर्यावरण संरक्षण और कानून। योग संवाद कार्यक्रम में शाम 7 बजे चर्चा का विषय वैराग्य आदि गुणों से जीवन मुक्ति। हमारा विशेष कार्यक्रम शाम 7:30 बजे होगा, इसमें आप सुनेंगे सुनील लोधी का गायन। रेडियो रिपोर्ट का वक्त होगा रात 8 बजे। 8:30 बजे हिंदुस्तान हमारा कार्यक्रम में हम बात करेंगे भूला भाई देसाई की। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में रात 9 बजे चर्चा का विषय रहेगा आयुर्वेद में प्रकृति का स्वास्थ्य से संबंध। और रात 9:30 बजे सुनिए धारावाहिक युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो श्रोताओं, ये था एक संक्षिप्त सा परिचय आज शाम प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। अब इस प्रसारण सभा से अनुमति दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को नमस्कार। आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने आजादी के।

आजादी के इस कार्यक्रम में आज आपके साथ थी मैं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अब इजाजत दें इस कार्यक्रम से मुझे, नमस्कार। आप बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत भारती।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती। भारत भारती

इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं सुनीता सिंह। श्रोताओं, हमारे देश में संगीत की एक समृद्ध परंपरा रही है और संगीत दायरों को नहीं मानता। इतना बड़ा हमारा देश, अलग अलग बोली भाषा के लोग, अलग जाति धर्म के लोग, अलग रीति रिवाज को मानने वाले लोग, अलग जाति धर्म, अलग बोली भाषा और अलग रीति रिवाजों से उत्पन्न कितनी ही स्वर लहरियां संगीत की अलग अलग शैलियों के रूप में आज विख्यात हैं। ऐसी ही एक संगीत शैली है अभंग। आज भारत भारती कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं महाराष्ट्र की इसी संगीत परंपरा की वानगी। और विशेष बात ये कि इसे प्रस्तुत करने वाली दो कलाकार चेन्नई से संबद्ध हैं। जी हाँ, कर्नाटक शैली में पारंगत रंजनी और गायत्री। इनके युगल स्वरों में आइए सुनते हैं अभंग गायन।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रंजनी और गायत्री का अभंग गायन। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। बहुत जल्द भारत भारती के एक और अंक के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार, आप बने रहिएगा 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती। भारत

नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम ऋषि वैज्ञानिक।

0: नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: रेडियो आज़ाद हिंद प्रस्तुत करता है प्राचीन भारत में वैज्ञानिक चिंतन की गौरवशाली परंपरा की वानगी देने वाला अपना महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ऋषि वैज्ञानिक।
2: इस कार्यक्रम में हर सप्ताह हम आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसे भारतीय ऋषि वैज्ञानिक से जिनकी सृष्टि और जीवन के किसी विशिष्ट अंग से जुड़ी अवधारणा ने एक महती वैज्ञानिक परिकल्पना को जन्म दिया।
1: वो परिकल्पना और सिद्धांत जिसका विकास पश्चिमी जगत 16वीं 17वीं शताब्दी के बाद ही कर पाया। उदाहरणार्थ ज्यामिति का 29वां प्रमेय, जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है, वस्तुतः ग्रीक गणितज्ञ पाइथागोरस का नहीं है। इसकी खोज शताब्दियों पूर्व ऋषि बोधायन कर चुके थे। ऋषि वैज्ञानिकों की ये गाथा हमें बताएगी वेदकालीन भारत में ज्ञान विज्ञान अपने शिखर पर था, चाहे वो सृष्टि की उत्पत्ति या सूर्य चंद्र पृथ्वी आदि नक्षत्रों की गतियों का सटीक हिसाब हो, या सूर्य चंद्र ग्रहणों की भविष्यवाणियों का अथवा कैलेंडर का निर्माण, पदार्थों की संरचना की बात हो अथवा पेड़ पौधों के औषधीय गुणों की चर्चा।
2: दोस्तों, हमारे ऋषियों ने ग्रहों नक्षत्रों ज्योतिष गणित से लेकर वनस्पति चिकित्सा शल्य औषधि रसायन आदि विभिन्न वैज्ञानिक विषयों में अनुसंधान की सुव्यवस्थित और सुदृढ़ प्रणाली को जन्म दिया।
1: ऋषि वैज्ञानिकों की ये गाथा देश की नई पीढ़ी को रूबरू कराएगी विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में वेदकालीन भारत की अद्वितीय और गौरवशाली उपलब्धियों से, ताकि हमारे युवा साथी हमारे गौरवशाली अतीत से परिचित हो सकें, उस पर गर्व कर सकें और प्राचीन भारत में वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों की खोज के लिए प्रेरित हो सकें।
3: अंजू, तुम आज फिर मोबाइल लेकर आई हो? देखा शौरी, मोबाइल लेकर आई है।
4: लगा लिया हेडफोन कान में। पता है मेरे पापा कहते हैं जो कान में 24 घंटे ईयरफोन रखता है उसके कान के पर्दे फट जाते हैं और बहरा हो जाता है। तो
3: अरे मैं रोज रोज कान सुनती हूँ। वो तो आज नया गाना निकला है ना, इस वजह से उसकी म्यूजिक और लिरिक्स इतनी अच्छी है कि तुम लोग भी सुनोगे।
4: हमें नहीं सुनना।
3: अरे
5: अरे अरे गुरुजी मोबाइल छुपा ले।
3: चलो
6: प्रणाम गुरुजी।
7: प्रणाम भाई, वो क्या कहते हैं आयुष्मान भाव। हाँ, क्या क्या कह रहे थे तुम? बोलो बोलो।
8: कुछ नहीं गुरुजी।
7: अच्छा अच्छा, हाँ। अरे आज तो ये सामने वाली सीट ही खाली पड़ी है, ये गौरव को क्या हुआ आज?
8: गुरुजी, गौरव को कुछ नहीं हुआ है।
7: तो फिर
8: वो इंटर कॉलेज ड्रामा प्रतियोगिता में विद्यालय का प्रतिनिधित्व करने जा रहा है।
7: अच्छा, वेरी गुड। तो वो फिर कहाँ गया है अभी?
8: गुरुजी, वो रिहर्सल के लिए गया है।
7: अच्छा अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है भाई, वो एक अच्छा कलाकार है, ये हमें पता ही नहीं था। अच्छा बच्चों, क्या तुम्हें पता है कलाएं प्रमुख रूप से कितने प्रकार की होती हैं? बताओ। नहीं ना? 64 प्रकार की बताई गई हैं कलाएं। इनमें से बहुत सी ऐसी कलाएं हैं जिनका अपना विज्ञान है। महर्षि शुक्राचार्य नाम के अपने यहाँ महर्षि हुए हैं, वो इन कलाओं के भाष्यकार माने जाते हैं
8: जी,
7: और उन्होंने इन पर एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है नीतिसार। समझे?
3: हाँ जी, गुरुजी। गुरुजी, आज हमें महर्षि शुक्राचार्य के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में बताइए ना।
5: बताइए गुरुजी।
7: ठीक है ठीक है, हम तुम्हें महर्षि शुक्राचार्य के आश्रम में लिए चलते हैं।
5: चलिए गुरुजी।
8: गुरुजी।

0: प्रिय शिष्यों, हमारे यहां शिक्षा क्रम का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। कला की शिक्षा भी शिक्षा में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कला को परिभाषित करने के लिए कहा जा सकता है, शक्तो मूकोपि यत कर्तुम कला संज्ञम तु तत स्मृतम, अर्थात वो विद्या जिसे वर्णोच्चारण न कर सकने वाला भी कर सके वो कला है। यूं तो कलाएं अनंत हैं, पर विभिन्न ग्रंथाकार आचार्यों ने प्रमुख कलाएं 64 बताई हैं। वे चाहे केलदी वसव राजेंद्र हों या वात्सायन अथवा जयमंगल, इन सभी आचार्यों द्वारा वर्णित कलाओं में कुछ कलाएं समान हैं और कुछ भिन्न भी हैं।
1: आचार्य श्री, इन कलाओं में प्रत्येक कला के अपने शास्त्र तो होंगे ही।
0: हाँ, क्यों नहीं। सृष्टि में घटित और उपस्थित हर घटना, हर वस्तु का शास्त्र होता है। शास्त्र चिंतन का प्रतिफल जो है, इसमें कुछ ज्ञात हैं और कुछ अज्ञात। वैसे हमारे वैदिक साहित्य में सब कुछ उपलब्ध है, वो बहुत समृद्ध है।
1: जी गुरुजी।
0: वत्स, ये शास्त्र ही है जो किसी भी घटना, किसी भी क्रिया के कार्य कारण की व्याख्या करता है, यही विज्ञान कहलाता है।
2: इसका अर्थ तो ये हुआ आचार्य श्री कि कलाओं का भी विज्ञान होता है।
0: हाँ वत्स, सच तो ये है कि विज्ञान का जन्म कला से ही हुआ है। जैसे कि दर्शन अथवा सिद्धांत का जन्म चिंतन से हुआ है। और यदि हम आदि मानव तक जाएं तो आदि मानव भी घटनाओं तथा तथ्यों के कार्य कारण संबंध से सर्वथा अनभिज्ञ नहीं था। आदि मानव में भी जानने की भूख थी। आदि मानव जो सबसे पहले सृष्टि में जन्मा, उसके सामने बहुत कुछ सीखने और जानने को था। पता नहीं उस मानव के पास इन चीजों को नाम देने के लिए शब्द थे या नहीं, किंतु ये सत्य है कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ ही उसके ज्ञान का कोश भी बढ़ता गया।
1: तो क्या यही विज्ञान का जन्म हुआ गुरुजी?
0: नहीं वत्स, ये मनुष्य का व्यवहारिक ज्ञान था। विज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान में अंतर है, पर अंतर के बाद भी दोनों में एक समानता है। वो ये कि दोनों का लक्ष्य एक ही है। व्यवहारिक ज्ञान से भी मनुष्य तैरने वाली नौका बना लेता है, उसे समुद्र के वक्ष पर दौड़ाता है, डूबने से बचाता है और किनारे पर ले आता है। वैज्ञानिक ज्ञान के सहारे भी वो यही सब कुछ करता है। व्यवहारिक ज्ञान क्रियात्मक होता है, कला के रूप में होता है, पर विज्ञान नियमों और सिद्धांतों पर आधारित होता है। फिर भी विज्ञान का जन्म व्यवहारिक ज्ञान से ही, कला से ही होता है। विज्ञान के पहले व्यवहारिक ज्ञान कला ही जन्मती है।
2: फिर तो आचार्य श्री, आदि मानव मूल वैज्ञानिक हुए।
0: निश्चय ही वत्स, वे आदि मानव ही थे जिन्होंने पत्थरों के हथियार तथा औजारों का निर्माण किया, डंडे के सहारे भारी पेड़ों के तने ढकेलना, चप्पू से नाव खेना, नाव बनाना, गन्ने को बटकर मरोड़कर रस निकालना, कुएं से पानी खींचने के लिए चरखी का उपयोग करना, फेंकन अथवा बरही बनाना, धनुष बाण बनाना, धोकनी बनाना, सुई सिल पत्थर का उपयोग करना, कृषि भोजन, पशुपालन, वस्त्र अलंकार, टोकरी भांड आदि बनाना, अग्नि उत्पन्न करना, धातु बनाना आदि कलाएं सीखी। हाँ, ये सत्य है, आदि मानव को इन कलाओं के अंदर छिपे वैज्ञानिक सिद्धांतों का ज्ञान नहीं था। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक तैराक तैरना जानता है पर तैरने वाली वस्तुओं के सिद्धांत और जल के उछाल का संबंध नहीं जानता।
1: आचार्य श्री, ये सभी कलाएं भी 64 कलाओं में सम्मिलित होंगी?
0: हाँ, ये सभी कलाएं भी और अन्य कलाएं भी 64 कलाओं में सम्मिलित हैं।
1: जी गुरुजी।
0: वत्स, कलाओं के नाम भिन्न भिन्न नहीं, उनके लक्षण भिन्न भिन्न होते हैं, क्योंकि क्रिया के पार्थक्य से ही कलाओं में भेद हो जाता है। जो व्यक्ति जिस कला का अवलंबन करता है उसकी जाति भी उस कला के नाम से जानी जाती है।
1: जी।
0: हमारे हिसाब से पहली कला नृत्य है। हाव भाव के साथ गति नृत्य कहलाती है। नृत्य में करण, अंगहार, विभाव, भाव, अनुभाव और रसों की अभिव्यक्ति की जाती है। नृत्य दो प्रकार के होते हैं, एक नाट्य दूसरा अनाट्य। नटराज शिव को नृत्य का आदि गुरु माना जाता है। भरत मुनि ने नृत्य की कुल 108 मुद्राएं बताई हैं। नृत्य एक स्वाभाविक वस्तु है जो हृदय में प्रसन्नता का उद्रेक होते ही बाहर व्यक्त हो जाता है।
2: जैसे वर्षा ऋतु में घन गर्जना से आनंदित होकर मोर झूम झूम कर नाच उठता है।
0: हाँ वत्स, दूसरी प्रमुख कला है विविध प्रकार के वाद्यों का निर्माण और उन्हें बजाने की कला। वाद्यों के मुख्य चार प्रकार होते हैं।
2: कौन से गुरुजी?
0: तंत, सुपिर, अवनद्ध और घन। तार अथवा तांत का जिसमें उपयोग हो वे तंत वाद्य हैं, जैसे वीणा, तानपुरा, सारंगी, बेला, सरोद आदि, जिनका भीतरी भाग पोला और जो सच्छिद्र होते हैं तथा जिनमें वायु का प्रयोग होता है वे सुपिर वाद्य कहलाते हैं, जैसे बांसुरी, अलगोजा, शहनाई आदि। ऐसे ही चमड़े से मढ़े हुए वाद्य अवनद्ध कहलाते हैं, जैसे ढोल, नगाड़ा, तबला, मृदंग आदि, जबकि परस्पर आघात से बजने वाले वाद्य घन कहलाते हैं, जैसे झांझ, मंजीरा, करताल आदि। ये गायन कला से संबंध रखती है। प्राचीन ग्रंथों में सरस्वती और नारद को वीणा वादन में, श्री कृष्ण भगवान को बंसी बजाने में और महादेव शिव को डमरू वादन में निपुण बताया गया है।
1: आचार्य श्री, आपने बताया वादन कला गायन कला से संबंध रखती है।
0: हाँ, वादन के बिना गायन अधूरा लगता है, ऐसे ही गायन वादन के बिना नृत्य। गायन, वादन और नृत्य की त्रयी वैसे ही तीर्थ बन जाती है जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम। गायन तीसरी प्रमुख कला है जिसे गांधर्व विद्या भी कहा गया है। संगीत का प्रमुख उपादान नाद होता है। नाद के माध्यम से ही संगीत कला की उत्पत्ति, अभिव्यक्ति एवं प्रस्तुति संभव होती है। शारंगदेव ने संगीत की परिभाषा देते हुए गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते कहा है, अर्थात गीत, वाद्य और नृत्य तीनों को सम्मिलित करने से संगीत कहा गया है। ऐसे ही शारंगदेव ने नाद को ब्रह्म स्वरूप निरूपित किया है। अस्ति ब्रह्म चिदानंदम स्वयं ज्योति निरंजनम ईश्वरम लिंग मित्युक्तम द्वितीयमजम विभु निर्विकारम निराकारम सर्वेश्वर मनश्वरम सर्वशक्ति च सर्वज्ञम तदंशा जीव संगकाह। संगीत और व्याकरण दोनों के तत्व माहेश्वर सूत्र हैं। व्याकरण में 5 शुद्ध स्वर और 2 मिश्रित स्वर होते हैं। ऐसे ही संगीत में भी 5 स्वर प्रधान और 2 गौण हैं। गांधर्व गान में ये 5 स्वर मध्यम, गांधार, ऋषभ, षडज तथा धैवत हैं। मध्यम मतलब म, गांधार मतलब ग, ऋषभ मतलब री, षडज मतलब सा और धैवत मतलब ध।
1: जी गुरुजी।
0: हाँ, ये सरल स्वरों में समझाया। गौण स्वर पंचम यानी प और निषाद हैं, नी। संगीत और व्याकरण दोनों में नाद के 66 भिन्न रूप होते हैं जिन्हें श्रुति कहते हैं। आओ हम संगीत कक्ष की ओर चलें।
1: जी गुरुजी।
2: जी गुरुजी।
0: देख रहे हैं आप लोग?
1: जी गुरुजी।
0: गायन वादन और नृत्य की त्रयी, क्योंकि संगीत और व्याकरण में साम्य है अतः इस त्रयी में भी साम्य है। इन तीनों रूपों में एक लय है, ताल है, सम्मिति है। तीनों एक गणित में बंधे हैं, अतः इन कलाओं का भी एक विज्ञान है, ध्वनि तरंगों का विज्ञान, गति संचलन का विज्ञान। आइए यहाँ वृक्ष के नीचे बैठें। आइए।
2: जी गुरुजी।
1: जी गुरुजी।
2: आचार्य श्री।
0: हाँ?
2: आप 64 कलाओं की चर्चा कर रहे थे।
0: हाँ शिष्यों, आगे की 5 कलाएं हैं, यानी तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं और सातवीं, क्रमशः स्त्री और पुरुषों को वस्त्र और अलंकार सुरुचि रूप से पहनाने की कला, अनेक प्रकार के रूपों का आविर्भाव करने की कला, शैया और अस्तरण सुंदर रीति से बिछाने और पुष्पों को विभिन्न तरह से गूंथने की कला, दूत क्रीड़ा की कला और अनेक प्रकार के आसनों द्वारा सुरत क्रीड़ा की कला। इन 8 कलाओं का उल्लेख गांधर्व वेद में किया गया है।
1: आचार्य श्री, इनमें गायन, वादन और नृत्य भी सम्मिलित है।
0: हाँ वत्स, आगे की 10 कलाओं का संबंध आयुर्वेद से है। नवी कला से लेकर 18 कला तक की ये कलाएं हैं। विविध मकरंदों से आसव, मद्य आदि बनाने की कला, शल्य की पीड़ा को कम कर देना, शिरा और फोड़े आदि की चीर फाड़ करने की कला, इसमें हकीमों और आयुर्वेदाचार्यों की चीर फाड़ भी सम्मिलित है। वृक्षों से प्राप्त रस आदि से अन्न पकाने की कला, वृक्ष गुल्म लता आदि को लगाने, फल फूलों को उत्पन्न करने और वृक्षों के संरक्षण की कला, पत्थर सोने चांदी आदि धातुओं का खनन, उनकी भस्म बनाने की कला, इक्षु से राव गुड़ खांड मिश्री कंद आदि बनाने की कला, स्वर्ण आदि अनेक धातु और उनसे औषधि निर्माण की कला, मिश्रित धातुओं को उनके मिश्रण से पृथक करने की कला, धातुओं का अपूर्व मिश्रण बनाने की कला, समुद्री जल और मृदा से नमक आदि पदार्थों को निकालने की कला। इन कलाओं में वनस्पति शास्त्र, वानिकी, धातुकर्म, रसायन शास्त्र आदि विज्ञान आ जाते।
1: जी गुरुजी।
2: आचार्य श्री, इनमें से अनेक क्षेत्रों में आचार्य नागार्जुन और महर्षि चरक आदि ऋषियों ने भी काम किया है।
0: हाँ वत्स, तुम ठीक कह रहे हो। प्रिय शिष्यों, आगे की पांच कलाएं युद्ध कला से संबंधित हैं।
2: जी गुरुजी।
0: ये धनुर्वेद का अंग है, यथा 19वीं कला पैंतरा बदलते हुए शस्त्रों के संचालन की कला है, 20वीं कला मल्ल युद्ध और बाहु युद्ध की कला, 21वीं कृत और प्रतिकृत मुष्टि युद्ध की कला, 22वीं अस्त्रों से अभिलक्षित देश को निशाना बनाने की कला और 23वीं हाथी घोड़ों और रथों की विशिष्ट गतियों के द्वारा युद्ध के आयोजन की कला। ये तो तुम लोग जानते ही हो कि युद्ध कला का अपना शास्त्र होता है, अपना पूरा पूरा विज्ञान होता है।
2: जी गुरु जी।
1: महर्षि, महाभारत ग्रंथ में भी तो इसका विशद वर्णन है। आचार्य द्रोणाचार्य इन कलाओं के विशेषज्ञ माने जाते हैं ना?
0: हाँ वत्स, अपने आश्रम में भी तो इन कलाओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। तुम लोग भी तो ये प्रशिक्षण ले रहे हो ना? अब तक तो तुम लोग इन कलाओं के अंतर्निहित सिद्धांतों को समझ ही गए होगे।
1: जी गुरुजी।
0: शिष्यों, आगे की कलाएं विविध कलाओं से और क्षेत्रों से संबंधित हैं। यथा 24वीं कला विविध प्रकार के आसनों में बैठकर दोनों हाथों की उंगलियों से विविध आकृतियां बनाकर ईश्वराधन करना, 25वीं कला रथ हाँकने की कला, 26वीं मिट्टी पत्थर लकड़ी तथा धातुओं के बर्तन बनाने की कला और 27वीं चित्रांकन की कला।
2: अद्भुत, इस कला में तो भारत ने बहुत उपलब्धियां प्राप्त कर रखी हैं। प्राचीन मंदिरों, महलों, गुफाओं में उकेरे गए चित्रों की वानगी देखते ही बनती है। इनके रंग शताब्दियों बाद भी धुंधलाए नहीं हैं।
0: तुम्हारा कथन सत्य है वत्स, पर हमें तो तुम लोगों के भांड और उन पर की गई चित्रकारी देखनी है। वसंतोत्सव के अवसर पर होने वाले वार्षिकोत्सव में हम इनकी प्रदर्शनी आयोजित करने जा रहे हैं। आप लोग तैयार रहें।
1: जी गुरुजी।
0: हाँ तो शिष्यों, 28वीं कला तालाब, कूप, बावड़ी, महल, मंदिर, घर बनाने और भूमि समतल करने से संबंधित है, जबकि 29वीं कला समय बताने वाली घड़ियों के निर्माण से संबंधित। इनमें जल घड़ी, बालू घड़ी और धूप घड़ी आदि बनाने की शिक्षा दी जाती है। ये तो तुम जानते ही हो कि ये कला ज्योतिर्विज्ञान से संबंधित है।
1: हाँ आचार्य श्री, हम जानते हैं ब्रह्मगुप्त, वाराह मिहिर, भास्कराचार्य आदि अनेक महर्षियों ने इस क्षेत्र में विशेष काम किया है।
0: शिष्यों, 30वीं कला विभिन्न अनुपात में रंगों के मिश्रण से विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को रंगना है। किस वस्त्र को कैसे रंगे ताकि उसकी चमक स्थायी रहे और रंग फीका ना पड़े, निश्चित ही विशिष्ट कला है। सूती कपड़ों की रंगाई की

0: भी वर्गीकरण प्रस्तुत कर दिया है।
1: हाँ वत्स, 33वीं कला सूत सन आदि तंतुओं से रस्सी बनाने और 34वीं कला विभिन्न तंतुओं से पटबंध अर्थात वस्त्र बनाने से संबंधित है। वैदिक काल में परिष्कृत कपड़ा बुनने की तकनीक चली आ रही है। अथर्ववेद के अनुसार बुनाई महिलाओं का विशेष अधिकार था। वैदिक काल में 3 वस्त्र, निवि यानी अंतः वस्त्र, वसा यानी पोशाक एवं आदिवसा यानी उत्तरे या ओढ़नी प्रचलित थे। साड़ी भी अपने प्रारंभिक रूप में प्रचलित थी। आइए हम अपने करघा कक्ष की ओर चलें।
0: जी गुरुजी।
1: देख रहे हैं ना, करघे पर धोती बुनी जा रही है और उधर दूसरे करघे पर साड़ी।
0: जी गुरुजी।
1: किनार या किनारी साड़ी और धोती का एक महत्वपूर्ण अनुषंग होता है। आप देख सकते हैं धोती की किनार एकदम सादा है जबकि साड़ी की किनारी आकर्षक बनाई जा रही है जो पूरी साड़ी को आकर्षक रूप प्रदान करती है।
0: आह, कितना सुंदर है ये दृश्य।
1: जितना धोती या साड़ी का आकलपन एक विशिष्ट कला है उतना ही करघे को चलाना भी एक कला है। आओ अब हम उद्यान की ओर चलें।
2: आचार्य श्री, हमने चोल स्त्रियों को मत्स्य वल्का शैली में साड़ी पहने देखा है जिसमें साड़ी को पैरों के बीच से निकालकर पीछे खोसा जाता है।
1: हाँ वत्स, दूसरी से चौथी शताब्दी तक आते आते साड़ी पहनने की शैली में कई परिवर्तन आए। शिष्यों, आगे की 4 कलाएं आभूषण निर्माण से संबंधित हैं।
2: जी गुरुजी।
1: 35वीं कला रत्नों की पहचान और उनके वेधन से संबंधित है जबकि 36वीं कला स्वर्ण रजत की शुद्धता की जांच से संबंधित है। 37वीं नकली सोने चांदी हीरे मोती बनाने की कला है जबकि 38वीं कला सोने चांदी का लेप चढ़ाने आभूषण बनाने और मीनाकारी करने की कला है।
0: आचार्य श्री, रत्नों के धारण का उद्देश्य तो श्रृंगार से अधिक उनके धारण से होने वाले शुभाशुभ फल से होता है, फिर नकली रत्नों का निर्माण किस लिए?
1: वत्स, नकली आभूषण केवल शोभा बढ़ाने के लिए ही धारण किए जाते हैं। इनकी चमक आभा में कोई कमी नहीं होती। अब जैसे मिश्री से जो कृत्रिम हीरा बनाया जाता है उसे सामान्य जौहरी भी आसानी से नहीं पहचान पाते। आगे से 2 कलाएं अर्थात 49वीं और 40वीं चर्म कलाएं हैं जो पशुओं के शरीर पर से चमड़ा निकालकर अलग करने और चमड़े को मुलायम करके उपयोगी सामान बनाने से संबंधित है।
2: आचार्य श्री, पहले तो चमड़े का उपयोग प्रमुखतः चर्म आसन और चर्म वस्त्र के रूप में होता था, अब तो यह आवरण थैला और डोलची बनाने के लिए भी उपयोग में आने लगा है।
1: हाँ वत्स, समय के साथ हर वस्तु के नए नए उपयोग विकसित होते जाते हैं। 41वीं कला गाय भैंस से दूध दोहकर मक्खन घी दही आदि बनाने की कलाओं से संबंधित है जबकि 42वीं कला वस्त्रों की सिलाई है। 43वीं कला तैराकी है जबकि 44वीं बर्तन मांजने, 45वीं वस्त्रों को धोने साफ करने और 46वीं शौर कर्म कला है। फिर 47वीं कला तिल रेंडी आदि बीजों से तेल निकालने की, 48वीं पेड़ों पर ऊंचे चढ़ने की और 49वीं हल जोतने की कलाएं हैं।
0: आचार्य श्री, पेड़ों पर चढ़ने को भी कला की श्रेणी में रखा गया है?
1: हाँ वत्स, खजूर ताड़ नारियल सुपारी आदि के पेड़ों पर चढ़ने के लिए विशेष तकनीक की आवश्यकता होती है। ऐसे ही दूसरों की सेवा करना भी एक कला है, ये 50वीं कला है जबकि 51वीं कला बांस खजूर ताड़ आदि के पंखे टोकरी आदि पात्र बनाना है।
2: आचार्य श्री, अपने आश्रम में भी तो छोटे बड़े अनेक प्रकार के बिजना बनाए जा रहे हैं और लगभग 2500 प्रकार की टोकरियां और सूपे बनाए जाते हैं।
1: हाँ, टोकरियां तो जैसे सामान रखने के लिए सर्वसाधारण उपकरण है। विभिन्न उपयोगों के लिए विभिन्न प्रकार की टोकरियां बनाने का प्रचलन है।
2: जी।
1: फिर ठहरी हुई वायु को बिजना ही चलाता है, चाहे वो मोर पंख का बना हो, खजूर के पत्तों का हो या बांस का। बस तुमने अपने लिए कितने प्रकार के पंखे बनाए हैं?
0: जी गुरुजी, 3 प्रकार के।
1: अच्छा।
0: एक खजूर का सादा, दूसरा बांस का बुनाई वाला और तीसरा उरई की सीकों को रंगीन धागों में बुनकर।
1: इन्हें हम देखेंगे कितनी कलमकारी या कलाकारी की है तुमने।
0: जी जी अवश्य गुरुजी।
1: अब हम 52वीं कला पर आते हैं जो कांच के बर्तन आदि बनाने से संबंधित है।
2: जी गुरुजी।
1: रेत चूना और सोडे के मिश्रण से गलाकर कांच बनाना एक विशिष्ट कला है, ये कीमियागिरी विज्ञान से संबंधित है। आगे की कलाएं हैं 53वीं

0: स्रोतों से सिंचाई, 54वीं संहरण यानी अधिक जल वाले स्थान से जल हटाना, 55वीं हाथी घोड़े ऊंटों आदि के सवारी के आसन बनाना, 56वीं लोहे के अस्त्र बनाना और 57वीं 58वीं और 59 बच्चों की कलाएं, बच्चों का पालन पोषण और खेलने के लिए खिलौने बनाने से संबंधित।
1: यानी आचार्य श्री, जीवन से संबंधित हर गतिविधि एक कला है।
0: हाँ वत्स, क्योंकि उसके सुचारू संपादन का आधार कुछ नियम और सिद्धांत है। अब जैसे कि अपराधियों को दंड देना 60वीं कला है, विभिन्न लिपियों को सुंदरता से लिखना 61वीं कला, और तो और पान का संरक्षण भी 62वीं कला है, और आदान 63वीं तथा प्रतिदान 64वीं कला है।
2: आचार्य श्री, इन 64 कलाओं का पाठ्यक्रम तो काफी व्यापक है, इसमें से तो प्रायः सभी विषयों का समावेश हो जाता है।
0: हाँ वत्स, शिक्षा का उद्देश्य भी तो यही है, सर्वांगीण विकास, ज्ञान की वृद्धि हो, सदाचार में प्रवृत्ति हो और जीविकोपार्जन में सहायता मिले। इस पाठ्यक्रम में इन सब का ध्यान रखा गया है। इतना ही नहीं, पारलौलिक कल्याण भी नहीं छोड़ा गया है। संक्षेप में कहें तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को ध्यान में रखकर ही शिक्षा का ये क्रम निश्चित किया गया है। श्री कृष्ण को इन सभी विषयों की पूरी शिक्षा दी गई थी और वे प्रायः सभी में प्रवीण भी थे।
1: आचार्य श्री, गुरुकुलों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि सभी बालकों को प्रायः इन सभी विषयों की शिक्षा दी जाती है। क्या वे सभी कलाओं में दक्ष हो जाते हैं?
0: वत्स, हम यूं कह सकते हैं कि सभी को सभी विषयों का सामान्य ज्ञान हो जाता है। निपुण तो व्यक्ति अपने स्वभाव और प्रकृति के आधार पर किसी का या किन्हीं विशिष्ट विषयों में ही हो पाता है।
1: जी।
0: जिसकी जिस ओर प्रवृत्ति है, उसे उसी में अभ्यास करने से कुशलता प्राप्त होती है। इसीलिए हमने कहा है, याम याम कलाम समाश्रित्य निपुणो यो हि मानवः नैपुण्य करणे सम्यक ताम ताम कुर्यात् स एव हि। सच तो यह है वत्स, वंशागत कला के सीखने में पर्याप्त सुगमता होती है। एक बड़ई का लड़का बड़ई गिरी जितनी शीघ्रता और सुगमता के साथ सीखकर उसमें निपुण हो सकता है, उतना दूसरा नहीं, क्योंकि वंश परंपरा और बालपन से ही उसे उस कला के योग्य संस्कार बन जाते हैं। ये शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार है। अब सांध्य संध्या का समय हो चला है, आओ हम सब यज्ञशाला की ओर चलें।
2: जी गुरुजी।

0: तो बच्चों, ये थी महर्षि शुक्राचार्य के गुरुकुल की एक झलक।
1: तो घंटी बज गई, चलो चलो।
2: अरे चलो, चलो। और सुन, मोबाइल ज्यादा कान में, वो हेयरफोन मत लगाया कर।
3: भी नहीं आऊंगी मैं स्कूल में,
2: नहीं तो तेरे कान बहर हो जाएंगे। तू ऐ करके सुनना।

0: साथियों, अब हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो रहा है। अगले सप्ताह आपसे फिर भेंट होगी किसी और ऋषि वैज्ञानिक के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें,
1: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ऋषि वैज्ञानिक। बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।

0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। आज आपके साथ हूं मैं, आपकी दोस्त सुनीता सिंह। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए। बस थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम।

0: नमस्कार, मैं हूं गोविंद नामदेव और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम संस्कृति संवाद के अंतर्गत भारत के दर्शनीय स्थल
2: अतुल्य भारत।
1: श्रोताओं, इस बार भारत के दर्शनीय स्थलों की यात्रा पर हम आपको उस शहर में ले चलते हैं जो 1912 तक भारत की राजधानी हुआ करता था।
3: हाँ श्रोताओ, जरा कल्पना कीजिए कौन सा होगा वो शहर।
1: चलिए एक और क्लू आपको देते हैं। इस शहर में विवेकानंद जी के गुरु रहा करते थे। अब तो आप समझ ही गए होंगे।
3: अरे क्यों नहीं समझेंगे भाई, इतना आसान क्लू जो आपने दे दिया है।
1: जी हाँ, अंग्रेजों का कलकत्ता और आज का कोलकाता है ये शहर।
3: हाँ श्रोताओं, एक कहावत कलकत्ता के नाम से मैं आपको सुनाता हूँ। किसी ने पूछा कि अगर किसी कलकत्तियन के पास ढेर सारा फालतू वक्त हो तो वो क्या करता है, तो उसे जवाब मिला, भाई कहीं उसे आने जाने के लिए बस या ट्राम पकड़ लेना चाहिए। अब सवाल करने वाले को ये बात कुछ हजम नहीं हुई। उसने फिर पूछा, चलो अगर मान लो उसके पास वक्त बहुत कम है, उसे बहुत जल्दी पहुंचना है, तो फिर उसे क्या करना चाहिए। तो फिर उसे जवाब मिला, फिर तो उसे पैदल ही निकल जाना चाहिए।
1: श्रोताओं, कलकत्ता वालों ने अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर ये जोक खुद ही गढ़ा है।
3: जी हाँ,
1: क्योंकि उनके पब्लिक ट्रांसपोर्ट की रफ्तार इतनी धीमी है कि अगर किसी को कहीं जल्दी पहुंचना हो तो वे पैदल ही जाना पसंद करते हैं।
3: हाँ, कोलकाता की बात चली है तो सबसे पहला सवाल जहन में यह उठता है कि आखिर यह नाम पड़ा तो पड़ा कैसे। श्रोताओं, इतना तो आप जानते हैं कि यह शहर अंग्रेजों का बसाया हुआ था और इसे कलकत्ता कहा करते थे वे लोग। वजह यह थी कि उन्होंने जिन तीन गांवों को मिलाकर के यह शहर बनाया था उनमें से एक नाम था कालीकता, बाकी के दो गांव थे सुतानाटी और गोविंदपुर।
1: लेकिन ये कालीकता नाम भी असली नहीं है। असली नाम है काली क्षेत्र, जिसका मतलब है देवी काली का क्षेत्र। साल 1698 की बात है। उस समय ये तीनों गांव मुगल साम्राज्य में हुआ करते थे और इनकी जागीरदारी एक चौधरी परिवार के पास हुआ करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय भारत में अपना व्यापार बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई थी और उसे बंगाल में किसी स्थायी ठिकाने की तलाश थी। तो किसी तरह हाथ पांव मारकर उसने इन गांवों की जागीरदारी अपने नाम ट्रांसफर करवा ली।
3: बिल्कुल ठीक, और कंपनी को यह जगह बहुत पसंद आई। उन्होंने भी सोच समझ करके इसको बसाया और यह काम किया था एक समझदार अफसर जॉब चारनाक ने। उसने देखा कि इन तीनों गांवों के पश्चिम में हुगली नदी है, उत्तर में एक सकरी खाड़ी है और पूर्व में नमकीन झीलें हैं। हुगली नदी इस इलाके को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है, तो यह जगह उनके लिए बहुत ही महफूज थी।
1: इस तरह यहाँ अपनी बस्ती बसाने का फायदा ये था कि ये कुदरती तौर पर महफूज थी। इसके अलावा कोई आफत आने पर एक तो हुगली नदी बाढ़ का काम करती, दूसरे इस नदी के जरिए समुद्र की ओर भागा जा सकता था जहाँ अंग्रेजी नेवी की अजय ताकत इनकी रक्षा करती। चारनाक हालांकि 1693 में ही गुजर चुका था, लेकिन उसकी सलाह को कंपनी ने गांठ बांध लिया था और कोशिश करके 1698 में इस जगह की जागीरदारी प्राप्त कर ही ली।
3: बिल्कुल ठीक, और जैसा कि अंग्रेज हर जगह करते थे उन्होंने यहाँ भी वही किया। उन्होंने फौरन इस जगह की किलेबंदी शुरू कर दी और 1712 में यहाँ फोर्ट विलियम नामक एक मजबूत किला तैयार कर लिया और 1772 में कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी की राजधानी बना और उसके बाद पूरे भारत के ब्रिटिश एम्पायर की राजधानी। लेकिन 1912 में यह जगह दिल्ली को मिल गई और तब से दिल्ली ही भारत की राजधानी हो गई।
1: अब कोलकाता के संबंध में कुछ दिलचस्प तथ्य और हम आपको बताते हैं।
3: बताइए।
1: अंग्रेजों के जमाने में कलकत्ता इतना महत्वपूर्ण हुआ करता था कि वे इसे लंदन के बाद ब्रिटिश साम्राज्य का दूसरा शहर कहा करते थे। आसान शब्दों में कहें तो उनकी नजर में ब्रिटिश एम्पायर के लिए लंदन के बाद सबसे अहम शहर कलकत्ता ही था।
3: श्रोताओं, आप में से बहुत से लोग ये भी जानते होंगे कि कलकत्ता को सिटी ऑफ पैलेस भी कहा जाता है, मगर लाख टके का सवाल तो यह है कि क्यों। वह यूं कि जब अंग्रेज लोग कलकत्ता में बसना शुरू किए तो यहाँ इमारतों के निर्माण के लिए गॉथिक, ब्रॉक, रोमन, इस्लामिक और ओरिएंटल डिजाइनों के एक ही तरह के पैटर्न का इस्तेमाल हुआ।
1: अंग्रेज अफसर खास करके पश्चिमी डिजाइनों के बड़े बड़े महलनुमा बंगले बनवाया करते थे। यहाँ तक कि यहाँ के बंगाली बाबू भी इस मामले में पीछे न रहे। जब बंगाल में जमींदारी प्रणाली आई तो जमींदारों के पास अनाप शनाप पैसा आया। इस पैसे से उन्होंने कोलकाता में शानदार हवेलियां बनवाई जिनमें हर तरह के आराम और शान और शौकत की चीजें होती थी।
3: श्रोताओं, प्रसंग बस आपको यह भी बता दें कि आज इनमें से ज्यादातर हवेलियां खंडहरों में तब्दील हो चुकी हैं, लेकिन उनमें से कुछ का संरक्षण किया जा रहा है और कुछ को हेरिटेज स्ट्रक्चर घोषित कर दिया गया है।
1: और इस तरह अंग्रेज जेंटलमैन और बंगाली भद्र पुरुषों के बल पर देखते ही देखते कोलकाता अनगिनत महलनुमा हवेलियों से भर गया और ये शहर सिटी ऑफ पैलेसेस कहलाने लगा।
3: फ्रांसीसी लेखक डोमिनिक लेपियर ने कलकत्ता को सिटी ऑफ जॉय कहा है। कोलकाता सही मायने में जानते थे कि जिंदगी का मजा कैसे उठाया जाए, चाहे दुर्गा पूजा हो, न्यू ईयर हो या अन्य कोई त्योहार हो। कोलकातियन इसे पूरे जोश और खरोश के साथ मनाते थे। पैसे की चाहे कितनी कमी हो, लेकिन जीवन का आनंद उठाने में कोलकाता वाले कभी भी पीछे नहीं रहते थे।
1: एशिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम इडन गार्डन कोलकाता में ही स्थित है। इसमें 100,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। ये भारत का ऐसा पहला स्टेडियम है जिसमें फ्लड लाइट्स लगाई गईं और डे एंड नाइट मैचेस देखने की फैसिलिटी उत्पन्न की गई।
3: श्रोताओं, ईडन गार्डन की तरह ही कलकत्ता का साल्ट लेक स्टेडियम भी पूरी दुनिया में मशहूर है। बंगाली में इसे युवा भारती क्रीड़ा आंगन कहते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। यह मल्टीपर्पज स्टेडियम आज फुटबॉल मैचों व एथलेटिक इवेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। श्रोताओं, हम आपको एक बात और बता दें कि इसमें एक साथ 120,000 से भी ज्यादा दर्शकों के बैठने की क्षमता है। सोचिए जरा,
1: भारत की पहली मेट्रो ट्रेन दिल्ली या मुंबई में नहीं बल्कि 1984 में कोलकाता में ही शुरू हुई और ये भारत की पहली अंडरग्राउंड ट्रेन सर्विस भी थी। कोलकाता शहर की 3 निशानियां और भी हैं, विक्टोरिया मेमोरियल, हावड़ा ब्रिज और ट्राम।
3: हाँ शोला, कोलकाता इस मायने में भी भारत के सभी शहरों से अलग है कि यह देश का पहला एकमात्र शहर है जहाँ सी पोर्ट यानी कि बंदरगाह समंदर पर नहीं है बल्कि किसी नदी पर स्थित है। जी हाँ, कलकत्ता सी पोर्ट हुगली नदी पर स्थित है। इस पोर्ट की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ही की गई थी।
1: और हैंड पुल्ड रिक्शा, जी हाँ, इसे भी शायद सबसे पहले कोलकाता में ही इस्तेमाल किया गया। रिक्शा शब्द जापानी भाषा के जिन रिक्शा शब्द से आया है जिसका मतलब होता है इंसान के द्वारा खींचा जाने वाला रिक्शा। दुनिया को रिक्शे का चलन इसी देश ने दिया है। जब 1868 में मेइजी काल के जापान में ये शुरू हुआ तो इसे उस जमाने की तेज सवारी माना गया क्योंकि इसने पालकियों की जगह ले ली थी।
3: खैर, रिक्शे तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, पुल्ड रिक्शा। इनमें से पुल्ड रिक्शा ही जापानी जिंग रिक्शा है। इसे आप रिक्शा न कहकर के एक टांगा कह सकते हैं, जिसमें घोड़े की जगह इंसान जुटता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि तांगे में घोड़े को हाँकने के लिए एक कोचवान होता है, जबकि पुल रिक्शा में इंसान ही घोड़ा और इंसान ही कोचवान होता है।
1: आज से 200 साल पहले चीन के जरिए कलकत्ता आए इस पुल रिक्शे ने हर वक्त कलकत्ता को ऑन व्हील्स ही रखा, चाहे बरसात की वजह से गलियों में पानी भरा हो, चाहे भारत बंद हो या चाहे जाम लगा हो। दौड़ती हुई ये पालकियां अपने लिए रास्ता निकाल ही लेती हैं। इसीलिए कलकत्ता में कहते हैं कि मरीज को अगर अस्पताल ले जाना हो तो इससे भरोसेमंद कोई साधन नहीं।
3: फिल्म निर्माता भी अपनी फिल्म में अगर कलकत्ता दिखाना चाहते हैं तो वे इंसानी घोड़े वाला यह तांगा दिखाना नहीं भूलते, चाहे ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिकल फिल्म हो, चाहे 2 बीघा जमीन हो या नए जमाने की परिणीता हो। यह साबित करने के लिए कि यह सीन असली कलकत्ते में फिल्माई गई है, पुल रिक्शा को कैनवास पर उभारना ही पड़ता है।
1: चलिए श्रोताओं, अब हम बात करते हैं कोलकाता शहर की एक और निशानी यानी कि विक्टोरिया मेमोरियल की। विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता का एक बहुत ही खास टूरिस्ट स्पॉट है,
3: जी हाँ,
1: जो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया की याद में बनाया गया है। ये साल 1902 की बात है जब क्वीन विक्टोरिया का निधन हुआ। उस समय लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय हुआ करते थे और कलकत्ता भारत की राजधानी। उन्होंने ही सुझाव रखा कि महारानी की याद में कोलकाता में एक म्यूजियम बनाया जाए, इसलिए इसे लॉर्ड कर्जन का ब्रेन चाइल्ड भी कहा जाता है।
3: श्रोताओं, विक्टोरिया मेमोरियल को बनाने में मुगलिया व ब्रिटिश आर्किटेक्चर का मिला जुला इस्तेमाल किया गया है। इसके भीतर के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में सफेद मकराना संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है। दरअसल इसे बनाने के लिए इसके आर्किटेक्ट विलियम इमर्सन ने ताजमहल का मॉडल सामने रखा था। 1921 में इसका उद्घाटन हुआ और उस जमाने में इसके निर्माण की लागत आई थी 1,05,00,000 रुपए।
1: मित्रों, आपको बता दें कि इस इमारत को बनाने में अंग्रेज सरकार ने फूटी कौड़ी भी नहीं दी थी। सारा का सारा पैसा या तो भारत के देशी राजाओं ने दिया या कुछ अमीर लोगों ने, जो इसी बहाने अंग्रेज सरकार का फेवर पाना चाहते थे।
3: विक्टोरिया मेमोरियल में आप ब्रिटिश राज घराने के ढेरों यादगार पेंटिंग्स व मुगल स्टाइल के पेंटिंग्स देख सकते हैं। बंगाल के नवाब का सिंहासन भी इसका एक खास आकर्षण है। इसके खूबसूरत बगीचे में हर शाम लेजर शो, ऑडियो विजुअल शो का आयोजन होता है, जो यहाँ आने वालों के लिए एक यादगार इवेंट होता है। अगर आप विक्टोरिया में जाएं, तो इसे देखना बिल्कुल न भूलें। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। कार्यक्रम है अतुल्य भारत, जिसमें आज हम आपको सैर करा रहे हैं कोलकाता शहर की। तो चलिए अब चलते हैं कोलकाता शहर के न्यू मार्केट में। भोपाल के न्यू मार्केट की ही तरह कोलकाता में भी एक न्यू मार्केट है, लेकिन बस इसका नाम ही केवल न्यू है। वैसे ये काफी पुराना है। 1874 में शुरू हुआ ये मार्केट उस समय हॉग मार्केट कहलाता था। ये नाम उस वक्त के कलकत्ता कमिश्नर स्टुअर्ट हॉग के नाम पर था। आजादी के बाद इसका नाम बदलकर न्यू मार्केट रख दिया गया।
3: इस मार्केट के बारे में कहा जाता है कि यह कोलकाता का शॉपिंग इंस्टीट्यूशन है और जिस किसी चीज के बारे में भी आप सोच सकते हैं वह आपको यहाँ मिल जाएगी। कीमतें कम होती हैं और क्वालिटी हाई, लेकिन शर्त यह है कि आपको बार्गेनिंग करनी आनी चाहिए। श्रोताओं, अगर आप नए हैं तो आप नहीं जानते कि कौन सी चीज कहाँ मिलेगी, तो फिक्र न कीजिए, न्यू मार्केट घूमने के लिए गाइड भी उपलब्ध हैं।
1: श्रोताओं, कोलकाता शहर काली मंदिर के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। देवी काली शक्ति के 108 रूपों में से एक है, जो अपने भक्तों को हर तरह की आपदा से बचाती हैं। आपको तो याद होगा कि कोलकाता का नाम वस्तुतः कालीकता से आया है, और कारण यह है कि यह क्षेत्र माँ काली का एक खास स्थान है और यहाँ आज भी आपको ढेरों काली मंदिर मिलेंगे, जैसे कि अयोध्या में ढेरों राम मंदिर मिलते हैं।
3: लेकिन इनमें से हम आपको दो खास मंदिरों की जानकारी देना चाहेंगे और वो है दक्षिणेश्वर का काली मंदिर और काली घाट का काली मंदिर। लोग भ्रमवश कभी कभी इन दोनों मंदिरों को एक ही समझ बैठते हैं, दोनों की ही भारी मान्यता है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि दक्षिणेश्वर का काली मंदिर जहाँ कलकत्ता के उत्तर में स्थित है, वहीं काली घाट का काली मंदिर दक्षिण में स्थित है।
1: श्रोताओं, माँ काली का एक रूप है भवतरिणी। इस रूप में वे कोलकाता के पास दक्षिणेश्वर काली मंदिर में विराजमान है। उल्लेख मिलता है कि 1847 के आसपास कोलकाता में एक रानी रोशमोई हुआ करती थी, जो माँ काली की बहुत बड़ी भक्त थी।
3: हाँ, उन्होंने निश्चय किया कि माँ काली के दर्शन करने के लिए वे वाराणसी जाएंगी। लेकिन उसी रात माँ काली उनके सपने में आई और उन्होंने कहा कि मेरे दर्शन के लिए वाराणसी जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम गंगा के तट पर एक मंदिर बनवा करके उसमें मेरी प्रतिमा स्थापित कर दो, मैं स्वयं उस मंदिर में विराजमान हो जाऊंगी।
1: इस पर रानी ने एक अंग्रेज जॉन हेस्ट से 20 एकड़ का शाहबान बगीचा खरीदा और उस पर यह मंदिर बनवाया। ये बगीचा एक कछुए के आकार का था। कहा जाता है कि इस आकार की भूमि शक्ति पूजा के लिए बहुत ठीक थी। उस जमाने में 9 लाख रुपए खर्च करके रानी रोशमोई ने मंदिर बनवाया। 1855 में इसका निर्माण पूरा होने के बाद इसमें माँ काली की प्रतिमा स्थापित की गई।
3: श्रोताओं, इसके आगे की कहानी तो और भी दिलचस्प है। मंदिर में मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम जिस पुरोहित ने संपन्न कराया था, उसका नाम था राम कुमार चट्टोपाध्याय। जल्द ही इस मंदिर में उनके छोटे भाई, जिनका नाम गदाई था, आकर के शिफ्ट हो गए। आपको बता दें कि गदाई और कोई नहीं रामकृष्ण परमहंस थे, जिन्हें विवेकानंद जैसे महान पुरुष ने उन्हें अपना गुरु बनाया था।
1: रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में कहा जाता था कि माँ काली उन्हें साक्षात दर्शन देती थी, और देती भी क्यों ना, वे माँ में इतने तन्मय रहते थे कि वे अपनी पत्नी शारदा को भी माँ कहते थे और माँ के रूप में ही उनकी पूजा करते थे।
3: आखिरी समय में रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया, जिससे उन्हें अपार कष्ट होता था। कई लोगों ने उनसे कहा कि आप तो माँ काली के भक्त हैं, अगर आप उनसे प्रार्थना करेंगे तो यह बीमारी ठीक हो जाएगी। जानते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, नहीं, यह कर्म फल है, इसे तो भोगना ही अच्छा है। अगर बिना भोगे दुनिया से चले गए तो इसे भोगने के लिए मुझे फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा।
1: और अब चर्चा काली घाट के काली मंदिर की। ये मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। श्रोताओं, आपको याद दिला दे कि शक्तिपीठ वे स्थल हैं जहां देवी सती का कोई ना कोई अंग गिरा था। तो जिस जगह पर ये मंदिर स्थित है, वहां पर देवी के दाहिने पैर का अंगूठा गिरा था।
3: श्रोता, सुनने में आता है कि सैकड़ों साल पहले इस जगह पर जंगल हुआ करते थे। एक बार किसी भक्त ने यहाँ पर रोशनी की एक किरण देखी। जब उसने इसका स्रोत ढूंढने की कोशिश की तो पाया कि यह रोशनी पत्थर के अंगूठे से आ रही है। इस अंगूठे के पास ही एक स्वयंभू शिवलिंग भी था। इस पर भक्त ने उस स्थान पर उपासना आरंभ कर दी।
1: श्रोताओं, जहां दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के निर्माण काल के बारे में हमें स्पष्ट जानकारी मिलती है, वहीं काली घाट के मंदिर की प्राचीनता का सही अनुमान हम नहीं लगा सकते। यहाँ पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की मुद्राएं तक मिली हैं, इसलिए हम समझ सकते हैं कि ये कितना पुराना हो सकता है।
3: हाँ, कहते हैं कि ओरिजिनल काली मंदिर एक छोटी सी झोपड़ी मात्र थी, जिस पर आज से 500 साल पहले किसी राजा मानसिंह ने पक्का मंदिर बनवाया। लेकिन जिस रूप में यह मंदिर आज हमें मिलता है, उसका निर्माण तो सन 1809 में बरिशा के चौधरी परिवार ने करवाया था।
1: श्रोताओं, कोलकाता की दुर्गा पूजा तो आपने सुनी है कि कितनी भव्य और कितनी विशेष होती है। पूर्वी भारत में शक्ति की आराधना का चलन बहुत पुराना है और दुर्गा जी तो शक्ति के 108 रूपों में से सबसे प्रबल है। वे एकमात्र ऐसी देवी हैं जो सिंह की सवारी करती हैं, जिनकी आराधना करके राम जी ने रावण को मारा, जिनका स्मरण करके कृष्ण जी ने कंस का संहार किया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश जिसकी स्तुति करते हैं। उनकी शान में बंगाली लोग अपना सबसे बड़ा त्योहार दुर्गा पूजा मनाते हैं।
3: बंगाली जन दुर्गा पूजा को अकाल बोधन भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है शक्ति का असमय जागरण। कलकत्ता में तो यह त्योहार इतने बड़े पैमाने पर इतने जोश और खरोश के साथ मनाया जाता है कि देश विदेश के सैलानी भी इसे देखने के लिए यहाँ डेरा डाल देते हैं।
1: 10, 20, 50, 100 नहीं, कई हजार पंडाल यहाँ बनते हैं और भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि वो बेकाबू हो जाती है। ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल ठप हो जाती है, कई बार तो पैदल चले बिना पंडाल तक पहुँचना संभव ही नहीं रहता।
3: श्रोताओं, वैसे तो दुर्गा पूजा की परंपरा राम ने शुरू की थी, परंतु आज जिस तड़क भड़क के साथ ये त्योहार मनाया जाता है ना, उसका आरंभ सन 1606 में तहरेपुर व नादिया के राजाओं ने शारदीय दुर्गोत्सव के नाम से शुरू किया था। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। कार्यक्रम है संस्कृति संवाद, जिसके अंतर्गत आज हम भारत के दर्शनीय स्थलों में आपको सैर करा रहे हैं कलकत्ता शहर की। और चलिए अब बात करते हैं कलकत्ता के हावड़ा ब्रिज की। श्रोताओं, रुडयार्ड किपलिंग नाम तो आपने सुना ही होगा, वही जिन्होंने जंगल बुक लिखी थी, जिसमें मोगली नाम का एक मशहूर करैक्टर है, जिस पर किसी जमाने में एक हिंदी सीरियल बना और जिसका एक गाना बच्चे गुनगुनाया करते हैं कि जंगल जंगल बात चली है पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है फूल खिला है।
1: किपलिंग एक जगह लिखते हैं, अरे ये लंदन यहाँ कैसे, इसे देखने के लिए तो भारत आना बनता है।
3: किपलिंग ने ये लाइनें हावड़ा ब्रिज को देखकर ही लिखी थी। कलकत्ता की यह पहचान है कि जिस तरह भोपाल का नाम आते ही भोपाल की झील आंखों में तैरने लगती है, उसी तरह कलकत्ता का नाम आते ही हावड़ा ब्रिज भी आंखों के सामने तैरने लगता है। वैसे ये कलकत्ता का मोनोग्राम भी है।
1: कोई कोलकाता जाए और ये ब्रिज न देखे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बल्कि हम तो यही कहेंगे कि वो कोलकाता गया ही नहीं। यमलोक में जिस तरह यमराज होते हैं और क्षीर सागर में विष्णु, उसी तरह कोलकाता में हावड़ा ब्रिज है। इस शहर के शरीर में धड़कते हुए दिल की तरह, किसी ने तो यहाँ तक लिखा है कि बाकी दुनिया को कोलकाता की पहचान बताने का काम ये ब्रिज ही करता है।
3: हाँ श्रोताओं, हावड़ा ब्रिज एक सस्पेंशन टाइप कैंटिलीवर ब्रिज है, जो हुगली नदी के दोनों किनारों पर जुड़वा नगरों कलकत्ता और हावड़ा को आपस में जोड़ता है। इसे बनाने का श्रेय अंग्रेजों को है, उन्होंने इंजीनियरिंग की बेहतरीन कारीगरी दिखाते हुए इसे 6 सालों की कठिन मेहनत के बाद 1942 में तैयार किया और 1943 में ट्रैफिक के लिए इसे खोल दिया गया।
1: उस वक्त ये न्यू हावड़ा ब्रिज कहलाता था, लेकिन आजादी के बाद 1965 में इसका नाम रविंद्र सेतु रख दिया गया। मगर हकीकत तो यह है कि जनता आज भी इस नामकरण को शायद नहीं मानती, वो तो आज भी इसे हावड़ा ब्रिज ही कहती है।
3: श्रोताओं, बाय द वे, सस्पेंशन ब्रिज उसे कहते हैं जिसमें ब्रिज का डेक सस्पेंशन केबल के नीचे लटका रहता है। ब्रिज के दोनों सिरों पर सस्पेंशन टावर होते हैं जिनमें स्टील केबल बंधी हुई होती है, और इस तरह के ब्रिज ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में दो ऊंची पहाड़ियों को आपस में जोड़ने के लिए बनाए जाते हैं, और सबसे पहले ये तिब्बत व भूटान में बनाए गए थे आज से लगभग पूरे 500 साल पहले।
1: दूसरी ओर कैंटिलीवर ब्रिज उसे कहते हैं जो कैंटिलीवर्स के सहारे हवा में लटकता रहता है बिना किसी नट बोल्ट के। मतलब ये हुआ कि हावड़ा ब्रिज लोहे की मजबूत रस्सियों के सहारे एक छोर से दूसरे छोर तक हवा में लटका हुआ है, न कोई नट बोल्ट और ना ही ब्रिज को टेक देने के लिए कोई पिलर वगैरह।
3: देखा जाए तो पैदल चलने वालों के लिए छोटे छोटे और हल्के फुल्के कैंटिलीवर ब्रिज बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर हावड़ा ब्रिज हुगली नदी के दोनों किनारों को जोड़ती हुई 8 लेन वाली 705 मीटर लंबी संरचना, चौड़ाई 71 फीट और ऊंचाई 269 फीट, जिसे बनाने में 26,500 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल हुआ, जिस पर से रोज 1.5 लाख गाड़ियां, 4 लाख पैदल लोग गुजरते हैं। वास्तव में कैंटिलीवर नाम का यह एक अजूबा ही है।
1: ये दुनिया का सबसे बिजी कैंटिलीवर ब्रिज है और पूरी दुनिया में 10 सबसे लंबे कैंटिलीवर ब्रिजों में 6वें नंबर पर है। ये केवल हावड़ा और कोलकाता को ही नहीं जोड़ता, बल्कि पुराने कलकत्ता और नए कोलकाता को भी जोड़ता है। तभी तो शायद एक व्यक्ति ने अपनी डायरी में लिखा, सालों बाद कलकत्ता आना हुआ, सब कुछ बदल चुका था सिवाय हावड़ा ब्रिज के।
3: श्रोताओं, कलकत्ता की हम बात करें और वहां की ट्राम सर्विस की बात ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता। श्रोताओं, ट्राम सर्विस भी कलकत्ता की एक अनोखी पहचान है। हालांकि किसी जमाने में यह मुंबई, दिल्ली, कानपुर जैसे कई शहरों में हुआ करती थी, लेकिन आज आप इसे और कहीं नहीं देख पा सकते। इसके अंतर्गत पटरियों पर दौड़ती हुई ट्रामे कारें लोगों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराती हैं।
1: कोलकाता की ट्राम सर्विस को अगर आप ट्रेन जैसी दिखने वाली बस सर्विस कहें तो ज्यादा ठीक होगा। सड़कों पर ही बिछी लोहे की पटरियों पर ट्रामे दौड़ती रहती हैं। न कोई रेलवे फाटक और न ही कोई बाड़ बंदी। आती हुई ट्राम के सामने से लोग आराम से ही निकलते रहते हैं।
3: श्रोताओं, ये बात है साल 1873 की, जब सियालदह और आर्मेनियन घाट स्ट्रीट के बीच लोहे की पटरियों पर घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली ट्राम सेवा की शुरुआत हुई थी। लेकिन पर्याप्त सवारियां ना मिलने की वजह से 8-10 महीने में ही यह सेवा बंद हो गई।
1: लेकिन सन 1900 में एक ब्रिटिश कंपनी ट्रामवेज कंपनी लिमिटेड ने इसकी फिर से शुरुआत की। इस बार ट्राम को घोड़ों से नहीं खींचा जाता था, बल्कि ये बिजली से चलती थी। देखते ही देखते ये नई ट्राम सेवा कोलकाता की पहचान बन गई और आज इसे इस शहर की एक जिंदा विरासत माना जाता है।
3: श्रोताओं, कोलकाता को इस आधे घंटे के प्रोग्राम में समेटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसलिए कोलकाता से जुड़ी हुई कुछ और जानकारियां, जैसे वहां का वस्त्र उद्योग, वहां का पहनावा, वहां का रहन सहन, वहां का खान पान और वहां का रसगोला, इन सब की चर्चा हम करेंगे अपने अगले कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम का आलेख तैयार किया था श्रीमती पूनम जायसवाल ने और स्वर थे प्रमोद शर्मा
1: और कंचन राजानी के।
3: श्रोताओं, अब हमें आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज, देश का चैनल देश के लिए।
4: न जी भर के देखा न कुछ।

0: नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नाइन्टी पॉइंट एट मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने आजादी के।

देशभक्ति गीतों का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं ये देशभक्ति रचना।

आजादी के इस कार्यक्रम में आज आपके साथ थी मैं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अब इजाजत दें इस कार्यक्रम से मुझे, नमस्कार। आप बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के

देश के वीर जवानों को समर्पित शौर स्मारक की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर संगीत संध्या का आयोजन। सुनिए मिलिट्री बैंड की सांगीतिक प्रस्तुति। इसके साथ ही आप देख सकते हैं शस्त्र प्रदर्शनी 14 अक्टूबर शाम 6 बजे शौर स्मारक अरेरा हिल्स भोपाल, स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठा आयोजन। आप सभी सादर आमंत्रित हैं।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत भारती।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती। भारत भारती, भारत भारती।

इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, मैं सुनीता सिंह। श्रोताओं, हमारे देश में संगीत की एक समृद्ध परंपरा रही है और संगीत दायरों को नहीं मानता। इतना बड़ा हमारा देश, अलग अलग बोली भाषा के लोग, अलग जाति धर्म के लोग, अलग रीति रिवाज को मानने वाले लोग, अलग जाति धर्म, अलग बोली भाषा और अलग रीति रिवाजों से उत्पन्न कितनी ही स्वर लहरियां संगीत की अलग अलग शैलियों के रूप में आज विख्यात हैं। ऐसी ही एक संगीत शैली है अभंग। आज भारत भारती कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं महाराष्ट्र की इसी संगीत परंपरा की वानगी। और विशेष बात ये कि इसे प्रस्तुत करने वाली दो कलाकार चेन्नई से संबद्ध हैं। जी हाँ, कर्नाटक शैली में पारंगत रंजनी और गायत्री। इनके युगल स्वरों में आइए सुनते हैं अभंग गायन।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रंजनी और गायत्री का अभंग गायन। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। बहुत जल्द भारत भारती के एक और अंक के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार, आप बने रहिएगा 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती।

देश के वीर जवानों को समर्पित शौर स्मारक की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर संगीत संध्या का आयोजन। सुनिए मिलिट्री बैंड की सांगीतिक प्रस्तुति। इसके साथ ही आप देख सकते हैं शस्त्र प्रदर्शनी 14 अक्टूबर शाम 6 बजे शौर स्मारक अरेरा हिल्स भोपाल, स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठा आयोजन। आप सभी सादर आमंत्रित हैं।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
3: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज सुनिए ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 41 वाचन। ऋषि हैं ग्रत्समत एवं भार्गव शौनक। देवता हैं वायु, इंद्रवायु, मित्रा वरुण, अश्विनी कुमार, इंद्र, विश्वेदवा, सरस्वती, धावा पृथ्वी एवं अग्नि। छंद है गायत्री, अनुष्टुप एवं बृहती।
4: वायो ये ते सहस्रिणो रथा सस्ते भिरा गहि नियुत्वान सोम पीतये। हे वायुदेव, आप अपने घोड़ों से युक्त हजारों रथों से सोमपान करने के लिए आए। नियुत्वान वायवा गह्ययम् शुक्रो अयामिते गन्तासि सुन्वतो गृहम्। याज्ञिकों के पास नियुत रथ में सवार होकर पहुँचने वाले हे वायुदेव, आपके निमित्त यह देदीप्यमान सोमरस तैयार किया गया है। इस हेतु हम आपका आवाहन करते हैं। शुक्रस्याद्य गवाशिर इंद्रवायु नियुत्वतः आयातम पिबतम नरा। हे नेतृत्व प्रदान करने वाले इंद्र और वायुदेवो, आप आज घोड़ों से युक्त होकर गौ का दूध मिला हुआ तेजस्वी सोमरस पीने के लिए आए और पान करें। अयम वाम मित्रा वरुणा सुतः सोम रिता वृधा ममे दिह श्रुतम हवम। यज्ञ को बढ़ाने वाले हे मित्र और वरुण देवो, उत्तम रीति से तैयार एवं शुद्ध किया गया यह सोमरस आपके निमित्त प्रस्तुत है। हमारी यह प्रार्थना सुने। राजाना वनभिद् द्रुहा ध्रुवे सदस्युत्तमे सहस्रस्थूण आसाते। आपस में कभी द्रोह न करने वाले हे तेजस्वी मित्र और वरुण देवो, हजार स्तंभों पर स्थित सशक्त श्रेष्ठ यज्ञ मंडप में आप विराजें। ता सम्राजा घृता सुति आदित्या दानुनस्पति सचेते अनवह्वरम। सम्राट रूप घृताहुति स्वीकार करने वाले दानशील आदिति पुत्र मित्र और वरुण देव, कुटिलता से रहित सरल हृदय वाले साधकों याजकों की ही सहायता करते हैं। गोमधु शु ना सत्याश्वा वद्या तमश्विना वर्ती रुद्रा नृपायम। हे अश्विनी कुमारो, हे सत्य सेवी रुद्र देवो, जिस सोमरस का पान यज्ञ में नेतृत्व प्रदान करने वाले लोग करेंगे, उस सोमरस को गौओं तथा अश्वों से युक्त रथ में आप भली भांति लाएं। नयत परो नांतरम आदधर्षद वृषण वसु दुःशंसो मर्त्यो रिपुः। हे धनवर्षक अश्विनी कुमारो, समीप में रहने वाले या दूर रहने वाले कटुभाषी शत्रु जिस धन को नहीं चुरा सकते उसे हमें प्रदान करें। ता न आ वोडहमश्विना रईम पशंग संदृशम धिष्ण्या वरिवोविदम। हे उत्तम स्तुति के योग्य अश्विनी कुमारो, आपके पास जो सुवर्ण युक्त नाना प्रकार का ऐश्वर्य है वह धन हमारे लिए ले आए। इंद्रो अंग महद भयमभि शदप च्युयवत स ही स्थिरो वचर्षिणि। युद्ध में स्थिर रहने वाले विश्वद्रष्टा इंद्रदेव महान पराभवकारी भय को शीघ्र ही दूर करते हैं। इंद्रश्च मृडयाति नो न नह पश्चद्दघं नशत भद्रं भवाति नह पुरः। यदि इंद्रदेव हमें सुख प्रदान करेंगे तो हमें पाप नष्ट नहीं कर सकता, वे हर प्रकार से हमारा कल्याण ही करेंगे।
3: अभी आप सुन रहे थे ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 41 से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए सुनिए कार्यक्रम भक्ति संगीत।

ध्यान बिना ईश्वर की अनुभूति नहीं होती। भगवान की पवित्र मंगलमयी कथा सुनने से श्रद्धा दृढ़ होती।

और सब घट व्यापक साइया अगम अपार अलेख। तो जो वह एक न जाने।

ईश्वर की पवित्र मंगलमयी कथा सुनने से श्रद्धा दृढ़ होती है। ध्यान बिना ईश्वर की अनुभूति नहीं होती।

ईश्वर के लिए एकांत में जो विलाप करता है उसे प्रभु किसी न किसी रूप में मिलते हैं। प्रभु से मिलने की वेदना होनी चाहिए।

ईश्वर के लिए एकांत में जो विलाप करता है उसे प्रभु किसी न किसी रूप में मिलते हैं। प्रभु से मिलने की वेदना होनी चाहिए।

परमात्मा को जो प्रसन्न कर सकता है वह संसार को भी प्रसन्न कर सकता है। प्रभु की कृपा होने पर संसार स्वयं अनुकूल हो जाता है।

इसी रचना के साथ आज का कार्यक्रम भक्ति संगीत पूरा होता है। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

0: वतन करा के श्रोताओं को सुधा अनुपम का नमस्कार।
1: ये वतन करा।
0: अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर से सब जग उपजा, कौन भला कौन गंदे। संसार में ऐसे लोग कम ही होते हैं जो ऊंच नीच जाति धर्म की सीमाएं लांघकर उस एक नूर एक ईश्वर एक पर ब्रह्म को समझ सकें। प्रयास तो बहुत लोग करते हैं लेकिन सब उसी ईश्वर की कल्पना को सत्य मान लेते हैं जो समाज में प्रचलित हो। स्वामी विवेकानंद के लिए ईश्वर का रूप निराकार पर ब्रह्म था। उनकी शिष्या भगिनी निवेदिता भी गुरु की सच्ची अनुयायी थी। 28 अक्टूबर 1867 को आयरलैंड में एक शिक्षक के यहाँ जन्मी मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल ने बचपन से ही धार्मिक मूल्यों की शिक्षा ग्रहण की थी। उन्हें पठन पाठन में गहरी रुचि थी। विद्यालय की शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने युवावस्था में विंबलडन में एक स्कूल की स्थापना की थी। सांसारिक परंपराएं निभाते हुए उनकी सगाई भी हुई लेकिन भगिनी निवेदिता बनना उनकी नियति थी। सगाई के कुछ दिनों के बाद ही उनके मंगेतर का असामयिक निधन हो गया और उनके मन में एक बेचैनी सी छा गई जिसे दूर करने के लिए उन्होंने विभिन्न धर्मों के बारे में पढ़ना शुरू किया। नवंबर 1895 के जाड़े में वे लंदन में अपने एक परिचित के यहाँ ठहरी हुई थी। एक दोपहर वे एक हिंदू सन्यासी का वेदांत पर आधारित व्याख्यान सुनने गई। संस्कृत मंत्रों का उच्चारण कर गूढ़ ज्ञान की बातें कहने वाला योगी गेरुए वस्त्र पहने भूमि पर बैठा था। यूं तो स्वाध्याय से मार्गरेट को पूर्व के धर्म और संस्कारों का ज्ञान हो गया था लेकिन उनके मन में समय समय पर कुछ शंकाएं और प्रश्न उठते थे। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के कई व्याख्यान सुने और अपने प्रश्नों का समाधान भी पाया। इसके बाद उनकी रुचि सनातन धर्म में गहरी हो गई और स्वामी विवेकानंद के प्रति उनकी असीम श्रद्धा का बीज रोपित हुआ। 1904 में मार्गरेट ने अपने एक मित्र को लिखे पत्र में कहा कि यदि वे स्वामी जी से नहीं मिलती तो उनका सारा जीवन निरुद्देश्य रह जाता। विवेकानंद को भी अपनी शिष्या में भारत का उज्ज्वल भविष्य नजर आया। सनातन धर्म और अपने गुरु के प्रति उनकी श्रद्धा के प्रति आश्वस्त होने पर विवेकानंद ने मार्गरेट को एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व सौंपा, भारतीय नारियों की दयनीय दशा को समुचित शिक्षा द्वारा सुधारने का। अपने गुरु के इस आग्रहयुक्त आदेश के परिपालन के लिए वे अपनी माँ मिट्टी और मुल्क सब कुछ छोड़कर 28 जनवरी 1898 को मोगबा

कुछ दिनों तक स्वामी जी ने मार्गरेट को स्वयं भारत और भारतीयता की शिक्षा दी और फिर 11 मार्च 1898 को कलकत्ता का परिचय इस नई विदेशी शिष्या से कराने के उद्देश्य से स्टार थिएटर में एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि इंग्लैंड ने हमें सुश्री मार्गरेट नोबल के रूप में एक उपहार दिया है। 25 मार्च 1898 को इंग्लैंड की मार्गरेट एक औपचारिक विधि करने के बाद आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर भगिनी निवेदिता बन गईं। ये नाम उनको स्वामी विवेकानंद ने दिया था, निवेदिता यानी कि ईश्वर को समर्पित। ब्रह्मचारिणी बनने वाली वो पहली विदेशी महिला थी। भारत को जानने की उत्सुकता ने उन्हें उनके गुरु की तरह ही यायावर बना दिया। उन्होंने स्वामी विवेकानंद, जोसेफिन मैकलॉड और सारा बुल के साथ भारत का भ्रमण किया। हिमालय यात्रा के दौरान उन्होंने अल्मोड़ा में ध्यान करना सीखा। स्वामी स्वरूपानंद से उन्होंने बांग्ला सीखनी शुरू की। निवेदिता ने अपने गुरु को बहुत निकट से देखा और उनके मूल्यों को आत्मसात किया। स्वामी विवेकानंद भी निवेदिता का हर पग पर मार्गदर्शन करते रहे। कोई आश्चर्य नहीं कि अपने गुरु की मृत्यु का पूर्वाभास उन्हें पहले ही हो गया था। निवेदिता एक सच्ची सेविका थी। भारतीय महिलाओं को शिक्षित करने के लिए निवेदिता एक विद्यालय खोलना चाहती थी, परंतु धन की कमी थी, इसलिए उन्होंने इससे निपटने के लिए इंग्लैंड और अमेरिका में कई व्याख्यान दिए और एकत्रित राशि से स्कूल की स्थापना की। उस दौर में महिलाओं को पारंपरिक नेपथ्य से निकालना आसान नहीं था। लड़कियों को शिक्षित नहीं किया जाता था, विदेशी शिक्षिका का विद्यालय तो दूर की बात थी। स्वामी विवेकानंद भी इस समस्या से अवगत थे। उन्होंने निवेदिता को आश्वस्त किया और अंततः 13 नवंबर 1898 को काली पूजा के दिन कलकत्ता के बाग बाजार में शारदा देवी द्वारा विद्यालय का उद्घाटन किया गया। परंतु समस्या पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। निवेदिता का उद्देश्य जितना ऊंचा था, प्रयास उतने ही कठिन। उनके घर घर जाकर महिलाओं और बालिकाओं को विद्यालय भेजने के आग्रह करने पर कई बार उन्हें पुरुषों द्वारा अपमानित भी होना पड़ा, लेकिन सेवा भाव असफल नहीं होता और धीरे धीरे उनके प्रयास सफल होने लगे। विधवाएं और प्रौढ़ महिलाएं उनकी विद्यार्थी बनी। उन्हें विद्यालय में सामान्य शिक्षा के अलावा मरीजों की सेवा और साफ सफाई की आधारभूत बातें भी सिखाई जाती थीं। विद्यालय का खर्च पूरा करने के लिए निवेदिता लेखन कार्य और लेक्चर्स के द्वारा राशि एकत्रित करती थीं। सन 1899 के दौरान जब कलकत्ता में प्लेग महामारी फैली, तब निवेदिता ने विद्यालय के कार्यों से थोड़ा विश्राम लेकर रोगियों की अथक सेवा की और युवाओं को सेवा कार्य के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने स्वयं सेवक बनकर शहर के कई इलाकों की गंदगी साफ की। पैसे की कमी दूर करने के लिए कई अंग्रेजी समाचार पत्रों में अपील की।

भगिनी निवेदिता के मित्रों में कई प्रसिद्ध व्यक्ति शुमार थे, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, जगदीश चंद्र बोस और अरविंद। जगदीश चंद्र बोस को उन्होंने उस समय प्रोत्साहित किया और उन्होंने तब वित्तीय सहायता दी जब उनकी खोज तारहीन रेडियो के आविष्कार को ब्रिटिश हुकूमत से ठंडी प्रतिक्रिया मिली। शायद कभी कभी उनका विदेशी मूल का होना लाभकारी सिद्ध हुआ, विशेषकर तब जब बात हिंदुस्तानी बनाम अंग्रेज की होती थी। लालन पालन अंग्रेजी में होने के कारण जहां उनमें विचारों की तर्कशीलता थी, वहीं भारतीयता आत्मसात करने के कारण वे बेहद संवेदनशील और धैर्यवान थीं। उन्होंने अंग्रेजों का भारतीयों के प्रति बर्बरतापूर्ण व्यवहार देखा और आंदोलनों में लोगों की सहायता की। 1905 के बंगाल विभाजन के दौरान उन्होंने अंग्रेजों के विरोध में आमजन की सहायता की, जिसके कारण उन्हें उनका कोपभाजन बनना पड़ा। अपने विद्यालय में उन्होंने वंदे मातरम के गायन को प्रोत्साहित किया। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि 1906 में सिर्फ कुछ पलों की मुलाकात में ही सुप्रसिद्ध तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती उनसे अत्यंत प्रभावित हुए। निवेदिता ने लेखन कार्य भी किए जिनमें अधिकतर उनके गुरु स्वामी विवेकानंद पर आधारित हैं। भगिनी निवेदिता जितना कुछ देने भारतवर्ष आई थीं, उससे कहीं अधिक दिया और किया भी। जिस शांति की खोज में उन्होंने सनातन धर्म अपनाया था, वो उन्हें मात्र 43 वर्ष की अल्पायु में प्राप्त हो गई। 13 अक्टूबर 1911 को दार्जिलिंग के रॉय वेला में गोधूली बेला में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका पूरा जीवन अनुकरणीय है। उन्होंने धर्म, भाषा, संस्कृति और देश की सीमाओं को तोड़कर मानवीय मूल्यों की सार्वभौमिकता को चरितार्थ किया। सचमुच सिस्टर निवेदिता पश्चिम से भारत को मिली एक अनुपम भेंट थी। जय हिंद।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 FM। कार्यक्रम है प्रकृति की पुकार। मैं हूँ धरा।
2: मैं हूँ बादल।

0: एक बीज था, गया बहुत ही गहराई में सोया। उसी बीज के अंतर में था नन्ना पौधा सोया। उस पौधे को मंद पवन ने आकर पास जगाया। नन्ही नन्ही बूंदों ने फिर उस पर जल बरसाया। सूरज बोला, प्यारे पौधे निंद्रा दूर भगाओ, अलसाई आंखें खोलो तुम, उठकर बाहर आओ। आंख खोलकर नन्हे पौधे ने ली जब अंगड़ाई, एक अनोखी नई शक्ति सी उसके तन में आई। नींद छोड़ आलस त्याग कर पौधा बाहर आया, बाहर का संसार बड़ा ही उसने अद्भुत पाया।
1: वाह वाह धरा वाह, कितनी सुंदर कविता है ये, हमने बचपन में शायद दूसरी या तीसरी कक्षा में पढ़ी थी।
0: हाँ हाँ बादल, बिल्कुल, लेकिन तब हमने इस कविता को सिर्फ पढ़ा था और रट लिया था, पर इसमें छिपी गूढ़ बातें अब समझ में आई हैं।
1: हाँ हाँ ये सही है कि प्रकृति से हमें वो सभी संसाधन मिलते हैं जो एक तरह से हमारी मदद करते हैं, ये हमें बढ़ने और विकसित करने में हमें सहयोग देते हैं।
0: यदि प्रकृति से बल्कि हमारी इस धरती से हमें वो सब मिलता है जो हमारे जीने के लिए आवश्यक है।
1: धरा, एक कहावत हम अक्सर कहते हैं, मिट्टी के मोल, लेकिन ये कहावत प्रकृति से मिले लाभ के लिए है, पर उस मिट्टी को चरितार्थ नहीं करती।
0: वो कैसे?
1: वो ऐसे कि अगर प्रकृति ने हमें भूमि आदि मिट्टी अगर नहीं दी होती तो हम अपना पेट कैसे भरते, और इस मिट्टी से उपजी हर फसल पृथ्वी के हर प्राणी के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी हमारे लिए।
0: पृथ्वी से अपनी फसल के लिए ऋग्वेद में कहा है, आपने भी जरूर पढ़ा होगा कि खेत में पैदा अनाज का क्रम से बंटवारा किया जाना चाहिए।
1: अगर बुरा ना मानो तो एक बात बताऊं?
0: हाँ हाँ जरूर, इसमें बुरा मानने की क्या बात है।
1: देखो, पहला हक जमीन में 4 उंगल भूमि गेहूं की बालों के नीचे पशुओं का, ठीक है। अब फसल की पहली बाली अग्नि की, और गेहूं के दानों को अलग करके मुट्ठी भर दाना पक्षियों का,
0: और इसके बाद आटा बनाने पर मुट्ठी भर आटा चींटियों का, चुटकी भर गुंधा हुआ आटा मछलियों का, फिर उस आटे की पहली रोटी गौ माता की,
1: और घर में तैयार खाने की पहली थाली घर के बुजुर्गों की, फिर अपनी थाली, और फिर आखिरी रोटी कुत्ते को दी जाए।
0: हाँ, हमारी संस्कृति हमें यही सिखाती है कि प्रकृति में अन्य जीवों और प्राणियों के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारी है।
1: हाँ, हमारी भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है जिसका उपयोग हम कभी वानिकी और खनन में करते हैं।
0: बिल्कुल, देखा जाए तो भूमि का उपयोग खेती, आवास, उद्योग, व्यापार, आना जाना, मनोरंजन सभी कामों में है। तो इतने कामों के इस संसाधन का उपयोग हम ऐसे करें कि इससे नुकसान ना हो।
1: हमें खेती के लिए मिट्टी की गुणवत्ता का ध्यान रखना होगा। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है।
0: हाँ, परंतु अब के समय में बढ़ती जनसंख्या के कारण मांगें बढ़ रही हैं, और इस कारण वन भूमि और खेती की भूमि का दोहन हो रहा है। इससे प्रकृति की दी हुई नेमत कम होती जा रही है।
1: बिल्कुल सही धरा, और इसके साथ ही कम स्थान में अधिक और जल्दी पैदावार के लिए रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का उपयोग किया जा रहा है। इससे हमारी भूमि की प्रकृति नष्ट हो रही है।
0: खनन इतना ज्यादा हो रहा है कि लगातार भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं। भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी और तूफान सक्रिय हो रहे हैं।
1: पहाड़ी स्थान में भूस्खलन आए दिन होते रहते हैं। ऐसा लंबे समय तक लगातार वर्षा होने के कारण होता है। ये एक ऐसी आपदा है जो चिंता का मुख्य विषय है।
0: भूमि के उपयोग में मानव द्वारा किया गया परिवर्तन, जैसे कृषि भूमि, वन भूमि का कम होना, शहरीकरण के लिए अधिक भूमि का उपयोग करना है, हमारी भूमि को प्राकृतिक परिदृश्य से बिगाड़ रहा है।
1: बिल्कुल सही धरा, और ये बदलाव पर्यावरण, समाज और हमारी अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा प्रभाव डालता है।
0: बिल्कुल, भूमि के उपयोग का परिवर्तन से हमारी जैव विविधता भी प्रभावित होती है, साथ ही मिट्टी की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
1: इसीलिए भूमि उपयोग परिवर्तन एक ऐसी खतरनाक प्रक्रिया है जिसके नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए ठोस कदम उठाने जरूरी हैं।
0: जी हाँ, देखा जाए तो मानव गतिविधियों के कारण उपजाऊ भूमि में मरुस्थलीकरण बढ़ता जा रहा है, और वनस्पति में कमी आती जा रही है।
1: हाँ, तापमान साल दर साल बढ़ता जा रहा है, वर्षा कम हो रही है, वनों की कटाई निरंतर जारी है, सिंचाई के तरीकों का गलत उपयोग, ऐसी गतिविधियाँ मरुस्थलीकरण को बढ़ा रही हैं।
0: शहरीकरण के कारण मिट्टी की उपजाऊ ऊपरी परत, जिसमें पौष्टिक व भरपूरता होती है, नष्ट होती जा रही है, भूमि बंजर हो रही है।
1: इसका परिणाम फसल का उत्पादन कम होने के कारण खाद्य पदार्थों में कमी होती है और किसान की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ये सभी एक बहुत ही गंभीर समस्या है।
0: इस समस्या से निपटने के लिए हम सभी की भागीदारी आवश्यक है। बेहतर सिंचाई तकनीक और जल संरक्षण के उपाय अपनाकर हम मरुस्थलीकरण को रोकने में मदद कर सकते हैं।
1: हम अपने कार्यकलापों में परिवर्तन कर इस सिकुड़ती भूमि को बचा सकते हैं। आज पूरा विश्व इस समस्या से जूझ रहा है।
0: ये एक ऐसी भौगोलिक घटना है जिसमें हमारी उपजाऊ भूमि क्षेत्रों में मरुस्थल ऐसी विशेषताएं विकसित हो रही हैं। इससे वहाँ के रहवासी घबरा कर पलायन भी कर रहे हैं।
1: हाँ, क्योंकि ऐसी स्थिति में जमीन की उत्पादन क्षमता तो कम होती ही है, साथ ही हमारी प्राकृतिक वनस्पतियाँ भी खत्म होती जाती हैं।
0: मरुस्थलीकरण ये न केवल मानवीय जीवन बल्कि वन्य जीव भी प्रभावित कर रहा है। भूमि के बंजर होने से कृषि भूमि क्षेत्र कम हो रहे हैं।
1: हाँ धरा, यदि इस पर काबू नहीं पाया गया तो भविष्य में खाद्यान्न संकट गंभीर रूप ले सकता है। इससे निपटने के लिए पूरे विश्व को एकजुट होने की आवश्यकता है।
0: जी हाँ, भूमि की कमी नदियों के कटाव से प्रभावित होती है, हवा से भी मिट्टी के कटाव पर असर होता है।
1: वनों की कटाई मरुस्थल बढ़ने का प्रमुख कारण है। बढ़ती जनसंख्या के कारण पेड़ पौधों और वनस्पतियों को काटा जा रहा है। इस कारण कमल जंगल छोटे होते जा रहे हैं और मरुस्थल का बढ़ावा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है।
0: और इससे बचने के लिए सबसे पहले वृक्षारोपण तेजी से बढ़ाना है और वनों की कटाई एकदम से रोक दी जानी चाहिए।
1: हाँ, और इसके साथ ही मरुस्थली क्षेत्र के अनुकूल पौधों को लगाया जाए, मिट्टी के कटाव को रोका जाए
0: और कृषि कार्यों के अत्यधिक रासायनिक खाद के प्रयोग को भी रोका जाए। सिंचाई में भी मरुस्थलीय क्षेत्र के अनुसार काम किया जाए।
1: इसके साथ खनन गतिविधियों को तुरंत आवश्यकता से अधिक न किया जाए।
0: बिल्कुल, इस समस्या पर सबसे जल्दी नियंत्रण तभी हो सकता है जब वृक्षारोपण की दर को तेजी से बढ़ाया जाए, तो इस समस्या पर काबू पाया जा सकता है।
1: परंतु देखने में आता है कि संसाधनों की कमी हम मनुष्यों को प्रतिस्पर्धा में घसीटती है और जब ये प्रतिस्पर्धा बढ़ती है तो संसाधन अपने आप ही कम से कमतर होते जाते हैं।
0: किसी भी संसाधन का उपयोग हमारे हित में हो या आर्थिक क्रिया के रूप में, जिससे हमारी आवश्यकता की पूर्ति संभव हो, पर इसकी उपयोगिता हमारे वास्तविक उपयोग से जुड़ी हुई होना चाहिए।
1: नहीं तो प्राकृतिक आपदाएं जैसे सूखा, अकाल और बाढ़ का प्रकोप बना ही रहेगा। इससे भूमि का दुरुपयोग या वैज्ञानिक तरीकों की अनदेखी विनाश का आमंत्रण है।
0: हाँ, पर ये वातावरण तहरीली की समस्या का अभी भी समाधान हो सकता है, लेकिन तब तक बिना समय गवाए संसाधनों को रोककर हम व्यवस्थित होकर अपनी दिनचर्या और अन्य कार्यों को रोकने में कड़े अनुशासन को अपनाएं।
1: पानी की एक एक बूंद को सुरक्षित कर उसका सही उपयोग करें। वन क्षेत्र जितने भी बचे हैं उन्हें सुरक्षित कर लुप्त वनस्पति एवं जीव जंतुओं को संरक्षित करने में सहायता करें।
0: ईंधन की आवश्यकता होने पर अंधाधुंध वनों की कटाई ना करें, उन्हें नष्ट ना करें, पौधारोपण को बढ़ावा दें, बंजर भूमि है उसे ठीक कर पौधे लगाएं, सड़क या नदी तालाब के किनारों पर पेड़ लगाएं।
1: बिल्कुल सही कहा धरा, सौर ऊर्जा का विकास कर ऊर्जा की समस्या भी हल की जा सकती है। इससे काफी हद तक लकड़ी का उपयोग कम होगा और ये खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लाभदायक रहेगा।
0: इस तरह स्वयं तो पर्यावरण के प्रति जागरूक रहें, साथ ही औरों को भी ऐसा ही करने को कहें और इसके महत्व को समझाएं। इन बातों पर अमल करके ही हम पर्यावरण की सुरक्षा कर पाएंगे।
1: अगर अभी भी घर नहीं चेते तो पर्यावरण के गिरते स्तर का परिणाम हमें जल्दी ही और अधिक विभिन्न रूपों में भुगतना होगा।
0: हाँ, और यदि ऐसा हुआ तो इससे हम मानव ही नहीं बल्कि पूरी प्रकृति की समस्त क्रियाएं अपनी विपरीत दिशा की ओर न सिर्फ कदम उठा रही हैं, बल्कि आगे और तेजी से बढ़ती जाएंगी।
1: हाँ, प्राकृतिक आपदाएं तभी आती हैं जब प्रकृति के प्रतिकूल दशा होती है। जैसे जो मिट्टी या भूमि उर्वरा होती है वो उत्पादन करना बंद कर देती है।
0: जो वर्षा समय पर होती है वो कम या अधिक होने लगती है, या फिर समय से पहले या समय निकलने के बाद भी नहीं होती। यानी दोनों ही सूरत में हमें नुकसान ही उठाना पड़ता है।
1: पृथ्वी का तापमान भी सामान्य ना होकर कम या ज्यादा हो जाता है, और ये सभी प्रकृति की गतियाँ हमारे जीवन को खतरे में डाल रही हैं।
0: हाँ, और पृथ्वी का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। ऐसे में हम अपनी आवश्यक संसाधनों को भी नहीं जुटा पाएंगे और अनेक विपदाएं जन्म लेती रहेंगी।
1: पर्यावरण में आए इस असंतुलन को पुनः नियंत्रण में करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हम प्रकृति के प्रदत्त संसाधनों का उपयोग इतना अधिक कर रहे हैं, वे सब समाप्ति की ओर जा रहे हैं।
0: यदि हम इनका इस तरह से दोहन करते रहे तो ये प्राकृतिक संकट स्वयं नहीं आता, बल्कि हम मनुष्य अपने क्रियाकलापों के द्वारा इसे आमंत्रण दे रहे हैं।
1: हाँ, अपने विकास के लिए हम प्रकृति का खुलकर उपयोग करते हैं, लेकिन अब हम इतना उपयोग कर रहे हैं कि संसाधन समाप्ति की ओर हैं। हमने ही इनका शोषण किया है और हम ही प्रकृति में इस असंतुलन के उत्तरदायी हैं।
0: हमें अपने कार्यकलापों में परिवर्तन लाकर इस सिकुड़ती भूमि को बचाना है। आज पूरा विश्व इस समस्या से जूझ रहा है। सूखा पड़ने की स्थिति तो और भी भयानक होती है। गांव की तस्वीर बड़ी ही हृदय विदारक हो जाती है। किसानों के पास कोई काम नहीं होता।
1: घर के पालतू जानवरों के भोजन की व्यवस्था न होने के कारण या तो वे खत्म हो जाते हैं या फिर उन्हें जंगलों में छोड़ दिया जाता है, और तब लोग शहर की ओर रुख कर लेते हैं।
0: निसंदेह सूखा और अकाल एक हृदय विदारक और गंभीर संकट है। इस तरह बाढ़ भी एक ऐसी ही प्राकृतिक विपदा है जिससे बचना बड़ा ही मुश्किल काम है।
1: बिल्कुल सही कहा धरा। बाढ़ तो केवल प्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रित कर ही संभव है। इसके लिए बांधों का आवश्यकता अनुसार निर्माण बहुत जरूरी है।
0: इसी तरह भूस्खलन को भी प्राकृतिक विपदा ही माना जाता है, परंतु ये हम मानवों द्वारा किए गए खनन और वृक्षों की कटाई के कारण ही है।
1: और भूस्खलन की आए दिन होने वाली घटनाओं के कारण जिन स्थानों की अर्थव्यवस्था केवल पर्यटक पर ही टिकी होती है, वो भी अब बहुत डगमगाने लगी है।
0: पर्यावरण के प्रभाव में मिट्टी का भी प्रमुख रूप से योगदान होता है। इसे अगर यूं कहा जाए कि मिट्टी परिस्थिति की जननी होती है तो गलत ना होगा, क्योंकि जो भी व्यवस्था स्थापित होती है उसका आधार मिट्टी तो होती ही है बादल।
1: हाँ धरा, जीव जंतु पौधे वनस्पति और मानव सभी मिट्टी से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं। यहाँ तक कि प्राकृतिक दिशाएं भी मिट्टी से ही संबंधित होती हैं। ये मिट्टी भी एक प्राकृतिक तत्व है।
0: मिट्टी जब अपने पोषक तत्व भौतिकीय बनावट और रासायनिक संरचना खाने लगती है तो मिट्टी का विघटन प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार भूमि का क्षय होता है।
1: ईश्वर ने हमें सब कुछ बहुत सुंदरता से देखने के लिए बनाया है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि इस प्रकृति के रिश्ते के साथ हमारी भी कोई जिम्मेदारी है।
0: जी हाँ, अगर हमें स्वस्थ और चिंता मुक्त बढ़ना है तो अपने स्वार्थी और गलत कामों को रोकते हुए अपने ग्रह पृथ्वी को, अपनी धरती की सुंदरता को बचाना होगा और इसकी बिगड़ती प्रकृति को बेहतर करना होगा।
1: बिल्कुल, क्योंकि प्रकृति के असली उपयोगता तो हम ही हैं, तो इसे बचाना भी होगा। वो कहते हैं ना, जितना गहरा जोते खेत, बीज पड़े फल उतने देत।
0: यानी कि जितना गहरा हम खेत जोतेंगे और तब उसमें बीज डालेंगे तो फसल उतनी ही अच्छी होगी। मित्रों, आज हमने ढेर सारी बातें की प्रकृति के संरक्षण, मिट्टी के बचाव के बारे में, और निश्चित तौर पर आपको हमारी ये बातें बहुत ही काम की लगी होंगी। लेकिन अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का।
1: तो दोस्तों, मैं था आपके साथ बादल,
0: और मैं धरा।
1: इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़,
2: ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, और लेखन प्रमिला मुंशी दिवाकर का।
1: मैं था आपके साथ दीपक निमा,
0: और मैं थी आपके साथ वर्षा सिंह, और आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रकृति की पुकार। तो अब चलते हैं, आप सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 FM।
3: नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई। रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
1: तो सुनते रहिए रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।
2: पर

नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन। जो

0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: देश के वीर जवानों को समर्पित शौर्य स्मारक की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर संगीत संध्या का आयोजन। सुनिए मिलिट्री बैंड की सांगीतिक प्रस्तुति। इसके साथ ही आप देख सकते हैं शस्त्र प्रदर्शनी 14 अक्टूबर शाम 6 बजे शौर्य स्मारक अरेरा हिल्स भोपाल, स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठा आयोजन। आप सभी सादर आमंत्रित हैं।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार, 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन यौगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, जीवन से विरक्ति का अर्थ जीवन से दूर हो जाना नहीं, बल्कि जीवन के बीच रहकर भी उसके मोह से मुक्त हो जाना है। जब मन की पकड़ ढीली पड़ती है, इच्छाओं का शोर थमता है और भीतर वैराग्य, विवेक, शम और संतोष जैसे गुण आकार लेने लगते हैं, तब मुक्ति किसी दूर के लोक की बात नहीं रह जाती, वो इसी जीवन में, इसी चेतना के उजले आकाश में उतरने लगती है। योग वासिष्ठ हमें इसी जीवन मुक्ति की राह दिखाता है, जहां संसार वही रहता है लेकिन उसे देखने। योग संवाद में समझें कि वैराग्य आदि सद्गुण किस प्रकार मनुष्य को जीवित रहते ही मुक्ति के अनुभव तक ले जाते हैं। आज इस बातचीत के लिए हमेशा की तरह हमारे बीच उपस्थित हैं योग।

0: जी,
1: तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि जीवन मुक्ति के लिए किस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए।
0: देखिए, जीवन मुक्ति के लिए जो बुद्धि होनी चाहिए वो रजोगुण और तमोगुण से रहित बुद्धि हो
1: जी,
0: और सतोगुण का अनुसरण करने वाली हो, तब जाकर के जीवन मुक्ति की तरफ व्यक्ति आगे बढ़ता है। वशिष्ठ जी कहते हैं, राघव तुम्हारा मन उत्तम गुणों से परिपूर्ण है, तुम में योग्य शिष्य के गुण हैं और तुम प्रश्नों को करने का सामर्थ्य रखते हो
1: जी।
0: और जो मैं समझाता हूँ उसे भली भांति समझते भी हो, इसलिए मैं तुम्हें ये जीवन मुक्ति का जो ज्ञान है ये देने के लिए उद्यत हुआ हूँ।
1: जी जी।
0: तो कहते हैं कि अब जो तुम्हारी बुद्धि रजोगुण तमोगुण से रहित है उसको शुद्ध सत्वगुण का अनुसरण करने की तरफ अग्रसर करो, आत्मा में स्थापित करो और ज्ञानोपदेश श्रवण करने के लिए तैयार हो जाओ। प्रश्नकर्ता में जितने गुण चाहिए वे सभी गुण तुम में वर्तमान हैं, तो तुम इस योग्य हो कि तुम इस विषय को समझ सकते हो। और जैसे चंद्रमा की किरणों के संपर्क से चंद्रकांत मणि में आर्द्रता आती है, उसी तरह तुम भी ज्ञान के संसर्ग से उत्पन्न हुए वैराग्य को प्राप्त हुए हो। तुम सर्वदा शुद्ध हो, तुम्हारा बाल्यावस्था से ही शुद्ध विस्तृत तथा अविच्छिन्न सद्गुण के साथ संबंध चला आ रहा है, ठीक उसी तरह जैसे कमल का अपने विस्तार वाले निर्मल और दीर्घ तंतुओं से लगाव रहता है। इसलिए तुम ही इस कथा को सुनने के योग्य अधिकारी हो।
1: तो बहुत ही सुंदर उन्होंने एक व्याख्या दी कि किस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए, तो रजोगुण तमोगुण से
0: रहित
1: होनी चाहिए। अच्छा, जो कामनाएं हैं वही हमें बांधती हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो दृश्य जगत है इसकी कामनाओं से मुक्ति किस तरह से मिल सकती है।
0: बहुत सुंदर कहा आपने। योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने
1: जी
0: दृष्टा और दृश्य को लेकर के सूत्र की चर्चा की है, जिसमें कहते हैं कि जब चित्त वृत्तियों का निरोध होता है तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित होता है। और देखें तो दृष्टा का भी जो उपाधि मिला है वो दृश्य के संदर्भ से मिला है।
1: जी जी।
0: तो आपने सुंदर सवाल किया कि दृश्य जगत की कामनाओं से मुक्ति कैसे मिलती है। अब दृश्य जगत और अदृश्य जगत में भी हम दृश्य को ही स्थापित करते हैं, जैसे हम स्वर्ग की बात करें, नरक की बात करें,
1: जी, जी, जी।
0: जिसके द्वारा हम धर्म की नीतियों का अनुशासन लागू करना चाहते हैं, तो उसमें आप देखें तो वहां पर भी दृश्यों की ही कामना है। जैसे यहाँ के दृश्य की बात हम करते हैं, वहां भी दृश्य हमने स्थापित किए हैं।
1: जी, जी।
0: लेकिन यहाँ पर बात है कि मोक्ष कथा एक ऐसी कथा है जो दृश्य जगत से मुक्त हुए बिना आप उस मोक्ष कथा को न तो समझ पाएंगे न सुनने के अधिकारी हैं। तो ऐसे में ये कह रहे हैं वशिष्ठ जी कि अब मैं इस मोक्ष कथा का वर्णन करूंगा, तुम सावधान होकर इसे सुनो। यह कथा उस परम पद से संबंध रखने वाली है जिसका साक्षात्कार हो जाने पर जितने लौकिक कार्य और जितनी लौकिक दृष्टियां हैं वे सब के सब पूर्णतया शांत हो जाती हैं।
1: अच्छा,
0: तो आप देखें तो जो मोक्ष कथा है वो दृश्य जगत यानी लौकिक दृष्टियों को शांत करने का मूल कारण है, और बिना लौकिक कामनाओं के शांति के आप न मोक्ष कथा को समझ पाएंगे और न मोक्ष कथा सुनने के अधिकारी
1: हो पाएंगे। जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने मोक्ष कथा की बात की जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे सुनने वालों को एक बार फिर, हालांकि पहले चर्चा की हमने, तो मोक्ष कथा के विषय में बताएं।
0: मोक्ष कथा से परम पद का संबंध है। परम पद मतलब जैसे आप अपने स्वरूप का साक्षात्कार कर सकें, आपको अपने ब्राह्मी स्थिति का पता चले, जो ब्रह्म तत्व जिसकी वजह से ये सारा संसार विस्तार लिए हुए है उसको आप जान सकें, और इस मोक्ष कथा से लौकिक दृष्टियां पूर्णतया शांत हो जाती हैं। यानी संसार में जो कुछ भी हम दृश्य रूप में देखते हैं और उनके प्रति हमारे चित्त में आकर्षण और विकर्षण होता है तो ये पूरी तरह से शांत हो जाता है। तो एक तरह से कह सकते हैं ये शांति की कथा है कि जहां पर दृश्य जगत से उत्पन्न होने वाला कुतूहल या फिर द्वंद शांत हो जाए, तो उसको कहा गया, इन्होंने कहा कि वो मोक्ष कथा है।
1: अच्छा शशिकांत जी, यहाँ बीच में जब मैं देख रही थी योग वासिष्ठ, तो गारुड़ मंत्र की भी चर्चा हुई है, तो ये क्या मंत्र है?
0: इसको कहते हैं वशिष्ठ जी, श्री राम संसार रूपी विष के आवेश से उत्पन्न हुई जो विषूचिका है वो बड़ी दुस्सह होती है, तो विष निवारक जो गारुड़ मंत्र है यही उसका मूल नाश करता है
1: जी।
0: तो ऐसे में ये गारुड़ मंत्र वही परमार्थ ज्ञान है जिसके बोध से ब्रह्म और जीव के बीच की एकात्मता का बोध होता है
1: जी।
0: यानी जीव और ब्रह्म के बीच जो अविद्या के नाते आवरण और विक्षेप हो रहा है, ये विक्षेप पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और जीव अविद्या के आवरण से मुक्त होकर अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो ये गारुड़ मंत्र ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति है, जिसमें सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः की बात है कि आप उस जो ताप त्रय है, तीन ताप, आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक, इन तीनों तापों से जीव मुक्त हो जाता है, क्योंकि तीनों तापों का कारण जो है वो अविद्या है, अज्ञान है। तो अज्ञान का जब आवरण हटता है तो जीव और ब्रह्म के एकात्म बोध की अनुभूति होती है और ये अनुभूति कराने वाला गारुड़ मंत्र है।
1: अच्छा, एक प्रश्न मेरे मन में और है कि संताप से रहित होने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए?
0: संताप से रहित होने के लिए मनुष्य को शास्त्र चिंतन करना चाहिए, साधु संगत में रहकर। शास्त्र चिंतन करने से इसी जन्म में संपूर्ण दुखों का समूल नष्ट होता है
1: जी।
0: विवेकशील सत्पुरुषों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। जिस विवेकी पुरुष को सम्यक दृष्टि उपलब्ध हो चुकी है, वह पुरानी केचुली का त्याग करके संताप रहित हुए सर्प की भांति मानसिक व्यथाओं से परिपूर्ण इस संसार के अनुराग का परित्याग कर संताप रहित हो जाता है। यानी संताप रहित होने के लिए सम्यक दृष्टि की आवश्यकता है और जिसकी दृष्टि सम्यक होगी उसका अंतःकरण शीतल होगा, उसमें ताप नहीं होगा। नहीं तो सामान्यतया देखें तो सामान्य लोगों का अंतःकरण तीन तापों से जल रहा है ना, चाहे वो ताप आधिदैविक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे आधिभौतिक हो। तो ऐसे में अंतःकरण की शीतलता का मूल कारण सम्यक दृष्टि है और उस दृष्टि के द्वारा हम अपने शाश्वत सुख को अनुभव कर सकते हैं।
1: जी जी जी। तो मेरे मन में एक प्रश्न आता है कि जो दुख है इसका मूल कारण है क्या?
0: दुख का मूल कारण है तृष्णा। ये बहुत सुंदर सवाल आपने किया कि तृष्णा के संबंध में भर्तृहरि जी भी कहते हैं, तृष्णा न जीर्णा वैमेव जीर्णा। तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती, वो लगातार बढ़ती रहती है। तो कहते हैं वशिष्ठ जी राम से, तृष्णा तुम्हें जर्जर कर देती है, अधिक क्या। संसार में ऐसा कोई दुख नहीं है जो संसारी मनुष्य को तृष्णा से प्राप्त न होता हो। यानी संपूर्ण दुखों को उत्पन्न करने वाली तृष्णा है, और जबकि संसार में आप देखें तो तृष्णा बढ़ती ही है, न कि कभी शांत होती है। तो वो कह रहे हैं कि संपूर्ण दुखों को उत्पन्न करने वाली ये तृष्णा है, और तृष्णा विषय भोग रूपिणी विसूचिका की दुष्परिणाम वाली है। यह नरक नगर रूप शरीर समुदाय के साथ अनुराग उत्पन्न करने वाली है। तृष्णा से ही शरीर में अनुराग उत्पन्न होता है और शरीर को नरक नगर की भांति कहा गया है कि जैसे
1: नरक नगर
0: यानी शरीर में जो देहात्म भाव है ये व्यक्ति को नारकीय जीवन जीने के लिए विवश करता है। और आप देखें तो गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर पंक्ति में कहा भी है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये नरक के रास्ते हैं और ये सारा शरीर से जन्म लेता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि शरीर नरक नगर की तरह है कि जहां पर कामनाएं होंगी, लोभ भी होगा, क्रोध भी होगा, मोह भी होगा। तो ऐसे में इसका मूल कारण है वो तृष्णा है और यही सारे दुखों को जन्म देती है।
1: तृष्णा है जो वो सभी दुखों का मूल कारण है जिससे बचना आवश्यक है। अच्छा, देहाभिमान जो है उसको नष्ट करने का क्या उपाय है?
0: देहाभिमान को नष्ट करने के लिए वशिष्ठ जी कहते हैं कि सत्पुरुषों के साथ शास्त्र चिंतन करने से इस देहाभिमान को नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि सत्पुरुषों को तत्व का ज्ञान हो जाने से सर्वव्यापक आत्म स्वरूप विदित हो जाता है
1: जी।
0: वह शुद्ध बुद्धि द्वारा परब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है और अज्ञान रूपी घने बादल के विलीन हो जाने पर उसके मोह का विनाश हो जाता है। फिर तो उसके लिए इस जगत में विचरण करना रमणीय हो जाता है, अर्थात वह इस जगत में जीवन मुक्त के भांति विचरण करता है
1: जी जी।
0: क्योंकि उसके चित्त से अज्ञान रूपी बादल छट गए हैं, अर्थात जो अविद्या का आवरण था वह आवरण हट गया है और वह अविद्या के आवरण के हट जाने से जो है वो जीवन मुक्त हो चुका है। तो जीवन मुक्त की भांति इस जगत में वो विचरण कर सकता है, उसका विचरण रमणीय होगा, जगत में उसे दुख की अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि दुख का मूल कारण अज्ञान है और अज्ञान का आवरण हटते ही जीव और ब्रह्म के बीच का भेद भी मिट जाता है, यानी वो पूरी तरीके से अद्वैत भाव में प्रतिष्ठित हो जाता है
1: जी जी। मतलब जो सत्पुरुष है उनकी संगत और शास्त्रों का साथ,
0: उनकी संगति में शास्त्रों का चिंतन। अच्छा। कारण क्या है कि देखिए, सत्पुरुषों के जीवन में शास्त्र सिर्फ ज्ञान का विषय नहीं होता, वो उनके व्यवहार में भी परिलक्षित होता है। वो संसार की अनुकूलता और प्रतिकूलता में अपने व्यवहार को सम रख पाते हैं, यानी योग के अनुशासन का वो पालन करते हैं। तो जब ऐसे व्यक्ति की सन्निधि में आप जाते हैं तो व्यक्ति का जो व्यवहार है वो व्यवहार बहुत अधिक सिखाता है। मैं तो ये कहना भी चाहूंगा अपने श्रोताओं से कि हम अपने बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, लेकिन बच्चे हमारी अच्छी बातें क्यों नहीं सीखते? क्योंकि वो अच्छी बातें हमारे व्यवहार में परिलक्षित नहीं होती। तो सत्संग और सत्पुरुष जो हैं वो उनको अपने व्यवहार में शामिल किए रहते हैं, इस नाते उनकी बातें प्रभावशाली होती हैं, क्योंकि व्यक्ति उसे व्यवहार में देखता है।
1: जी जी, मतलब जो चीजें शास्त्र से वो पढ़ रहे हैं उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण वो देख रहे होते हैं,
0: देख रहे
1: तो
0: होते
1: उसका
0: हैं।
1: प्रभाव होता है।
0: आपने सुना भी होगा कि एक महात्मा के पास एक महिला अपने बच्चे को लेके जाती है और कहती है कि बड़ा ये गुड़ खाता है, आप इसे मना कर दें। तो उन्होंने कहा कि 7 दिन बाद लेके आना। तो 7 दिन बाद जब लेके गई वो, तो उन्होंने कहा कि बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए। तो उन्होंने कहा ये बात तो आप पहले दिन भी कह सकते थे। तो कहा पहले दिन मैं खाता था गुड़, और 7 दिन पहले मैंने गुड़ नहीं खा करके ये कहने के लिए अधिकृत हुआ कि मैं इसे कह सकूं, तब ये मेरा सत्य बना। सत्य का मतलब ये नहीं होता कि सत्य दूसरों के उपदेश के लिए है। सत्य को सबसे पहले आप धारण करिए, तब आपके द्वारा दिया गया सत्य ज्ञान किसी के धारण योग्य होगा।
1: बिल्कुल, बहुत सुंदर बात जी। अच्छा शशिकांत जी, जो आत्मज्ञानी पुरुष है वो संसार में कैसे रहते हैं, कैसा व्यवहार होता है उनका?
0: ये बड़ा सुंदर आपने सवाल किया। ये सवाल अर्जुन ने भी भगवान कृष्ण से किया है, स्थिति प्रज्ञस्य क्या भाषा समाधिस्थस्य केशवः, कि कैसे वो रहता है। तो इसको वशिष्ठ जी बड़े सुंदर तरीके से कहते हैं, श्री राम जिन्हें आत्मस्वरूप का ज्ञान हो गया है, ऐसे उत्तम बुद्ध संपन्न महापुरुष इस संसार में ऐसे रहते हैं कि उन्हें जब न तो शोक होता है, न कामना होती है, और न वे शुभ और अशुभ की याचना ही करते हैं। वे इस संसार में सब कुछ करते हुए भी अकर्ता के समान रहते हैं। अब संसार का आदमी यहाँ आप देखें तो हर चीज में अपने कर्तापन को जोड़ लेता है, वो अकर्ता की भांति संसार के सारे व्यवहार करते हैं, लेकिन उसका कर्तापन अपने अंदर चिपकने नहीं देते, और कर्तापन के न स्वीकार करने से उस प्रभाव से वो अपने आप को वंचित रख पाते हैं, और वे हे और उपादेय के पक्षपात से रहित होते हैं। संसार का आदमी हे उपादेय के पक्षपात से युक्त होकर के कार्य करता है। हे का तात्पर्य है जो नहीं करने योग्य है, अर्थात त्यागने योग्य है, और उपादेय से तात्पर्य है जो करने योग्य है, अर्थात पक्षपात से रहित होकर के आत्मा में स्थित रहते हैं, पवित्रता से रहते हैं, और सत शास्त्रों में प्रतिपादित स्वच्छ कर्म करते हुए सन्मार्ग पर चलते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो आत्मस्वरूप का जिन्हें ज्ञान हो गया है। अन्य लोगों की दृष्टि में वे आते जाते हैं, कर्म करते हैं और बोलते हैं, परंतु वास्तव में न तो आते जाते हैं और न ही वे बोलते ही हैं, क्योंकि परमानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हुआ पुरुष न तो इंद्रजाल रूपी माइक कार्य करता है और न सांसारिक वासनाओं के पीछे ही दौड़ता है। वह बालकों की सी भ्रममूलक चपलता का परित्याग करके पूर्व कथित परमात्मा के स्वरूप में ही सदा विराजमान रहता है। ये आत्मस्थ पुरुष जो हैं वो उन लोगों का संसार में जीने का ढंग है।
1: जी जी। अच्छा शशिकांत जी, एक बात मेरे मन में आ रही है कि इस संसार में हर मनुष्य किसी तलाश में है,
0: जी
1: है ना, एक खोज के पीछे है, सुबह से शाम इसी प्रयास में जाता है, एक खोज की तरफ वो चलता है, लेकिन मनुष्य को दरअसल संसार में ढूंढना क्या चाहिए?
0: मनुष्य को चाहिए कि जीवन पर्यंत आत्मा की खोज करे, उसी की उपासना करे और उसी का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करे, क्योंकि जीवन में आत्म अन्वेषण एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अतिरिक्त उसके लिए और कोई कर्तव्य करना शेष नहीं है। जिस पुरुष को अपने अनुभव, शास्त्र वचन और गुरु के उपदेश की एक वाक्यता का निश्चय हो गया है, वह निरंतर किए हुए उपयुक्त अभ्यास के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। आत्मा की खोज से तात्पर्य है परमात्मा के साक्षात्कार करने से, क्योंकि आत्मा परमात्मा में भेद नहीं है।
1: जी जी
0: जी।
1: अच्छा ये बताएं कि जीवन में सबसे अधिक कष्टकारी क्या है?
0: जीवन में सबसे अधिक कष्टकारी कहा गया है आत्म ज्ञान के अतिरिक्त अन्य किसी ज्ञान के चक्कर में पड़ना, आत्म अनुसंधान के बजाय किसी और चीज के अनुसंधान में लगना, इसको बहुत सार्थक नहीं कहा गया। तो कहते हैं कि वो लोग जो ये करते हैं, संसार में कुछ भी करके आप संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा अपने अनुभव की तरफ ध्यान दें तो हमें ये पता चलेगा कि संसार के विभिन्न विषयों को पाने के बाद भी हमारी पाने की अभिलाषा निरंतर बनी रही या बढ़ती रही। इसीलिए कहा गया कि तृष्णा कभी शांत नहीं होती, तृष्णा निरंतर बढ़ती है और यही समस्त दुखों को उत्पन्न करने वाली भी है। और कहा तो यहां तक जाता है कि तृष्णा की वजह से जन्म आयु और भोग की प्राप्ति होती है, यानी जो जीव इस संसार में शरीर को प्राप्त करता है या फिर जिस आयु को भोगता है उसके पीछे मूल कारण तृष्णा है, क्योंकि कोई तृष्णा आपकी शेष रह गई है जिसकी वजह से आपने ये शरीर धारण किया है और फिर इस शरीर के द्वारा आप फिर उसी भोगों के भवचक्र में फंसे हुए हैं।
1: जी जी, तो बहुत ही सुंदर बात आपने कही कि कोई तृष्णा अधूरी रह गई है, है ना। अच्छा, सांसारिक सुखों में हम तृप्ति ढूंढते हैं, हर इंसान इसीलिए सुख की कामना करता है। तो जो लोग सांसारिक सुखों में तृप्ति ढूंढते हैं उनके लिए वशिष्ठ जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, वो क्या है?
0: सांसारिक सुखों में तृप्ति ढूंढने वाले को वशिष्ठ जी कहते हैं कि उनको अंधे मेढक की भांति समझो। जो दुरात्मा पुरुष राज्य आदि जागतिक सुखों के उपलब्ध होने पर उनके उत्तम भोगों के आस्वादन मात्र से ही तृप्त बने रहते हैं तो उन्हें अंधा मेढक समझो। अंधे मेढक पर मुझे याद आता है उपनिषद की एक कथा कही जाती है कि जैसे सांप को भी काल के रूप में देखा जाता है, तो कहते हैं कि जैसे एक मेढक को एक सांप ने पकड़ रखा है और वो मेढक अपनी मृत्यु का ख्याल न करके लगातार दूसरे कीड़े को खाने के लिए उद्यत है।
1: जी,
0: तो ऐसे ही जो जीव है अंधे मेढक की भांति है, जो ये खुद नहीं सोच पा रहा है कि वो संसार में अपने जीवन को नष्ट कर रहा है, अबलो नसानी अबना नसई हो, तो इतने अभ्यासों में हम अपने आप को नष्ट ही कर रहे हैं। जो भर्तृहरि जी कहते भी हैं कि भोगों ने हमको नहीं भोगा, भोगम न भुक्ता वय में उभुक्ता, भोगों ने हमें ही भोगा, हम भोगों को नहीं भोग पाए। तो इस तरीके से संसार में व्यक्ति अपनी आयु क्षीण करता है, जबकि कबीरदास जी कहते हैं कि तोरा हीरा जैसा श्वासा बातों में बीता जाए, यानी एक एक श्वास हीरे से अधिक मूल्यवान है, क्योंकि जो सांस आप ले चुके वो फिर दोबारा मिलने वाली नहीं है, सांसें गिनी हुई मिलती हैं, ऐसा संत लोग कहते हैं। ये एक तरह से सावधान करने का संकेत है कि आप अपने हर श्वासों के द्वारा अपने सत्य की स्मृति को बनाए रखें, क्योंकि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथें गावा। तो अगर मनुष्य का तन बड़े भाग्य का विषय है जिसको देवता भी पाने के लिए तरसते हैं, तो वो सांसारिक विषयों का भोग करने के लिए भाग्य का विषय नहीं है, तो दुर्भाग्य हुआ, क्योंकि बाकी सांसारिक विषयों का भोग तो हर जीव कर रहा है। तो ऐसे में मनुष्य भी अन्य जीवों की भांति अगर आहार निद्रा और संतानोत्पत्ति करना अपने जीवन का धर्म समझ ले, तो फिर मैं समझता हूँ कि मनुष्य का तन पाना भाग्य का विषय कैसे हो गया?
1: कैसे होगा,
0: है ना। तो भाग्य तो तब है कि मनुष्य अपना आत्म कल्याण करे, आत्मचिंतन करे और उस परम सत्य का साक्षात्कार करे जिसके साक्षात्कार के लिए ये तन मिला हुआ है।
1: बिल्कुल
0: जी,
1: तो बहुत ही सुंदर चर्चा रही आज की शशिकांत जी, आज आप हमारे बीच उपस्थित हुए और बहुत ही विस्तार के साथ वैराग्य आदि गुणों से जीवन मुक्ति विषय पर आपने जानकारी दी। आपका बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: तो श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में आज हमने चर्चा की वैराग्य आदि गुणों से जीवन मुक्ति। उम्मीद है आज का ये अंक आपको पसंद आया होगा। चलते चलते आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर हमारे बीच उपस्थित होते हैं योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी, मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और आपसे बातचीत कर रही थी मैं सुनीता सिंह। अब इस कार्यक्रम से अनुमति दें। नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

देश के वीर जवानों को समर्पित शौर्य स्मारक की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर संगीत संध्या का आयोजन। सुनिए मिलिट्री बैंड की सांगीतिक प्रस्तुति। इसके साथ ही आप देख सकते हैं शस्त्र प्रदर्शनी 14 अक्टूबर शाम 6 बजे शौर्य स्मारक अरेरा हिल्स भोपाल, स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठा आयोजन। आप सभी सादर आमंत्रित हैं।

0: ये प्रस्तुति हुई 2 अक्टूबर की शाम एके राम रहीम भजन संध्या में।
1: जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्री सुनील लोधी जी का। प्रस्तुति आरंभ हो उसके पहले हम मंच पर उपस्थित कलाकारों से आपका परिचय करवा दें। श्री सुनील लोधी तो उपस्थित हैं ही मंच पर, आपके साथ सहगायन कर रहे हैं श्री गोलू कुशवाहा और श्री गोविंद तिवारी। कीबोर्ड पर हैं श्री आदित्य गोस्वामी, ऑक्टोपैड पर श्री अंकित ठाकुर, गिटार पर श्री शिवांशु, ढोलक पर श्री संजय पुरी, तबले पर श्री ध्रुव राजपूत और बांसुरी पर श्री हर्ष। तो देवी और सज्जनों, माँ सरस्वती का आशीर्वाद और भगवान श्री हनुमान का भरोसा लिए आपके बीच उपस्थित हैं श्री सुनील लोधी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सुनील जी से। हम आग्रह करते हैं कि वो प्रस्तुति आरंभ करें।

हमारे एवं समस्त भोपालियों वासियों का मैं कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ये जो कार्यक्रम रखा गया है उनको उनको नाम से पाएं और प्रभु का गुणगान करें। मेरे भोपाल वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय हमारे भाई बहन, हमारे मैं क्या बोलूं, मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। सभी को मेरा कोटि कोटि बहुत बहुत धन्यवाद।

और हमारे भोपाल वासियों को कैसा भजन लगा है तालियों के साथ बता सकते हैं। मैंने न जाने कितने भजन और कितने गाने गाए, बट हमारे दर्शकों ने इतना प्यार दिया है, इतना सपोर्ट किया है कि आज मैं बॉलीवुड में एक थोड़ा सा हनुमान अंश का एक हिस्सा बना सका अपने भजन का। बोलिए जय जय श्री राम।

0: सभी को जय जय श्री राम।
1: आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी और उनके साथियों का भक्ति गायन। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत, गीतकार पंडित भवानी प्रसाद मिश्र

रेडियो रिपोर्ट में हम आपको लिए चल रहे हैं मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में, जहां रविवार की शाम नृत्य गायन एवं वादन पर केंद्रित श्रृंखला संभावना के तहत गायन और नृत्य की प्रस्तुतियां हुईं।

0: आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में। यह बघेली गायन की प्रस्तुति, कलाकार हैं रमा दुबे और साथी।
1: हम गणेश वंदना प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमारे यहाँ परंपरा है कि कोई भी कार्य हो उसमें सबसे पहले गणेश जी का मान सम्मान आगमन और तरह तरह से उनकी स्तुति की जाती है। और गणेश जी तो इतने महान हैं कि उन्होंने माता को सर्वोपरि बताया है और उन्हीं के आदेशों का हम लोग पालन करते हैं। हम पहले गणेश जी की वंदना करते हैं कि वैसे जब उत्सव होता है तो गणेश जी स्तुति से आते हैं, लेकिन जहाँ माँ का महोत्सव होता है वहाँ गणेश जी भुइयां पे लौटते हुए आ जाते हैं। और कैसे भुइयां पे लौटते हुए आ रहे हैं उस दृश्य को हम देखते हैं।

हमारे विंध्य प्रदेश की विशेषता है कि हमारे यहाँ कोई भी कार्यक्रम करने के लिए जाते हैं तो गैलहाई गीत जरूर गाते हैं, रास्ते में जाते रहते हैं और चलते चलते वहीं भगवान की कल्पनाओं में डूबे रहते हैं, चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो या चाहे भोले बाबा हो। तो हम आप लोगों के सामने एक गैलहाई प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमें राम के वनगमन का वर्णन है। ककड़ीले पथरीले और कटीले रास्ते हैं, उस परिस्थिति में राम भगवान कैसे पैदल जा रहे हैं ये हमारी विंध्य की नारियां इस गीत के माध्यम से वर्णन कर रही हैं।

अब मेरी अगली प्रस्तुति है, वो मैं अब सभी भक्त जनों की ओर से माँ अम्बा पराम्बा को अर्जी लगाती हूँ कि जितने भी भक्त यहाँ माता रानी की स्तुति का स्मरण कर रहे हैं, उन सबकी सब पे कृपा बनाए रखिए और दया बनाए रखिए। इसके बोल हैं कि माता रानी, हम तो आपके चरणों की धूल हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं, आप तो हमारे ऊपर बस कृपा बनाए रखिए। अब मैं इस गीत को आपके समक्ष रख रही हूँ।

हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।

0: हाँ मुन्ना, आपको और कुछ चाहिए भाई? चावल या रोटी?
1: अरे नहीं नहीं गजभैया काका, बस काका एक बात तो बताइए, हम लोग अक्सर आपके ढाबे पर खाना खाने आते हैं, आप हमेशा ही देश प्रेम के गीत सुनवाते हो, क्यों काका?
2: अरे गजभिये काका को प्रेम प्यार पसंद नहीं है ना काका, इस तरह के गीत लगाकर कहीं आप अपने परिवार से दूर रहने के गम को कम तो नहीं करते?
3: नंदी बात, नंदी बात।
2: अरे ये तोता भी हमें डांट रहा है।
0: मेरे बारे में कोई कुछ भी कड़वा बोलेगा तो ये डांटेगा ही है।
2: तो तोता राम जी, गजभिये काका प्रेम भरे गीत क्यों नहीं लगाते? हैं?
0: ये कह रहा है कि देश प्रेम बड़ा है, यानी कि देश से प्रेम करना ही सबसे बड़ा प्रेम है।
2: अच्छा, क्या आप किसी ऐसे देशभक्त को जानते हैं जिसने अपने दिल दिमाग से जंग जीती हो?
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जहाँ एक ओर राजनैतिक आंदोलनकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, वहीं दूसरी ओर ऐसे महान व्यक्तियों का योगदान भी कम नहीं है जिन्होंने अपने बुद्धि कौशल, स्पष्ट दृष्टिकोण और वाक चातुर्य से अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया। ऐसे ही एक व्यक्ति थे भूला भाई देसाई, जिन्होंने एक वकील की हैसियत से अंग्रेजों की अनेक चालों को नाकाम कर दिया।
2: तो फिर काका आप हमें सुनाएंगे भूला भाई की कहानी?
3: सुनाएंगे, सुनाएंगे, गजभिये काका सुनाएंगे, सुनाएंगे।
0: ठीक है, ठीक है।

0: भाई भूला भाई देसाई का जन्म वलसाड़ गुजरात में हुआ। उनके पिता जीवन जी एक सरकारी वकील थे जिन्हें निजी मुकदमे लड़ने की छूट थी। उन्होंने बहुत धन कमाया, जमीनें खरीदी और खेती बाड़ी भी की। भूला भाई ने मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से पढ़ाई की और साहित्य, इतिहास और अंग्रेजी में स्नातक हुए। उन्हें कॉलेज में प्राध्यापक का पद मिला। अध्यापन करते हुए उन्होंने कानून की विद्या हासिल की। उन्हें हिंदी, फारसी, अंग्रेजी भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। सन 1905 में मुंबई उच्च न्यायालय में एक वकील की हैसियत से उनका नामांकन हुआ। वो बहुत ही तेज दिमाग के हंसमुख इंसान थे और बातों ही बातों में लोगों को अपने पक्ष में कर लिया करते थे। इसी खासियत के कारण वो बिना कागजों को देखे मुंह जबानी केस लड़ते थे।
1: ऑर्डर ऑर्डर। क्यों मनसुख भाई, आपसे अपना पासपोर्ट सबमिट करवाने के लिए कहा गया था, कहाँ है पासपोर्ट?
0: जज साहब, वो मेरी पत्नी के पास कनाडा में है, तो मैंने वहाँ पत्र लेकर मंगवाया है। ये देखिए, ये रहा रजिस्टर्ड लेटर।
2: वाह, क्या बात है, आप खुद यहाँ और आपका पासपोर्ट कनाडा में।
0: जी वो
1: मनसुख भाई, ये कोर्ट है, यहाँ बहानेबाजी नहीं, सबूत चाहिए।
2: जैसा मुझे लगता है मनसुख भाई ये चाहते हैं कि मैं खुद कनाडा जाकर इनके घर से पासपोर्ट लेकर आऊं। भाई ये तो मेरे लिए टिकट भी लेकर आए हैं, इसी बहाने मैं भी कनाडा की सैर कर लूंगा। क्यों मनसुख भाई?
1: ऑर्डर ऑर्डर।
0: जी वो
2: आप मेरे लिए टिकट लाए हैं या अभी खरीदनी है?
0: जी
2: चलिए छोड़िए, मुझे पैसे दे दीजिए, टिकट मैं स्वयं ही ले लूंगा। पर हाँ, ये तो बता दीजिए कि आपकी पत्नी कनाडा में है या दुबई में। भाई पिछली बार आपने कहा था कि वो दुबई गई हुई है, कनाडा या दुबई? बिजनेस आपकी पत्नी ही संभालती है, आप निठल्ले बैठे रहते हैं।
0: नहीं माई बाप, मैं ही
2: आप कोई काम नहीं करते, आपकी पत्नी बिजनेस संभालती थी, बिजनेस में पैसा भी उसी का लगा हुआ है, आप सिर्फ गमाते हैं। आपको पैसा चाहिए था, उसने दिया नहीं और आपने उसका कत्ल कर दिया।
0: जी वो
2: ताकि सारी दौलत आप हड़प सके। क्यों आप अदालत में ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जिंदा है? जैसा ये आदमी झूठ पर झूठ बोलकर अदालत को गुमराह कर रहा है। मेरे पास और भी सबूत है जैसा।
0: भूला भाई देसाई अपनी चतुराई से बात करते हुए केस जीत जाया करते थे। उन्होंने वकालत करते हुए अथाह पैसा कमाया। अपने से कई बड़े और अनुभवी वकीलों के साथ मुंबई उच्च न्यायालय की बार में उनका उठना बैठना था। बात उन दिनों की है जब 1928 में किसानों के बरदौली आंदोलन की शुरुआत हुई। किसान बहुत गुस्से में थे, वो लोग महात्मा गांधी के पास आए।
3: अरे ऐसा भी कभी होता है, कब तक सहन करेगा?
4: कब तक बर्दाश्त करेंगे हम अंग्रेजों की ज्यादती?
0: गांधी जी को एक ऐसे वकील की तलाश थी जो प्रभावी तरीके से किसानों की बात अंग्रेजी सरकार तक पहुंचा सके। उन्होंने वकील भूला भाई देसाई का बहुत नाम सुना था, इसके लिए उन्होंने भूला भाई को अपने ऑफिस आने का निमंत्रण भेजा।
5: भूला भाई जी,
0: जी
5: मैं चाहता हूं कि अंग्रेजी हुकूमत के सामने हमारी ओर से मांगे आप रखें।
0: जी
5: आपको तो वकालत का अच्छा खासा अनुभव है, सुना है आप केस हमेशा ही जीतते हैं।
2: मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं गांधी जी, आपने मुझे याद किया और अपने साथ काम करने का मौका दिया, ये मेरी खुशनसीबी है।
5: अरे बस
2: आप मुझे बस अपनी मांगें और अन्य जानकारी दें, मैं स्टडी कर लूंगा।
5: देता हूं। और भूला भाई जी, हमें अच्छा लगेगा अगर आप स्वराज प्राप्ति के उद्देश्य के लिए किए गए कार्यों में हमें अपना बहुमूल्य सहयोग दें।
6: भारत मेरा भी देश है गांधी जी, मैं हमेशा आपके साथ हूँ।
5: मुझे आपसे यही उम्मीद थी भूला भाई जी।
0: भूला भाई ने किसानों की मांगों को इस कुशलता से पेश किया कि सरकार को भूमि कर में संशोधन करना पड़ा, जब्त की हुई भूमि लौटानी पड़ी, साथ ही कैद किए गए किसान भाइयों को भी छोड़ना पड़ा। इस घटना से उत्साहित होकर भूला भाई ने कांग्रेस में विधिवत प्रवेश कर लिया। इसी दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ब्रिटिश सरकार के बीच आर्थिक लेन देन हुआ, जिसमें भारत को भविष्य में खर्चों का वहन करना था। इस बारे में कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ।
5: भूला भाई
6: जी, गांधी जी,
5: आपने ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार के बीच आर्थिक लेन देन के बारे में विस्तार से पता लगाया?
6: जी बापूजी।
5: क्या लगता है आपको कि इस ऋण से भारत की आर्थिक स्थिति सुधरेगी?
6: सुधरेगी तो तब बापूजी, जब वो भारत के कल्याण के लिए लिया गया हो। वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने फायदे के लिए लिया है और चुकाना हमें पड़ेगा।
5: आपके कहने का अर्थ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो ऋण भारत के नाम से ब्रिटिश सरकार से लिया है, वो भारत की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए नहीं बल्कि कंपनी के लिए है
2: और चुकाना हमें पड़ेगा।
3: ये क्या बात हुई, ब्रिटिश सरकार हमें बेवकूफ बना रही है?
6: वो तो सालों से होता आया है।
5: ये तो सरासर अन्याय है, ये अन्याय है भूला भाई जी।
3: ये हमारे साथ धोखा है बापूजी।
2: हाँ बापूजी,
6: हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी।
7: ये अन्याय है, हम इसका विरोध करेंगे, हम इसका विरोध करेंगे। अन्याय।
5: शांत भाइयों, शांत।
0: सन 1932 में अंग्रेजों ने भूला भाई को स्वदेशी सभा की गतिविधियों के लिए गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। देश के लिए जेल जाने का ये उनका पहला अवसर था। पढ़े लिखे होने के कारण उन्हें उच्च श्रेणी का हकदार माना गया और उसी के अनुसार सुविधाएं दी गईं। वहां रहकर उन्होंने भगवद गीता और कानून की कई किताबें पढ़ डाली, मगर बाहर की दुनिया से बराबर कटे रहने के कारण वो अस्वस्थ रहे। उन्होंने अपने बेटे को पत्र लिखा।
6: पुत्र, मैंने यहां बहुत सी किताबें पढ़ ली हैं। बाहर की दुनिया से दूर मैं बहुत परेशान हो जाता हूं। हालांकि मुझे उच्च श्रेणी का कैदी होने की सभी सुविधाएं मिली हुई हैं, लेकिन यहां करने के लिए कुछ नहीं है, कोई उत्साह नहीं है। खाली खाली दीवारें, सूनापन, एक बंधी सी दिनचर्या, सब कुछ जैसे जड़ होता जा रहा है। पर सोचता हूं कि आजादी की राह में मेरा यह कदम तो उठना ही था। बेटा, मुझे सबके हाल बताना। गांधी जी, जवाहरलाल और सब लोग कैसे हैं?
0: सन 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पारित हुआ, जिसमें प्रांतीय स्वायत्तता प्राप्त हुई। उस समय तक भूला भाई लगातार अस्वस्थ रहे और उन्हें इलाज के लिए यूरोप जाना पड़ा। जब वो लौटे तो उन्हें इस प्रांतीय स्वायत्तता की जानकारी मिली। देश भर से चुने हुए प्रतिनिधियों को विधानसभा में आकर ब्रिटिश सरकार के सामने विपक्षी दल के रूप में कार्य करना था। इस बात पर कांग्रेस में बहस छिड़ गई।
1: हम क्यों विधानसभा में शामिल हों?
3: क्यों हमें शामिल होना चाहिए?
1: क्यों हों?
3: कारण तो सोच कर देखिए ना। शामिल होना चाहिए।
8: कांग्रेस विधानसभा में शामिल नहीं होगी।
1: आप बताइए भूला भाई।
6: गांधी जी, मेरा मत है हमें धीरे धीरे अपना कदम आगे बढ़ाना होगा। ये हमारा पहला कदम होगा ब्रिटिश सरकार के सामने जाकर अपनी बातें रखने का।
1: देखिए, भूला भाई जी ने तो बता दिया कि वो तो कांग्रेस के विधानसभा में भाग लेने के पक्ष में हैं। आप लोग क्या सोचते हैं?
3: अच्छा, तो हमारे विधानसभा में शामिल होने से क्या होगा?
1: हाँ, बताइए।
6: इससे सबसे बड़ा फायदा होगा कि हम अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा सकेंगे। अरे भाई, दुश्मन को मारना है तो उसके नजदीक रहकर ही उस पर तगड़ा वार किया जा सकता है। और हमारे लिए तो ये एक अच्छा बहाना होगा।
1: मैं भूला भाई की बात से 100% सहमत हूँ। क्यों जवाहरलाल
9: जी? बापू, मैं भी सहमत हूँ।
1: अब बताइए आप लोग।
10: मैं भी सहमत हूँ बापू।
11: ठीक है,
10: हम भी सहमत हैं बापू।
1: तो सर्वसम्मति से फैसला हो गया कि कांग्रेस विधानसभा में शामिल होगी।
3: जी जी जी।

0: भूला भाई देसाई गुजरात से केंद्रीय विधानसभा के लिए चुने गए। जब वो अपनी प्रखर बुद्धि से विश्वास पूर्वक किसी बात को कहते तो पूरा सदन चुप हो जाया करता था। उसके बाद 1937 में भी कांग्रेस ने प्रांतीय विधानसभा में अपने उम्मीदवार खड़े किए तो अधिकतर स्थानों से कांग्रेस ही जीती। 1938 में द्वितीय महायुद्ध की घोषणा की गई, जिसमें बिना औपचारिक सहमति प्राप्त किए भारत को भी युद्ध में शामिल कर लिया गया। ये जानकर सभी भारतीय नेता बौखला उठे।
1: ये गलत है। हमारा देश क्यों लड़े? ना, बिल्कुल गलत है। हमारा देश क्यों लड़े? भाई नहीं लड़ेगा हमारा देश।
2: साइलेंट, इतना क्यों शोर मचाता है तुम लोग? सिंगल मैन बोले,
3: तुम जनतंत्र जनतंत्र का झूठा नारा लगाते हो।
4: हम जनता के प्रतिनिधि हैं। हमारी सहमति के बिना भारत को द्वितीय महायुद्ध में शामिल क्यों किया गया?
1: क्यों किया गया?
2: चिल्लाओ मत, सरकार हमारी है, हम कुछ भी कर सकता है। ओके,
5: तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, ये हमारा देश है।
3: हमें आपसे जवाब चाहिए, जनता आपसे जवाब मांग रही है।
2: ओफो, तुम लोग कितना चिल्लाता है, सिंगल पर्सन क्यों नहीं बोलता?
4: ठीक है,
6: भूला भाई आप बोलिए।
7: बोलिए। ठीक है, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब भारत इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता तो उसे जबरन वॉर में इन्वॉल्व क्यों किया जा रहा है? क्यों हमारे देश के संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है? हमें नहीं चाहिए युद्ध, नहीं चाहिए किसी अन्य देश की बर्बादी।
2: लुक, दिस इज एन ऑर्डर बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, हमें युद्ध करना ही होगा। ओके,
7: ये महायुद्ध ब्रिटिश साम्राज्य के अपने मतलब के लिए हो रहा है। हम अपने बेगुनाह भाइयों को मौत के मुंह में क्यों डालें? इस मुद्दे के सभी बजट को रद्द किया जाए, हम सब इसका विरोध करते हैं।
3: हाँ, विरोध करते हैं।
2: शट अप, आई से शट अप, कुछ वापिस नहीं होगा। डिसीजन हैज बीन टेकन, वी डोंट वांट एनी आर्गुमेंट, अंडरस्टैंड?
3: नो, वी डोंट वांट टू अंडरस्टैंड दीस थिंग्स।
2: शट अप, शट योर माउथ।
1: वॉक आउट।
0: द्वितीय महायुद्ध अपनी चरम सीमा पर था। 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों की ओर से लड़ रहे भारतीय सेना के हजारों सैनिकों को अपने साथ मिलाकर एक सेना का गठन किया, आजाद हिंद फौज।
8: वंदे मातरम।
9: हम चाहते हैं कि आजाद हिंद फौज अर्थात INA की लीडरशिप में जापानी फौजें भारतीय सीमा पर तैनात ब्रिटिश सेना पर आक्रमण करें।
10: Why, Mr. Bose? जापानी सेना इंडिपेंडेंटली हैंडल कर सकती थी, then why under the INA?
9: ये हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई है, हमें अपनी सीमाओं और
10: सैनिक हर बात की जानकारी रखते हैं।
9: देखो, ऐसा करते हैं कि पहले INA के सैनिक आक्रमण करेंगे। अगर हम सफल होते हैं तो जापानी फौजें आ जाए, इससे आपकी सेनाओं को अधिक हानि नहीं होगी।
10: वेल, आई थिंक इट इज बेटर ऑप्शन। ओके, दिस इज डन।
0: गांधी जी रिहा हो चुके थे। इधर मुस्लिम लीग और कांग्रेस अपने अपने उसूलों पर टिके किसी प्रकार का समझौता करने को राजी नहीं थे। मई 1944 में INA ने भारतीय सीमा पर मौजूद अंग्रेजी सेना पर आक्रमण किया। उन्होंने मणिपुर जीतकर अपना झंडा फहराया। उसके बाद जापानी फौजें सहायता के लिए आ गईं, लेकिन जल्दी ही जापानी फौजों को पीछे हटना पड़ा क्योंकि महायुद्ध में कई जगह जापानी सेनाओं की हार हो गई थी। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम से हमला हुआ। 17 अगस्त 1945 को ताइपे से उड़ान भरते समय वायुयान दुर्घटनाग्रस्त होने से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की आशंका जताई गई। जापान ने भारत से अपनी फौजें वापस बुला ली। मजबूरन आईएनए के सैनिकों को भी पीछे हटना पड़ा। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार ने आईएनए के 3 जांबाज सैनिक अफसरों शाहनवाज खान, पी के सहगल और जीएस ढिल्लों को बंदी बनाकर उनका कोर्ट मार्शल करने का फैसला कर लिया।
6: Your Honor, इन तीनों लोग शाहनवाज खान, पीके सैगल और जियाज ढिल्लों ने ब्रिटेन की महारानी के खिलाफ साजिश किया है। My Lord, ये लोग देशद्रोही हैं। इनको
7: ऑब्जेक्शन मे लॉर्ड। हमारे जाबाज सैनिक ऑफिसर्स को सरकारी वकील बिना फैसला हुए ही देशद्रोही कह रहे हैं, यह गलत है।
2: ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड।
7: थैंक यू योर ऑनर। हमारे ऑफिसर ब्रिटिश सरकार की ओर से कितने ही देशों के खिलाफ लड़ने के लिए गए, जापान, बर्मा, मलाया और सिंगापुर, सभी देश के सैनिक अपने देश को बचाने के लिए अपना जी जान लगा रहे थे। तो हमारे ऑफिसर्स के मन में अपने हिंदुस्तान को आजाद करने की ललक उठी योर ऑनर। इसी कारण से आजाद हिंद फौज का गठन किया गया, ना कि ब्रिटेन की महारानी के खिलाफ लड़ने के लिए फौज का गठन हुआ।
11: इंकलाब जिंदाबाद,
12: इंकलाब
11: जिंदाबाद,
12: इंकलाब
11: जिंदाबाद,
12: इंकलाब
11: जिंदाबाद।
6: लेकिन ये लोग पूरे ढाल बाल और शास्त्रों के साथ गलत तरीके से इंडिया में घुसे थे।
7: आप अंग्रेज लोग शायद भूल रहे हैं कि ये देश भारत है, हमारा है, और ये तीनों ऑफिसर्स भारतीय हैं।
11: इंकलाब
12: जिंदाबाद,
11: जिंदाबाद,
12: इंकलाब
11: जिंदाबाद।
6: अब माय लॉर्ड, लेकिन यहाँ तो जो सरकार है वो ब्रिटेन की है।
7: योर ऑनर, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इन ऑफिसर्स के मन में अपने देश को आजाद करने की भावना हिलोरे ले रही थी। ये लोग गैर मुल्क के चंगुल से बचाने के लिए ही अपने देश, अपने इंडिया में घुसे हैं, ना कि किसी गैर मुल्क में घुसे। योर ऑनर, ये लोग निर्दोष हैं। ब्रिटिश सरकार के देशद्रोह के लगाए हुए आरोप गलत हैं योर ऑनर। इनका कोर्ट मार्शल किया जाना गैर कानूनी है।
9: एडवोकेट भूला भाई, ये बात आप क्यों भूल रहे हैं कि अगर देश की सरकार के खिलाफ कोई कदम उठाता है तो ये क्राइम है। आर्मी ऑफिसर्स के लिए तो ये गुनाह और भी संगीन हो जाता है। सरकार जो भी हो उसके खिलाफ विद्रोह तो हुआ ही है।
7: योर ऑनर, हम भी आपको एक बात याद दिलाना चाहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत किसी भी देश को स्वतंत्र रहने का और अपनी रक्षा के लिए हथियार रखने और उठाने की अनुमति है। हमारे ऑफिसर्स ने कोई गलत कार्य नहीं किया।
9: देखो, आपकी दलीलें बेबुनियाद हैं। हम इसे नहीं मानते और इन्हें देशद्रोही मानते हुए काला पानी की सजा का हुक्म सुनाते।
11: ब्रिटिश सरकार
12: हाय हाय,
11: ब्रिटिश सरकार
12: हाय हाय,
11: ब्रिटिश सरकार
12: हाय हाय,
11: अपने देश
12: वापस जाओ, वापस जाओ,
11: ब्रिटिश सरकार
12: हाय हाय,
11: ब्रिटिश सरकार
12: हाय हाय।
13: माफ करना दोस्तों, मेरी कोशिश नाकाम रही।
14: भोला भाई, आपकी तबीयत कैसी है?
13: ठीक हूं। बैठो तेज बहादुर, बैठो जवाहरलाल।
9: लगातार 3 महीने से दिन रात केस के लिए स्टडी कर रहे थे, बीमार तो पड़ेंगे ही।
13: मुझे अपनी तबीयत की नहीं, अपने देश भक्त उन ऑफिसर्स की चिंता है जवाहरलाल। मैं चाहकर भी उनकी रक्षा नहीं कर सका।
14: किसने कहा कि तुम रक्षा नहीं कर सके? जानते हो, पूरे देश में तुम्हारी दी हुई दलीलों और हिम्मत की चर्चा हो रही है।
9: और तो और, नौसेना और वायुसेना के सैनिकों में भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के स्वर उठने लगे हैं। और जानते हो, अंग्रेजों ने डर कर तीनों को बरी कर दिया है।
13: सच? जवाहर, क्या तुम सच कह रहे हो? तेज बहादुर, मेरी कोशिश सफल हो गई, मैं कामयाब हो गया। दोस्तों, मैं कामयाब हो गया।
14: हाँ भोला भाई, लोग तुम्हारे मुंबई लौटने का इंतजार कर रहे हैं, पलकों पर बिठाने का।
9: इस ऐतिहासिक केस लाल किले का मुकदमा के बाद तो भोला भाई को बच्चा बच्चा जानने लगा होगा, है ना गजबीय काका?
15: हाँ, मगर इस मुकदमे में अपनी जान झोंकने का असर उनका शरीर झेल नहीं पाया, और स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ महीने पहले 6 मई 1946 को देश के ये महान वकील, स्वतंत्रता सेनानी भूला भाई देसाई सदा सदा के लिए अमर हो गए।
14: सही कहा है आपने गजभिये काका, अपने देश पर मर मिटने के लिए तलवार की ही जरूरत नहीं होती, दिल दिमाग से भी लड़ा जा सकता है।
15: मेरा मन कहता है कि ऐसे देशभक्तों को हम सलाम करें। जय हिंद।
14: जय हिंद।
16: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदोस्ता हमारा, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन, संस्कृति विभाग। इसी समय फिर मिलेंगे एक और क्रांतिवीर की जीवन गाथा लेकर। कार्यक्रम हिंदोस्तान हमारा।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण और कार्यक्रम है स्वास्थ्य चर्चा। श्रोताओं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मनुष्य इस प्रकृति की ही उपज है और सभ्यता के विकास के साथ ही हमने अपने हर प्रश्नों, हर समस्या का समाधान भी इसी प्रकृति से ही तो प्राप्त किया है। विशेष रूप से यदि भारतीय ज्ञान और परंपराओं की बात की जाए तो सदियों से हमारी यही विचारधारा रही है कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो सजीव हों या निर्जीव, उनके निर्माण में प्रकृति के 5 तत्वों जिन्हें की पंच महाभूत जाता है, इन्हीं का हाथ है। तत्व हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। यानी इन्हीं तत्वों से संसार की, ब्रह्मांड की हर चीज बनी है, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी। और इन्हीं 5 तत्वों पर टिका है हमारा स्वास्थ्य भी। आज के हमारे कार्यक्रम का विषय भी यही है और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं विषय विशेषज्ञ आयुर्वेदाचार्य श्री शैलेश मानकर जी। मानकर जी विगत 25 वर्षों से प्रैक्टिसरत हैं, लगभग 15 वर्षों से सुवर्ण प्राशन संस्कार एवं गर्भ संस्कार के नियमित परामर्शदाता और अनुसंधानकर्ता भी रहे हैं। ये अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी हैं, जो आयुर्वेद के अध्ययन, परामर्श और चिकित्सा में समर्पित हैं। सन 2018 में मानकर जी को प्रतिष्ठित पंडित उद्धव दास मेहता राज्य स्तरीय चिकित्सा सेवा सम्मान से विभूषित किया गया है। सर, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद, नमस्कार।
1: आज हम इस कार्यक्रम में आपसे यही जानना चाहते हैं कि जो हमारी प्राचीन ज्ञान और विज्ञान की परंपरा रही है, उसमें हमारे स्वास्थ्य के संबंध में क्या प्रावधान है और इसमें प्रकृति की क्या भूमिका है।
2: आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है
1: जी।
2: हम जितने भी भारतीय लोग हैं, हमारी भारतीय परंपरा है, यह सारा का सारा ज्ञान प्रकृति से ही अर्जित किया हुआ है। हमारी सारी परंपराओं में यह बहुत स्पष्ट रूप से मिलता है। हमारे यहाँ एक सेंटेंस कहा जाता है, जैसा जैसा इस ब्रह्मांड में है वैसा वैसा इस पिंड में है। तो जहाँ इस पूरे ब्रह्मांड में जो चीज हो रही है, वही चीजें रिफ्लेक्ट हमारे शरीर में, हमारे किसी भी पिंड में भी वही चीज हो रही है। मतलब हमने उनको एकाग्र किया है कि प्रकृति के साथ, इस ब्रह्मांड के साथ हमारा कैसा एकाकार है। आपने मूल तत्व इसमें बता ही दिए हैं, जो हमारे पंच महाभूत होते हैं
1: जी।
2: जो पंच महाभूत में आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है और पृथ्वी है
1: जी।
2: यही हमारे तत्वों के, हमारे शरीर के, हमारे सृष्टि का मूल आधार है
1: जी।
2: इन्हीं से हमारा शरीर बना हुआ है। हम लोक भाषा में भी बोलते हैं ना, सामान्य रूप से ये मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा
1: जी।
2: ऐसे अनेक उदाहरण आपको मिलेंगे जब हम दिनचर्या में, लोक भाषा में आराम से बोलते हैं। और यही इसका सार है कि जो पंच महाभूत है, उसी से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। पंच महाभूत में ही हमारी सब्जियां भी उग रही है
1: जी,
2: हमारे पेड़ पौधे भी है, इसी जल का उपयोग भी हमारे शरीर में हो रहा है। हमारे शरीर का जो रिक्त स्थान है वह आकाश को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारी श्वास प्रश्वास को हम प्राण बोलते हैं
1: जी, प्राणवायु,
2: प्राणवायु
1: जी।
2: यह प्राण को ही हम वायु के रूप में हम देख रहे हैं। आकाश महाभूत से जो हमारा अंदर अंग है, जो खाली स्थान है
1: जी,
2: जो आमाशय है, पक्वाशय है, ऐसे जो स्टमक वगैरह है, इनमें जो होलो स्पेस है वह आकाश को रिप्रेजेंट कर रहा है।
1: अच्छा।
2: जो वायु हम सांस ले रहे हैं, यह हमारे प्राण को, वायु को रिप्रेजेंट कर रही है। हमारे शरीर में जितना रक्त है, लसीका है, जो भी चीजें जो द्रव रूप में, तरल रूप में बह रहा है, वो हमारे सारे जल को रिप्रेजेंट कर रहा है।
1: अच्छा।
2: और हमारी मांस है, हड्डियां हैं, यह हमारे सर्वे जो है वो सब का सब पृथ्वी महाभूत को ये कर रहा है। और साथ में रह गई बात अग्नि की, तो अग्नि जो हमारी पाचन अग्नि है, हम बोलते ही है कि हमारे शरीर में जठर अग्नि होती है, हमारा खाना जो पचता है वह अग्नि के माध्यम से ही पचता है। हमारी जितनी मेटाबॉलिज्म होती है वो 13 प्रकार की अग्नियां हमारे शरीर में बता के रखी हैं।
1: 13 प्रकार की अग्नियां,
2: 13 प्रकार की अग्नियां। तो जठराग्नि के साथ में हमारे सारे धातुओं का पोषण करने वाली, हम आज के समान में जो मेटाबॉलिज्म वगैरह बोलते हैं, यह सारा का सारा अग्नि के स्वरूप में हमारे ज्ञान परंपरा में उसको वर्णित किया है।
1: अच्छा।
2: और उत्तर उत्तर एक के बाद एक धातु पूरी तरह से जब सम्यक रूप से समान अवस्था में बनी रहेगी तो ही हम स्वस्थ रह पाएंगे। मतलब हमारे शास्त्र में बहुत अच्छे से बताया कि ये जो पंच महाभूत है
1: जी,
2: या हम आयुर्वेद के हिसाब से जो दोष सप्त धातु वगैरह सभी लगते हैं, इनकी सबकी साम्य अवस्था, ये सब एक बैलेंस कॉम्बिनेशन में रहेंगे तो ही हम स्वस्थ कहलाएंगे।
1: अच्छा,
2: ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज बड़ी है कम हो, वो चीज जो होती है इसके सम्यक रूप से हमारे इसमें कहा भी गया है कि जब हमारी इंद्रियां प्रसन्न हो, जब हमारे अंग सुचारू रूप से काम कर रहे हो
1: जी,
2: है ना, हमारी मानसिक स्थिति सम्यक हो और हमारी आध्यात्मिक भी, हम भारतीय परंपरा में आध्यात्म को भी मानते हैं, तो इनका जब सम्यक रूप से समान अवस्था जब रहेगी तभी हम स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ की परिभाषा ही ऐसी देके रखी है।
1: अच्छा,
2: स्वस्थ रहने के लिए सबका बैलेंस कॉम्बिनेशन होना
1: जरूरी
2: बेहतर है। और एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ कि जब हमारा जन्म होता है तो हमारे जन्म के समय हम पे छह चीज की काम करते हैं, छह तत्व काम करते हैं
1: जी,
2: जिसमें हमारे माता के भाव होते हैं, पिता के भाव होते हैं, उसी के साथ में जो हम अन्न ग्रहण करते हैं उसका प्रभाव होता है
1: जी,
2: जो मन का जो हमारा प्रभाव, जब ऐसी हमारी मानसिक स्थिति होती है
1: जी, जी,
2: उसका भी प्रभाव पड़ता है, और इसके साथ में जो जीवात्मा है वह अपने कुछ गुणधर्म लेके आती है, तब जाके एक जीव का
1: निर्माण होता है,
2: निर्माण होता है, और उसमें एक बैलेंस कॉम्बिनेशन बनता है और इसके कारण वह अस्तित्व में रहता है। यह सारा का सारा कॉम्बिनेशन, ये सारा कार्य जो है वो पंच महाभूत से बने हुए शरीर पर ही हो रहा है।
1: अच्छा, तो सर यहाँ पर एक प्रश्न मन में ये उठता है कि ये जो पांच तत्व हैं वो क्या हर मनुष्य में समान अनुपात में होते हैं या इनके अनुपात भी मनुष्य मनुष्य में अलग अलग होते हैं?
2: बिल्कुल सहज रूप से इसमें हर मनुष्य में इसके अनुपात में थोड़ा सा अंतर आता है, इसलिए हमको मनुष्यों में विभिन्नता मिलती है।
1: हाँ, अच्छा, मतलब रंग रूप जो है या हमारा स्वभाव है,
2: स्वभाव है, रंग रूप है, उनकी आदतें हैं, उनका आकार प्रकार है ना, उनके बाल, उनके अंगों का सब स्वरूप जो है, ये सारा का सारा उस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन पे ही रहता है।
1: अच्छा।
2: और वो एक बैलेंस कॉम्बिनेशन रहेगा तब वो अस्तित्व में आएगा
1: जी। तो ये तो बात हो गई पंच महाभूतों की, जिनकी हमारे शरीर के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका है, हम बने ही इन्हीं पंच तत्वों से हैं। एक और टर्म आती है आयुर्वेद में त्रिदोष की, वात, पित्त और कफ। तो ये जो त्रिदोष हैं, पहले तो आप हमें ये बताइएगा कि इन्हें त्रिदोष क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोष से हम आम इंसान तो दोष यानी कुछ एक कमी समझते हैं, और फिर उसके बाद एक बात ये आती है कि क्या इन त्रिदोषों का भी इन पंच तत्वों से कुछ संबंध है?
2: निश्चित रूप से
1: जी,
2: जो मूल तत्व है वो तो पंच महाभूत ही है
1: जी जी।
2: इसको जब हम शरीर रचना के रूप में देखते हैं तो हमारे त्रिदोष होते हैं, सप्त धातु होते हैं और तीन मल
1: जी,
2: ऐसे करके हमारे शरीर में मुख्य घटक आते हैं, समझ में आते हैं। ये जो तीन दोषों की बातें की गई है
1: जी,
2: ये बहुत स्पष्ट रूप से ये शरीर को धारण करते हैं, इसलिए इसको धातु भी कहते हैं।
1: अच्छा,
2: है ना
1: जी।
2: लेकिन जब इनका प्रमाण कुछ कम ज्यादा होता है या बढ़ जाए या घट जाए तो ये उन स्त्रोतों को, शरीर के सिस्टम को, धातुओं को जब वो उसमें दोष उत्पन्न करते हैं, इसके कारण इनको दोष कहा गया है।
1: अच्छा,
2: इन दोषों के लिए जो हम गलती करते हैं सामान्य रूप से एक डायरेक्शन की, यार कफ बढ़ रहा है तो कफ को सुखा दो, है ना
1: जी।
2: पर गले के लिए कफ जरूरी है क्योंकि इसके ऊपर कफ का ही स्थान है
1: जी,
2: तो जहाँ कफ की आवश्यकता है उसकी है, तो उसको हमको सुखाना नहीं है, इसलिए मैंने पहले भी शब्द इस्तेमाल किया कि आपको सम्यक अवस्था रखना है, उसको एक बैलेंस कॉम्बिनेशन में ही रखना है। तो कफ के प्रमाण को सम्यक करना, उसको बैलेंस करना,
1: यानी हमें जितना जरूरी है उतना होना
2: उसके
1: चाहिए,
2: होना चाहिए
1: जी, ना कम ना ज्यादा,
2: ना कम ना ज्यादा, और उस व्यक्ति के अनुसार होना चाहिए।
1: अच्छा, यानी हमारा स्वभाव और हमारे शरीर की जो गुणधर्म है उस पर भी ये चीज निर्भर करती,
2: निर्भर करेगी
1: जी।
2: ये स्वाभाविक है हमारे प्रकृति में, पहाड़ी क्षेत्र में रहने वालों की शरीर कदकाठी अलग होती
1: जी,
2: है
1: जी, बिल्कुल।
2: हमारे जो साधारण देश होता है वहाँ की कदकाठी अलग होती है, और जो गर्म देश रहते हैं वहाँ के लोग, तो उनके खान पान में भी उसके कारण अंतर आ रहा है
1: जी।
2: उस जगह के हिसाब से तुलना, उसको बैलेंस कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। तो ये जो विभिन्नताएं आपको दिख रही है
1: जी,
2: ये विभिन्नताओं का प्रैक्टिकली हमको अप्रोच रखना चाहिए, इसलिए हमको हमारी बुद्धि लचीली रखनी चाहिए।
1: अच्छा, बिल्कुल सही बात है।
2: हम जब रिजिड होते हैं
1: जी,
2: तो हम फिर गलती करते हैं कि यहाँ ऐसा ही है, तो हमको वो सारी गणनाओं के साथ में अपने आप को अपनी गणना करनी चाहिए।
1: तो सर अब प्रश्न यही आता है कि यदि ये त्रिदोष हैं और हमारे शरीर में इन तीनों की उपस्थिति है, अब इन तीनों का बैलेंस कैसे बना रहे?
2: एक विषय को बता देता हूँ कि हमारा जो वात दोष है, वात पित्त और कफ, ये तीन तत्व है। वात मतलब वायु, पर ये जो वायु बोल रहे हैं इसमें वायु तत्व और आकाश तत्व इनका सम्मिलित रूप है।
1: अच्छा, यानी पंच महाभूतों में से,
2: पंच महाभूत में से
1: आकाश और जो वायु है वो वात को बनाते हैं,
2: वात को बनाते हैं।
1: जी, ठीक है।
2: इसमें जो पित्त होता है वह अग्नि और जल इसके कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। और जहाँ पे पृथ्वी महाभूत है वहाँ पे जल और पृथ्वी,
1: अच्छा,
2: जो हमारा कफ है, कफ दोष है। तो कफ कैसा होता है? थिक होता है, चिकट होता है। हमारा शरीर ही सबसे पहले मिट्टी से बना है ना, तो मिट्टी, पृथ्वी महाभूत और जल महाभूत मिलने के बाद जो कफ होगा उससे ये पिंड बनेगा। एक सरल सा उदाहरण देता हूँ, मिट्टी का घड़ा बनता है तो सबसे पहले मिट्टी और जल को मिला के
1: पेस्ट
2: उसको एक गूथेंगे तो एक ठोस आधार बनेगा। फिर हम उसके ऊपर उसको चके के ऊपर रखेंगे, फिर उसका गतिमान करेंगे तो वायु से उसके आकार का निर्माण होगा। उसको हम धीरे धीरे गति देने के बाद उसको आकार देंगे। आकार देने के बाद उसकी खाली जगह, भरी जगह जो आकार होगा
1: जी।
2: उसके बाद में हम उसका पचन करेंगे, उसको अग्नि में उसको
1: पकाएंगे,
2: इस अस्तित्व में रहने के लिए जो उसका पाचन होगा उसकी क्रियाएं रहेंगी, तब जाके एक मटका अस्तित्व में। ऐसी प्रकार से हमारे शरीर में भी वात पित्त कफ का, कि वात के कारण हमारे जो सारे प्राण श्वास मैंने बोला था अंगों का निर्माण होगा, और पिंड जब तक रहेगा पिंड को आकार देने का कार्य वात करेगा, और उसके मेटाबॉलिज्म, उसके पोषण का, उसमें हर समय जो चलने वाली जो क्रियाएं हैं उसको पाचन करके निर्माण करने के लिए हम पित्त का कार्य करेंगे।
1: तो यानी वात पित्त और कफ ये पंच तत्वों की देन है और इन्हीं का बैलेंस जो है वो हमारे शरीर के स्वास्थ्य को बना के रखता है।
2: इसमें हमारे अंगों में भी जो विभाजन किया हुआ है
1: जी।
2: जो गले के ऊपर का जो छाती वाला कफ जैसा है और कंठ और सिर, ये हमारे कफ को रिप्रेजेंट करता है।
1: अच्छा,
2: ये कफ का है
1: जी।
2: जो आपके नाभि के आसपास का एरिया मध्य शरीर है हमारा, यह पित्त को रिप्रेजेंट करता है, और कमर से नीचे का हिस्सा वात को रिप्रेजेंट करता है।
1: जी।
2: ऐसे ही हमारा दिन की साइकिल है, ब्रह्म मुहूर्त हमारा जो दिन निकलने के पहले का जो समय है वो वात को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिन निकलते समय हमारा कफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोपहर का समय हमारा फिर पित्त को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर हमारा शाम होने वाला समय फिर वात को रिप्रेजेंट कर रहा है।
1: अच्छा।
2: फिर शाम के बाद रात का समय जो है वो कफ को, और मध्य रात्रि जो है वो पित्त को। ऐसा हमारा डिवाइडेशन वात पित्त कफ के हिसाब से किया हुआ है।
1: अच्छा।
2: हमने जो पैरामीटर बनाया, पंच महाभूत मूल आधार है, लेकिन वात पित्त कफ के हिसाब से हमने उसका व्यक्ति के शरीर में भी डिवाइडेशन किया हुआ है, दिनचर्या दिन में भी उसका डिवाइडेशन किया है, और वर्ष में भी डिवाइडेशन किया हुआ है।
1: अच्छा, वर्ष में किस तरह से सर?
2: वर्ष में हमारे 12 पूरे महीने होते हैं, उसमें 6-6 महीने का साइकिल, उसको दो हिस्सों में बांटा है, आदान काल विसर्ग काल।
1: अच्छा।
2: सरल भाषा में हम समझे तो हम पतंग उड़ाते हैं, मकर संक्रांति आती है
1: जी।
2: मकर संक्रांति से भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण होते हैं
1: जी।
2: यहाँ से हमारा शरीर घटना शुरू होता है।
1: अच्छा।
2: और जुलाई के माह में कर्क संक्रांति आती है
1: जी।
2: जब भगवान दक्षिणायन होते हैं तब हमारा शरीर वहाँ से बनना शुरू होता है।
1: अच्छा।
2: तो ये 6 महीने हमारा शरीर घटता है, 6 महीने हमारा शरीर।
1: तो सर, जो आप ये बोल रहे हैं शरीर का घटना या शरीर का बढ़ना, इससे क्या अभिप्राय है?
2: शरीर का घटना या बढ़ना से अभिप्राय यह है कि हमारी जितनी भी वाइटल एनर्जीज हैं, हमारी अग्नि है ना, वही पचन का कार्य कर रही है ना
1: जी।
2: तो वो धीरे धीरे कम होते जाती है। जैसे हम मकर संक्रांति के बाद जब हमारा शरीर पूरी तरह से बलवान होता है, तो जो फाल्गुन महीना आता है, जो होली का समय है
1: जी,
2: उस वसंत ऋतु में हमारे शरीर में कफ का सबसे ज्यादा आधिक्य होता है। तो हमारा कफ प्रकोप का समय बता के रखा है।
1: अच्छा।
2: उसके बाद में हमारा कफ, जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो कफ धीरे धीरे शमन होने लगता है
1: जी।
2: उसके बाद में हम जो वात का समय है वो वर्षा ऋतु है।
1: अच्छा।
2: उस समय हमारे शरीर में वात का प्रकोप होता है और हमारा शरीर कम हो रहा है, हमारी अग्नि सबसे कम है, हम अपने शरीर में सबसे कम इम्यूनिटी वाले टाइम में जो है वो वर्षा ऋतु
1: में,
2: इसलिए आपने देखा होगा हमारी अग्नि भी कमजोर है उस समय, इसलिए हमारे मैक्सिमम उपास वो उस कालखंड में आते हैं।
1: संक्रमण का काल भी वही है।
2: तो मूवमेंट भी कम होना चाहिए और इम्यूनिटी वाइज हमने ऐसे पैरामीटर्स बनाए कि आप उससे सुरक्षित रह सके। तो हम कम खाना खाते हैं, सुपाच्य खाना खाते हैं और हल्का खाना खाते हैं। वैसे ही जैसे शरद ऋतु आती है तो नवंबर दिसंबर के महीने में जब शरद ऋतु, तो शरद पूर्णिमा हमारा एक ऐसा माइलस्टोन है जब हम दूध को औटा औटा के गाढ़ा करके पीते हैं। मतलब कर्क संक्रांति के बाद धीरे धीरे जब अग्नि बढ़ना शुरू होती है तो पहला माइलस्टोन हमको मिलता है शरद पूर्णिमा का।
1: अच्छा
2: जी। कि हमारी अग्नि अब बढ़ गई
1: बढ़ गई
2: अब आप गरिष्ठ भोजन भी आप कर सकते हैं।
1: अच्छा।
2: इस तरीके से फिर हम वहां से भारी अन्न लेते हैं और हमारा शरीर, हम हेल्दी सीजन बोलते हैं ना, इस समय जो भी खाइए वो पच जाएगा। हाँ। आपके शरीर को लगेगा
1: जी। ठंड के ऋतु में जैसे बहुत फल खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, घी खाइए,
2: घी खाइए, आपका खाना पूरा सारे षड्रसात्मक होके उसको पूरा बलिष्ठ होके उसमें सारे न्यूट्रिशन हो, उसकी क्वांटिटी भी थोड़ी सी ज्यादा रहेगी।
1: अच्छा।
2: सामान्य ऋतुओं के हिसाब से और इस समय हमारे शरीर का निर्माण होगा। तो शरद ऋतु में पित्त प्रकोप का काल है, ऐसा हमारा डिवाइजेशन हो गया। वसंत ऋतु में कफ प्रकोप है, वर्षा ऋतु में आपका वात का प्रकोप है और जो शरद ऋतु है उसमें पित्त का प्रकोप
1: जी। यानी सर यदि हम दिन देखें तो उसके अलग अलग कालखंड में वात पित्त और कफ का प्रभाव अलग अलग है। महीने देखेंगे या वर्ष देखेंगे या ऋतुएं देखेंगे तो उसमें भी हमको वात पित्त और कफ का अलग अलग प्रभाव है। और शायद यही हमारे खान पान में भी हमको ध्यान में रखना होगा कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे तो हम किस मौसम में किस तरह की चीजें लें या फिर दिन में और रात में हमें किस तरह का आहार लेना चाहिए।
2: निश्चित रूप से अभी वर्तमान में आपके पास में ऐसे लोगों की बढ़ोतरी होगी कि सर देखिए मैं इतना संभल के रहता हूँ, मैं कुछ नहीं खाता हूँ तो भी बीमार हूँ
1: जी।
2: तो मैं उनसे वही आग्रह करता हूँ कि जब मौसम बदला तो अपने अपने कपड़े बदले, तो मौसम बदला तो अपने अपना आहार क्यों नहीं बदला।
1: जैसे सर्दी में हम स्वेटर यूज कर रहे हैं या गर्मियों में पतले कपड़े यूज कर रहे हैं, सेम ऐसे ही हमें हमारा आहार भी मौसम के अनुसार
2: करना चाहिए,
1: बदलना चाहिए।
2: हाँ, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमको ये परिवर्तन करना ही चाहिए। हमारी दिनचर्या में, हमारी ऋतुचर्या में, हमारे शास्त्र में बता के रखा है
1: जी,
2: कि कैसे प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना। प्रकृति हमारे हाथ में नहीं है, उसको वो अपने गति से चल रही है।
1: जी।
2: उसमें ऋतुएं बदल रही है, उसके स्वरूप है, उसके मापदंड सामने आ रहे हैं। हमको हमारे शरीर को उसके अनुसार बदलना है। देश काल में हमको कुछ कुछ अंतर मिलते हैं, इसलिए कई बार हमको पता चलता है कि इस सीजन में ये लोगों का एडॉप्ट काम करने के तरीके में और वहाँ के काम करने के तरीके में अंतर है, क्योंकि वो देश का प्रभाव है। तो इसीलिए मैंने बोला कि लचीली बुद्धि के साथ अगर आप एकदम से रिजिड हो जाएंगे तो फिर कंफ्यूजन होगा, लेकिन ऋतु और उसके हिसाब से तालमेल बिठाना।
1: अब सर ये तो बिल्कुल ऊपरी बातें हो गई आयुर्वेद से संबंधित, तो आप जो दिनचर्या के बारे में बात कर रहे थे हम उसी पर आते हैं कि हमारी दिनचर्या किस तरह की होनी चाहिए।
2: दिनचर्या भी जो हमारी दोषों के हिसाब से ही होनी चाहिए।
1: अच्छा, वात पित्त और कफ के हिसाब से।
2: वात पित्त कफ जी, हमने डिवाइडेशन करके रखा हुआ है। अब एक सहज प्रश्न आता है कि ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए।
1: हाँ जी,
2: इसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है यह वात दोष का समय है।
1: अच्छा।
2: हमारे शास्त्र में स्पष्ट बताया हुआ है कि हमारे शरीर में जो पित्त है, जो कफ है, हमारी जो सातों धातुएं हैं वो सब के सब पंगु है। इसको जो मूवमेंट देना है वो वात करेगा।
1: अच्छा।
2: तो जब आपके शरीर के मूवमेंट को उसको गति देने का कार्य करना है तो वात के कालखंड में वह गति देने का कार्य सबसे उत्तम रीति से हो सकता है।
1: जी बिल्कुल।
2: अर्थात जब हम जो धातु या जो व्यक्ति जिस समय बलवान है उससे उसी का कार्य कराना चाहिए।
1: सही बात है।
2: बिल्कुल सरल सहज भाषा में तो जब हमारा वात बलवान है तो हमको वात का कार्य कराना चाहिए।
1: अच्छा।
2: तो जब हमको गति देने का कार्य है इसलिए हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। हमारे यहाँ वात भी 5 प्रकार की है, पित्त भी 5 प्रकार के है और कफ भी 5 प्रकार के, ये उनके कर्मों के हिसाब से डिवाइडेशन है।
1: अच्छा अच्छा जी।
2: तो वात में हम बोलते हैं ना, हम पूजा करते हैं तो उसमें प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, तो इसमें जो अपान वायु है वो अपने शरीर से मल भाग को बाहर निकालने का कार्य करती है। तो अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमको एक वेग आएगा और हमारा जो मल है उसको निष्कृषण करने में हमको सहायता होगी। इसीलिए हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। इसी तरीके से सोने का भी समय, रात्रि के समय हम जल्दी खाना और जल्दी सो जाना। जब हमारा पित्त का समय चल रहा है
1: जी
2: और रात का समय, तब हमको शरीर को रेस्ट दे रहे हैं
1: जी।
2: रात के खाने के बाद 100 कदम चलना, क्योंकि उसके बाद हमारा सारा शरीर शिथिल होने वाला है
1: जी।
2: और फिर हमको सोना, ऐसा एक संतुलन बनाने के कार्य दोषों में बता के रखा हुआ है।
1: तो सर, दिनचर्या में जैसे हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए, अब उसके बाद हमारी एक आगे की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए?
2: हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, उसके बाद हमारे इसमें जो नियम बताया हुआ है कि हमको शौच के लिए जाना है। सबसे पहला कर्म मैंने बताया कि ब्रह्म मुहूर्त के बाद हमको जो इच्छा है, तो उठने का क्या नियम बताया है, बहुत सरलता से बताया हुआ है कि रात्रि का भोजन पचा है या नहीं पचा है इसका चिंतन करना, और उसके बाद में बिस्तर से पैर नीचे करना।
1: अच्छा,
2: कि अगर हमने लेट खाया है,
1: है ना,
2: तो हमको थोड़ा सा, एक बहुत अच्छा सा उसमें सम्यक रूप से बताया कि आप थोड़ा सा 5 मिनट के लिए और सो जाइए।
1: अच्छा जी,
2: है ना। तो ये जो हम थोड़ा सा सोते हैं कि अलार्म बजने के बाद में हमको जो छोटी सी नींद आती है उसकी क्वालिटी अच्छी होती
1: है, जी ये तो होता है।
2: उसी तरीके से रात में जब हम इसका चिंतन करके हमको देखते हैं कि पेट थोड़ा भारी लग रहा है या ऐसा है, और हम थोड़ा सा सो जाते हैं, तो वो प्रक्रिया थोड़ी सी तेज होके फिर आपको हल्कापन शरीर में आता है।
1: अच्छा,
2: आप बिल्कुल प्रैक्टिकल इसको देख पाएंगे। और उसके साथ ही सवेरे उठते समय हमारे यहाँ कुछ नियम बताए कि कराग्र वस्ते करना है
1: जी, जी।
2: मतलब आपको हाथ जोड़ना है, हाथ में भगवान का आराधना, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, और उनको देखना। उसके बाद हमको हाथ को रब करना है, रगड़ना है। हाथ को गर्म करने के बाद उसको आंखों पे सेक देना है
1: जी।
2: मतलब हमारा शरीर एक सामान्य तापमान पे कार्य करता है, उसको प्रकृति के साथ जब तालमेल आप बिठा लो तब आप धरती पे पैर रखो। तो उसके पहले हम धरती के विषय भी क्षमा मांगते हैं, विनम्रता का भाव लाते हैं, साथ में हम उस टेम्परेचर के साथ एकाकार होने के बाद में बिस्तर से उठ के बाहर जाते हैं, क्योंकि हम रात भर अपने शरीर को ढके हुए रहते हैं
1: जी।
2: और हमारा शरीर का एक तापमान थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है
1: जी। तो यहाँ पर आप एक चीज क्लियर कीजिए सर, कि ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या है?
2: ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो बहुत स्पष्ट बता के रखा है कि सूर्य उदय के 48 मुहूर्त पहले।
1: अच्छा जी।
2: मतलब घोर अंधकार वाला जो समय होता है 3:30 से 4 बजे का, 4-4:30 बजे का जो समय रहता है वो ब्रह्म मुहूर्त वाला है, और उस समय हमको उठना चाहिए।
1: तो हम अब उठ गए और हम फ्रेश भी हो गए, उसके बाद फिर हमारी क्या दिनचर्या है?
2: इसके बाद में हमको अपना दंत धावन, अपने दांतों को जो मुंह में है, क्योंकि रात भर का जो भी कफ है
1: जी,
2: जो सिक्रेशंस हैं, जो हमने रात को भोजन किया वो हमारे मुख में है और उस कफ का आवरण है। मैंने फिर बताया कि जो लोग सूर्योदय के बाद उठते हैं वो कफ का कालखंड होता है।
1: अच्छा,
2: तो अगर आपको प्रैक्टिकल देखना है तो सूर्योदय के बाद उठने के बाद आपके मुंह में एक कफ का आवरण मिलेगा। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो वो कफ के आवरण का प्रमाण बहुत कम हो जाएगा।
1: अच्छा,
2: और आपके जितने मुख के रोग है उसमें कफ का आवरण रहेगा तो ही मुख के रोग बढ़ने वाले हैं।
1: अच्छा अच्छा अच्छा,
2: जिसके कारण हम बोलते हैं कि मंजन करना है। अब मंजन कैसे करना है, तो मंजन के लिए अपने शास्त्र में बताया कषाय चीज, जैसी चीज जो थोड़ी सी रूखीपन लेके आए, जो कफ का शमन करे।
1: अच्छा,
2: तो इसलिए हमने दतून बताई, है ना। हम राख की बात की तो राख मतलब बहुत स्पष्ट है कि जो कंडे की राख होती है उसको ऊपर के हटा के जो बीज का सफेद राख होती है उसका इस्तेमाल करना, और एकदम महीन
1: महीन जी, है
2: ना? उसको आप जब घुमाएंगे तो वो सारा कफ निकल जाएगा और उससे मुंह में एक सूखापन आपको समझ में आएगा, कफ का आवरण खत्म हो जाए। तो हमको मंजन उससे करके फिर अच्छे से कुल्ला कर लेना चाहिए।
1: तो सर, जैसे आपने बताया कंडे की राख, और वो भी कंडा जो है वो मतलब बिल्कुल बारीक राख, तो हर एक व्यक्ति को तो आज तो उपलब्ध नहीं है या वो अरेंज नहीं कर सकता, तो उसका कोई वैकल्पिक उपाय है?
2: वो एक प्रकार है, हमने उसका एक उदाहरण दिया था, क्योंकि हमारे जो बहुत सारे जैसे बबूल,
1: हाँ,
2: हम बोलते हैं बबूल, नीम है, बबूल है, इनके जो दांत होती है, आपका वज्रदंती है,
1: अच्छा
2: है ना,
1: जी जी,
2: इनका उपयोग होता है ना। तो ऐसे जो औषधि द्रव्यों के जो चूर्ण होते हैं उनके माध्यम से हम अपना मंजन कर सकते हैं। और एक सरल सा है कि हमारे यहाँ पहले मुख स्वच्छता में, खाना खाने के बाद पंगत में बैठने के बाद नमक से भी,
1: हाँ, जी, जी, मुंह,
2: क्योंकि
1: जी,
2: नमक जो रहता है वो कफ के आवरण को हटा देता है
1: जी।
2: पहले इसका लोगों ने मना किया, फिर टूथपेस्ट में नमक की मार्केटिंग करने लगे, तो वो आपको उस कफ के आवरण को हटाने वाली जो चीजें हैं उनको अगर आप इंक्लूड करेंगे तो आप अपने मुख को स्वस्थ रख पाएंगे। और ऐसा करना है कि वो इतने कड़े ना हो कि आपके मसूड़ों को और दांतों को नुकसान पहुंचाए, इसलिए जितना सॉफ्ट और जितना महीन होगा उतना उसका ध्यान रखना है।
1: सर एक चीज और आती है कि ज्यादातर ऐसा आता है कि सुबह उठकर आपसे जितना भी पानी पीते बने कम से कम एक ग्लास आप पानी पिए, तो ये क्या दिनचर्या में होना चाहिए हमारे?
2: निश्चित रूप से हमारे यहाँ उषापान ऐसा शब्द इस्तेमाल किया है।
1: अच्छा जी,
2: उषापान मतलब शरीर के तापमान का गुनगुना पानी हमको पीना है, ना ठंडा पीना है ना गर्म पीना है। प्रकृति के हिसाब से जिसकी जैसी प्रकृति है उसके हिसाब से हमारे पानी का प्रमाण कम ज्यादा हो सकता है, पर एक लीटर एक गिलास से दो तीन गिलास तक पर्याप्त है, इससे अच्छा। ज्यादा पानी की
1: आवश्यकता
2: एक वयस्क व्यक्ति को
1: जी। तो ये आदत तो हमें अपने बच्चों को बचपन से ही डलानी चाहिए कि
2: उसके आजकल बोलचाल में हम बहुत आसानी से बोलते हैं ना कि हमारा शरीर जो है 70% पानी से बना है।
1: जी जी,
2: तो पानी की रिक्वायरमेंट तो होनी ही चाहिए। तो उसके कारण भी हमको, क्योंकि सवेरे लेंगे तो वो थोड़ा सा आपको फायदा ही करेगा, पर शरीर तापमान का पानी लीजिए।
1: अच्छा, नहीं ना तो बहुत गर्म ना ठंडा। अब हमने मंजन कर लिया, उसके बाद अब दिनचर्या में आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या है?
2: इसके बाद जो है हमको जो है आंखों का कान नाक इनकी स्वच्छता भी रखनी चाहिए, स्नान करना चाहिए।
1: हाँ जी,
2: है ना, स्नान करने से उसका बहुत महत्व है कि उससे आपकी अग्नि प्रज्वलित होती है।
1: अच्छा।
2: आपके शरीर में लाघवता आती है, प्रसन्नता आती है, और आपका जो फ्रेश तो स्वाभाविक है हमारा जितना आलस्य उससे खत्म होता है, पेट की अग्नि भी दीप्त हो रही है, मतलब हमको उसके बाद भूख भी लगने वाली
1: है,
2: और हमारी दिनचर्या को एक अच्छा मिलना चाहिए। तो शरीर की स्वच्छता, लोकल हाइजीन जो हम मेंटेन करते हैं, जैसा ओरल हाइजीन हमने मेंटेन किया
1: जी,
2: वैसे हमको जितनी अपनी ज्ञानेंद्रियां हैं उनको भी स्वच्छ रखना चाहिए। और उसको स्वच्छ रखने के बाद स्नान, तो हमारे पूरे शरीर को स्वच्छ रखने के बाद हम आगे बढ़ेंगे।
1: अच्छा।
2: उसके बाद में हमको निश्चित रूप से जो अल्पाहार, तो उसके पहले हम भारतीय परंपरा में क्या करते हैं कि अपना जितना कार्य रहता है समर्पण से करते हैं, तो पूजा करते हैं या भगवान के सामने अपना शांत मन से जो सवेरे का अल्पाहार हमको करना चाहिए।
1: तो सर अभी तो हम जो चीज देखते हैं कि नाश्ता जो होना चाहिए वो बहुत हैवी हो जाना चाहिए, और फिर उसके बाद लंच जो हो आपका वो, क्योंकि हमारा समय जो है बहुत आगे खसक गया है, लंच का लंच टाइम जो है वो 1:30 बजे 2 बजे वाला हो गया, तो वो लाइट हो जाए, बट जो सुबह का ब्रेकफास्ट जिसको हम बोलते हैं, जिसको आप अल्पाहार बोल रहे हैं, वो बहुत हैवी होना चाहिए। ये सही है ये कंसेप्ट या हमारे हिसाब से गलत है आयुर्वेद के हिसाब से?
2: सही गलत का विषय नहीं है, एरिया एरिया वाइज आपको चेंजेस मिलेंगे। आप उत्तर भारत में जाएंगे तो वहाँ पे परंपरागत रूप से उनका जो सवेरे का नाश्ता रहता है वो बहुत हैवी रहता है।
1: जी जी, पराठे, आलू के पराठे,
2: सब चीजें। हमारे यहाँ पे उतना हैवी नाश्ता हम नहीं करते, लेकिन इसमें सवेरे आपको कुछ ना कुछ अल्प मात्रा में ही अन्न ग्रहण करना चाहिए।
1: अच्छा।
2: हमारा कंसेप्ट बहुत सीधा है, हमको दोपहर का जो भोजन है वह 9:10 से लेके 12 बजे के बीच में, मैंने समय का कालखंड थोड़ा सा ज्यादा रखा है, लेकिन हमको इस बीच में हमको कर ही लेना चाहिए।
1: अच्छा।
2: तो 12 बजे तक अगर आपका भोजन हो जाता है तो वो भोजन की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए। सादा सा नियम है कि दोपहर का भोजन की मात्रा सबसे ज्यादा होनी चाहिए, रात का भोजन दोपहर के भोजन से कम होना चाहिए।
1: अच्छा।
2: ऐसा एक हमारे यहाँ पे नियम है। दोपहर के भोजन के बाद हमको बाई करवट लेटना है।
1: अच्छा।
2: और रात के खाने के बाद हमको कम से कम 100 कदम चलना है, स्वस्थ रहने का ये नियम है, क्योंकि हम दिन भर काम करते हैं, हमारे शरीर की गति बनी रहती है, रात को हमको शिथिलता के ऊपर, तो खाना खाने के तुरंत इमीडिएट बाद नहीं सोना है, उसके 2 घंटे बाद सोना है।
1: जी।
2: तो इस

0: क्योंकि हमको स्वस्थ रहने के लिए आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये तीन मुख्य सूत्र दिए हुए हैं। तो निद्रा का महत्व इसी से सिद्ध हो जाता है। तो जब हम रात को सो रहे हैं तो नियम मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि रात्रि भोजन के बाद में आपको कम से कम 100 कदम चलना है और 1.5 से 2 घंटे बाद ही बिस्तर पे जाना है
1: भोजन के।
0: भोजन के
1: जी
0: है ना, तो इससे हमारा जो भारीपन होता है पेट का वो भी कम होगा और रात में जो डाइजेशन की समस्या आने वाली है वो नहीं आएंगी।
1: अच्छा,
0: इसके साथ में हमारे यहाँ दिनचर्या में कुछ चीजें जुड़ी हुई थी। जब आप बिस्तर पे जाते हैं तो आपको पैर के तलवों पे घी और पानी की मालिश करनी चाहिए।
1: अच्छा,
0: उसको तेल पे जितनी तेजी से उसको रगड़ेंगे उसके कारण हमारे दिन भर के जो पैरों की थकान होती है वो भी कम होती है और हमारा मस्तिष्क भी शांत होता है। हमारा जो सोने का बिस्तर होना चाहिए वो बिल्कुल सम्यक होना चाहिए, सरल हो, बहुत ऊंची गर्दन, तकिया भी नहीं लेनी है।
1: जी
0: मुख्य रूप से हमको गर्दन पे सहारा देके सोना चाहिए
1: जी
0: और जब हम सो रहे हैं तो शांत चित्त हो। इसीलिए फिर से बहुत सारे लोग उस समय हमारे इष्ट का ध्यान करते हैं
1: जी
0: कि
1: जी
0: आज हमने दिन भर में जो भी गलतियां की है उसकी क्षमा याचना करके हमको फ्रेश होने के लिए। तो जब आपका मन स्थिर होगा तभी आपकी नींद की गुणवत्ता अच्छी होगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमको सोना चाहिए। तो और हमारे पैरों के मैंने मसाज के बारे में आपको बता ही दिया।
1: जी जी
0: आँखों के में भी यह है कि हमको उसमें आई ड्रॉप वगैरह कुछ डाल लेना चाहिए तो दिन भर का जो
1: जी
0: हमारे आँखों पे स्ट्रेन है वो ठीक होता है। साथ में रात में सोते समय 1 से 2 बूंद नाक में गाय का घी अवश्य डालें,
1: अच्छा,
0: क्योंकि हमारा जो नाक है वो हमारे मस्तिष्क का सिर का द्वार ऐसा कहा गया है।
1: अच्छा,
0: और घी जो होता है वो धी धृति स्मृति आपके मस्तिष्क को ताकत देता है, तो आपके नींद को भी इम्प्रूव करता है और आपके पूरे जितने सेंस ऑर्गन्स हैं उसको हेल्दी रखने में मदद करता है।
1: अच्छा,
0: तो इस तरीके से हम दिन भर के जितने प्रभाव को कितना न्यूट्रलाइज कर सकते हैं ऐसे सभी चीजों को सम्मिलित करके रात को आराम से बिस्तर पे, नरम बिस्तर पे हमको सो जाना चाहिए।
1: तो सर उसमें भी एक चीज आती है कि बाएं करवट और दाईं करवट का क्या रोल रहता है इसमें?
0: ऐसा नहीं है, वो हर व्यक्ति का अपना अपना पैटर्न होता है।
1: अच्छा अच्छा जी
0: सीधा सो सकते हैं, दाएं सो सकते हैं, बाएं सो सकते हैं, और रात में व्यक्ति अपने करवट ले, पर वो सुखासन में होना चाहिए, उसके लिए सुखपूर्वक हो ताकि उसका मस्तिष्क हमारी नींद जिसमें आए,
1: अच्छा,
0: क्योंकि वो नींद की क्वालिटी अच्छी होगी
1: जी
0: तो हम सम्यक रूप से रहेंगे। साथ ही हमारा जो रात में हम 6 घंटे की नींद हम बोलते हैं
1: जी
0: तो ये 6 घंटे की नींद में हमारा शरीर को शांत होना चाहिए, मसल्स रिलैक्स हो जाए, अंदर के अंग रिलैक्स हो जाए, और इन नींद के बीच में एक गहरी नींद आती है
1: जी
0: वो जो नींद होती है वो हमारे मस्तिष्क को शांत करती है, उसमें हमारे विचारों का ऊहापोह नहीं रहता है
1: जी
0: है ना। तो ऐसा जब शांत मन होता है तभी हमारी नींद की क्वालिटी को हम उत्तम मिलते हैं। जब सवेरे उठते हैं तब हमको हल्कापन लगना चाहिए, आसानी से आंखें खुलनी चाहिए, फ्रेश लगना चाहिए,
1: हम
0: है
1: खुश
0: ना,
1: होके उठे,
0: खुश होके
1: जी
0: उठे, तो हम सम्यक नींद, एक अच्छी नींद जिसको हम बोलते हैं वो इसमें सामने हमको मिलती है, इसका चिंतन करना चाहिए।
1: चलिए सर, आपने आज इतनी आयुर्वेद का जो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है उसे समझाया, हमारी क्या दिनचर्या होना चाहिए, ये जो 5 पंच महाभूत है जिन्हें 5 तत्व जो कहा गया है उनसे हमारा जो शरीर बना है, उनके साथ जो वात पित्त कफ इनका जो बैलेंस है वो हमारे शरीर में किस तरह से हो सकता है, इसके बारे में आपने इतनी महत्वपूर्ण और सार गर्भित जानकारी दी। सर आप यहाँ आए, अमूल्य समय आपने हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जितने ज्ञान में से मैं जितना आपके समक्ष बोला हूँ उससे आपके श्रोताओं को स्वास्थ्य का लाभ होगा, यही इच्छा के साथ में आप सभी को प्रणाम।
1: सर बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। कार्यक्रम में मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी और समन्वय सहयोग सतीश बाथम का। मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो मित्र पूर्वा खले। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी विवेकानंद जी का उनके शिष्यों के साथ तथा विभिन्न व्यक्तियों के साथ समय समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर वार्तालाप होता था। ये वार्तालाप धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक आदि विभिन्न विषयों पर हुए थे और उनके द्वारा हमें स्वामी जी के उद्बोधन तथा स्फूर्तिदायक विचारों की जानकारी प्राप्त होती है।
1: हमारे देश का पुनरुत्थान किस प्रकार हो सकता है तथा फिर से अपने प्राचीन गौरव को कैसे प्राप्त कर सकता है, इसका भी दिग्दर्शन स्वामी जी ने अपनी ओजपूर्ण वाणी में इन वार्तालापों में किया है। राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए व्यक्ति का पुनर्निर्माण पहले होना चाहिए, व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। इस सत्य का भी यथार्थ ज्ञान हमें इन वार्तालापों से होता है। अब आप प्रियनाथ सिंह जी से स्वामी जी के वार्तालाप के कुछ अंश सुनिए।
2: स्वामी जी उन दिनों कलकत्ते में बलराम बसु के यहाँ ठहरे हुए थे। एक दिन मैं भेंट करने पहुंच गया। जापान और अमेरिका पर बड़ी देर तक चर्चा होती रही। मैंने पूछा, स्वामी जी पश्चिम के देशों में आपके कितने शिष्य हैं?
3: बहुत से हैं।
2: 2-3 हजार?
3: शायद अधिक।
2: क्या आपने उनको मंत्र दीक्षा दी है?
3: हाँ।
2: आपने उन्हें मंत्रों का उच्चार करने की अनुमति दे दी?
3: हाँ।
2: आपने कैसे अनुमति दी महाराज?
3: कि जिन्हें मैंने दीक्षित किया है मेरे सब शिष्य हैं। मैं स्वीकार करता हूँ कि मंत्रोच्चार का अधिकार नहीं है, पर ब्राह्मण का पुत्र सर्वदा ब्राह्मण ही नहीं होता, यद्यपि उसके ब्राह्मण होने की संभावना अवश्य रहती है। क्या तुमने नहीं सुना, बाग बाजार के अघोर चक्रवर्ती का भतीजा दलित बन गया और दलितों का सब काम करता है, क्या वो ब्राह्मण का पुत्र नहीं था?
2: स्वामी जी जरा विस्तार से समझाइए।
3: जाति से ब्राह्मण होना और गुणों से ब्राह्मण होना, ये दो भिन्न बातें हैं। भारतवर्ष में ब्राह्मण जन्म लेने से ही हर कोई ब्राह्मण कहलाने लगता है, पर पश्चिम में यदि कोई ब्राह्मण गुण युक्त हो तो उसे ब्राह्मण ही मानना चाहिए। जिस प्रकार सत्व, रज, तम तीन गुण हैं, उसी प्रकार ऐसे कुछ गुण हैं दुर्भाग्यवश आज इस देश में क्षात्र व ब्राह्मण गुणों का ह्रास हो रहा है, पर पश्चिम के देशों में लोग क्षत्रियत्व तक पहुंच चुके हैं और क्षत्रियत्व से एक सीढ़ी आगे ही तो ब्राह्मणत्व है। उनमें से कई लोगों ने तो ब्राह्मण कहलाने योग्य योग्यता भी प्राप्त कर ली है।
2: तो जो स्वभाव से सात्विक हैं वही आपके अनुसार ब्राह्मण है?
3: बिल्कुल। जैसे हर एक व्यक्ति में सत्व, रज और तम तीनों गुण न्यूनाधिक अंश में विद्यमान हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण व क्षत्रिय आदि के गुण भी सब मनुष्यों में जन्मजात ही कमोबेश मात्रा में विद्यमान रहते हैं। समय समय पर उनमें से एक न एक गुण अधिक प्रबल होकर उनके कार्यकलापों में प्रकट होता रहता है। आप मनुष्य का दैनिक जीवन क्रम ही लें। जब वो अर्थ प्राप्ति के लिए किसी की सेवा करता है, जब वो स्वयं अपने लाभ के लिए कोई क्रय विक्रय करता है, जब वो अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाता है, तो उसमें क्षात्र भाव सर्वोपरि होता है, और जब वो ईश्वर चिंतन में लगता है, भगवान का कीर्तन करता है, तो वो ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लेता है। ये स्पष्ट है कि मनुष्य के लिए एक जाति से दूसरी जाति में चला जाना संभव है। यदि नहीं तो विश्वामित्र ब्राह्मण कैसे बन सके और परशुराम क्षत्रिय कैसे बन सके? पर इस बात को अभी रहने दो।
0: स्वामी जी ने इसके पश्चात पश्चिम की व्यवहारवादिता की बहुत प्रशंसा की और बताया कि वे धर्म साधना में कितनी व्यवहारिकता प्रकट करते हैं।
2: सच है महाराज, मैंने भी सुना है कि जब वे धर्म साधना करने लगते हैं तो उनकी आध्यात्मिक और मानसिक शक्तियां शीघ्र ही जागृत होने लगती हैं। अभी कुछ दिन हुए स्वामी शारदानंद जी को उनके एक पाश्चात्य शिष्य का पत्र आया, जिसमें ज्ञात हुआ कि 4 मास की साधना से उनकी कितनी अधिक आध्यात्मिक प्रगति हो गई है।
3: देखा ना, अब तुम समझे कि पश्चिम में ब्राह्मण हैं या नहीं। आज भी गुरु शिष्य को दीक्षा देता है, पर ये उसका व्यवसाय बन गया है। और आजकल गुरु शिष्य संबंध भी तो कितना विचित्र हो गया है। अगर गुरु के घर में खाने को दाने नहीं रहते तो गुरु पत्नी उसको ये बात बताती है और बोलती है, अपने किसी यजमान के यहाँ एक बार फिर हो आओ, सारे दिन चौसर खेलने से तो पेट भरेगा नहीं। और गुरु जी जवाब देते हैं,
4: अच्छा अच्छा सुन लिया, अब चुप भी तो रहो, कल मुझे याद दिलाना। अभी अभी मैंने सुना है कि अपने एक यजमान के यहाँ अच्छी कमाई हुई है। उनके यहाँ बहुत दिनों से नहीं गया हूँ, कल चला जाऊंगा।
3: यही तो है आपके पुरोहितों और कुल गुरुओं की दशा। पाश्चात्य देशों में ऐसा पतन नहीं हुआ है, वहां के धर्म गुरु अपने से कहीं अच्छे हैं।
2: शनिवार 22 जनवरी सन 1898 का दिन था। मैं प्रातःकाल ही बलराम बाबू के घर पहुंच गया। स्वामी जी वहीं ठहरे हुए थे, उनका कमरा श्रोताओं से भरा था। स्वामी जी कह रहे थे,
3: आज हमें श्रद्धा की आवश्यकता है, आत्मविश्वास की आवश्यकता है। बल ही जीवन और निर्बलता ही मृत्यु है। हम आत्मा हैं, अजर अमर मुक्त और शुद्ध। फिर हमसे पाप कार्य कैसे संभव है? असंभव। इस प्रकार की दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए। इस प्रकार का अडिग विश्वास हमें मनुष्य बना देता है, देवता बना देता है। पर आज हम श्रद्धाहीन हो गए हैं और इसलिए हमारा और देश का पतन हो रहा है।
2: हम श्रद्धाहीन कैसे बन गए?
3: बचपन से हमारी शिक्षा ही ऐसी रही है, उसमें निषेध और नकार का ही प्राबल्य है। हमने यही तो सीखा है कि हम नगण्य हैं, नाचीज हैं। कभी भी हमें ये नहीं बताया गया कि हमारे देश में भी महान पुरुषों का जन्म हुआ है। हमें एक भी तो अच्छी बात नहीं सिखाई जाती। हमें हमारे हाथ पैर तक तो चलाना नहीं आता। हमें इंग्लैंड के इतिहास की तो एक एक घटना तिथि याद हो जाती है। पर दुख है, हमारे देश के गौरवमय अतीत से हम अनभिज्ञ ही रहते हैं। हम केवल निर्बलता का पाठ पढ़ते हैं। परतंत्र होने से हमें अब यह विश्वास हो गया है कि हम शक्तिहीन हैं और परावलंबी हैं, हम असमर्थ हैं और निकम्मे हैं।
2: क्या इसी कारण से हम श्रद्धाहीन हो गए?
3: श्रद्धा और निष्ठा का ह्रास होने के सिवाय और इसका क्या परिणाम होगा? अब हमें पुनः एक बार वो सच्ची श्रद्धा और निष्ठा का भाव जागृत करना होगा, हमारे सोए हुए आत्मविश्वास को जगाना होगा। तभी आज देश के सामने जो समस्याएं हैं वे सुलझाई जा सकेंगी।
2: ये क्या तभी संभव होगा? केवल श्रद्धा से ही हमारे समाज के असंख्य दोष कैसे दूर होंगे? देश में जो बुराइयां कुरीतियां हैं उन्हें दूर करने के लिए राजनीतिक पार्टियां प्रचार और आंदोलन कर रही हैं, तथा अंग्रेज सरकार से प्रार्थना भी कर रही हैं। क्या इससे अच्छा भी अन्य कोई मार्ग है? श्रद्धा का इन सब बातों से क्या संबंध है?
3: पहले ये बताओ कि समाज के दोष दूर करने की आवश्यकता आपको है या सरकार को? यदि आपको आवश्यकता है तो क्या सरकार उन्हें दूर करेगी या आपको स्वयं ही उन्हें दूर करना होगा?
2: पर ये तो सरकार का कर्तव्य है कि प्रजा की आवश्यकताएं समझे और उन्हें पूरी करें। यदि हम हर वस्तु के लिए राजा का मुंह नहीं ताकें तो और किसका ताकें?
3: भिकमंगों की इच्छा कभी पूरी नहीं होती। माना सरकार आपको आपकी आवश्यकता की वस्तुएं देने को एक बार राजी भी हो जाए, पर प्राप्त होने पर उन्हें सुरक्षित और संभाल कर रखने वाले मनुष्य कहाँ है? इसलिए पहले आदमी मनुष्य उत्पन्न करो। हमें अभी मनुष्यों की आवश्यकता है और बिना श्रद्धा के मनुष्य कैसे बन सकते हैं?
2: पर बहुसंख्यक लोगों का मत ऐसा नहीं है।
3: जिसे तुम बहुसंख्यक कहते हो वो मूर्खों और साधारण बुद्धि वालों की बहुसंख्या है। सभी देशों में जिनके पास विचार करने के लिए मस्तिष्क है ऐसे व्यक्ति कम होते हैं। यही कुछ मेधावी और विचारशील व्यक्तित्व सर्वत्र अगुआ होते हैं और बहुसंख्या सदैव उनका अनुकरण करती है। यही अच्छा भी है, क्योंकि जब तक नेताओं के बताए हुए मार्ग पर बहुसंख्या चलती रहती है तब तक सब काम ठीक से चलता रहता है। जो सोचते हैं कि वे इतने ऊंचे हैं कि किसी के सामने सर झुकाना उनकी शान के खिलाफ है वे मूर्ख हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी दुर्बुद्धि से अपना विनाश कर लेते हैं।
2: फिर समाज सुधार कैसे होगा?
3: आप समाज सुधार की बातें करते हैं, पर आप करते क्या हैं? आपके समाज सुधार का मतलब होता है विधवा विवाह या स्त्री स्वातंत्र्य या ऐसी कोई और बात। क्या ऐसा नहीं है? और ये भी किसी वर्ग विशेष तक ही सीमित रहता है। इस तरह के सुधार की योजना से कुछ लोगों का भला अवश्य होता है, पर समूची जाति या राष्ट्र को इससे क्या लाभ? ये तो सुधार नहीं, एक प्रकार का स्वार्थ ही है। अपने घर को झाड़ बुहार कर साफ रखना और दूसरों के घर ढहने देना।
2: तो आपका तात्पर्य यह है कि समाज सुधार की कोई आवश्यकता ही नहीं?
3: ये कौन कहता है? अवश्य समाज सुधार की आवश्यकता है, पर जिसे आप समाज सुधार कहते हैं उससे सर्वसाधारण जनता, भारत की कोटि कोटि जनता का क्या हित होगा? विधवा विवाह, स्त्री स्वातंत्र आदि जिन सुधारों के लिए आप चिल्ला रहे हैं, उनकी भारत की बहुसंख्यक जनता को आवश्यकता ही नहीं है। उनमें विधवा विवाह की प्रथा भी है और स्त्रियों को स्वतंत्रता भी प्राप्त है, इसलिए वे इन बातों को सुधार ही नहीं मानते। मेरा तात्पर्य ये है कि ये सब दोष हम में श्रद्धा के अभाव से ही घुस आए हैं और दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। पर मैं ये चाहता हूं कि रोग समूल नष्ट किया जाए, नहीं तो वो फिर बढ़ जाएगा। सुधार अवश्य हो, कौन इतना मूढ़ है जो ये नहीं मानता। उदाहरण के लिए, हमें अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना जाति की शारीरिक निर्बलता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है।
0: उस दिन सूर्य ग्रहण था, इसलिए प्रियनाथ जी बोले, अब मैं गंगा स्नान के लिए जाऊंगा, फिर कभी सेवा में उपस्थित होऊंगा, और प्रणाम कर चले गए। एक दिन एक शिष्य ने स्वामी जी के सम्मुख अंतर विवाह का विषय छेड़ा और पूछा,
4: भिन्न भिन्न जातियों और प्रांतवासियों में अंतर विवाह कैसे प्रारंभ किया जाए?
3: मैं भिन्न धर्मावलंबी जातियों या प्रांतवासियों में अंतर विवाह करने के पक्ष में नहीं हूं। कम से कम आज तो उससे समाज के बंधन बहुत ढीले पड़ जाएंगे और कई अनिष्ट होने की आशंका है। मैं तो अभी केवल समधर्म के अनुयायियों के ही परस्पर अंतर विवाह का समर्थन करता हूँ।
4: तो भी इससे कई जटिलताएं उत्पन्न होंगी, जैसे कि मेरी पुत्री बंगाल में जन्मी और वहीं उसका लालन पालन हुआ है, और मैं उसकी किसी महाराष्ट्रियन या मद्रासी से शादी कर दूं तो वो ना अपने पति की भाषा समझेगी और ना उसका पति उसकी भाषा समझेगा, और फिर उनके रहन सहन, उनके रीति रिवाज में भी बहुत अंतर है। इस तरह कई अड़चने हैं, और फिर समाज तो एक तूफान खड़ा कर देगा।
3: अभी वो समय बहुत दूर है जब इस प्रकार के विवाह संभव हो सकेंगे, और आज तो ऐसे विवाहों के एकदम प्रारंभ कर देने का कोई औचित्य भी नहीं प्रतीत होता। काम करने का एक गुप्त गुरु मंत्र ये है कि जिधर कम से कम विरोध हो उस रास्ते चलो। इसलिए प्रारंभ में ही अपनी जाति की उपजातियों में अंतर विवाह शुरू होने चाहिए। बंगाल के कायस्थों का ही उदाहरण लो, उनमें कई उपजातियां हैं, जैसे उत्तराढ़ी, दक्षिण राढ़ी, बंगज आदि, और उनमें परस्पर विवाह नहीं होते। अब दक्षिण राढ़ी और उत्तराढ़ियों में परस्पर विवाह संबंध शुरू करने चाहिए, और यदि ये अभी संभव नहीं है तो बंगजों और दक्षिण राढ़ियों के विवाह ही शुरू हों। इस तरह आज जो चीज विद्यमान है उसी में यथासाध्य सुधार करें। आखिर सुधार बनी बनाई चीज को उखाड़ फेंकने में ही तो नहीं है ना?
2: अच्छा, यही सही, पर इससे लाभ क्या होगा?
3: क्या आप नहीं देखते कि शादियों से एक ही उपजाति तक विवाह संबंध सीमित होने से हमारे समाज में एक ऐसी स्थिति आ गई है कि प्रकारांतर से निकट के कुटुंबियों और आत्मियों में ही विवाह हो रहे हैं, और इससे हमारे समाज की शरीर संपदा का ह्रास हो रहा है। परिणाम स्वरूप सभी प्रकार की बीमारियां और बुराइयां उसमें घुस रही हैं। एक सीमित संख्या के व्यक्तियों में परिभ्रमण करते करते रक्त दूषित हो गया है, और जन्म से ही नवजात शिशुओं को वंशगत रोग प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार की निर्बल संतति रोग के कीटाणुओं के आक्रमण का अवरोध करने में नितांत असमर्थ होती है। विवाहों की परिधि विस्तृत करने पर ही हम हमारी संतति में नए और ताजे खून का संचार कर पाएंगे, जिससे उसकी आजकल के विविध रोगों से रक्षा हो सके।
2: महाराज, आपका बाल विवाह के संबंध में क्या मत है?
3: बंगाल के शिक्षित वर्ग में बाल विवाह की प्रथा धीरे धीरे नष्ट हो रही है। लड़कियों का विवाह भी पहले की अपेक्षा एक दो वर्ष अधिक होने पर ही होने लगा है, किंतु इसका कारण समाज सुधार की भावना नहीं अर्थाभाव है। किसी भी कारण से क्यों ना हो, विवाह की उम्र और भी अधिक हो जानी चाहिए, पर बेचारा बाप करे क्या। जो ही लड़की जरा बड़ी होती है, माँ से लेकर अन्य सभी स्त्रियां और पड़ोसिने यही एक टेर लगाने लगती हैं कि वर की खोज की जाए, और जब तक वर नहीं मिल जाता तब तक बेचारे बाप को चैन नहीं लेने देती। सरकार ने कानून बनाकर 12 वर्ष की कन्या से विवाह दंडनीय कर दिया, तो ये सब धर्मगुरु चिल्लाने लगे कि धर्म नष्ट हो गया, मानो 12-13 वर्ष की कन्या के माँ बनने में ही धर्म रह गया हो। इसलिए सरकार भी यही सोचेगी कि वाह, क्या धर्म है इन लोगों का, और ये आंदोलन कर राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हैं।
5: तो आपके मत से लड़के लड़कियों का विवाह ज्यादा उम्र हो जाने पर ही होना चाहिए?
3: अवश्य, पर साथ साथ उन्हें अच्छी शिक्षा भी दी जाए, नहीं तो भ्रष्टाचार और व्यभिचार बढ़ने की आशंका है। शिक्षा से मेरा तात्पर्य आधुनिक शिक्षा की प्रणाली से नहीं, वरन ऐसी शिक्षा से है जो भावात्मक हो तथा जिससे स्वाभिमान और श्रद्धा के भाव जागे। केवल किताब पढ़ा देने से कोई लाभ नहीं, हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिससे चरित्र निर्माण हो, मानसिक शक्ति बढ़े, बुद्धि विकसित हो और देश के युवक अपने पैरों पर खड़े होना सीखें।
5: हमारे नारी समाज में भी कई सुधारों की आवश्यकता है।
3: इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त होने पर स्त्रियां अपनी समस्याएं स्वयं ही हल कर लेंगी। अब तक तो उन्होंने केवल असहाय अवस्था में दूसरों पर आश्रित हो जीवन यापन करना और थोड़ी सी भी अनिष्ट या संकट की आशंका होने पर आंसू बहाना ही सीखा है। पर अब दूसरी बातों के साथ साथ उन्हें बहादुर भी बनना चाहिए। आज के जमाने में उनके लिए आत्मरक्षा करना सीखना भी बहुत जरूरी हो गया है। देखो झांसी की रानी कैसी बहादुर थी।
5: आप जैसा बता रहे हैं यह एक नई बात है और मुझे मालूम पड़ता है कि वैसी शिक्षा व्यवस्था होने में काफी समय लगेगा।
3: फिर भी हमें यथाशक्ति प्रयत्न तो करना होगा। हमें सिर्फ स्त्रियों को ही शिक्षा नहीं देनी है, वरन अपने को भी शिक्षित करना है। साथ ही साथ महिलाओं को विज्ञान व अन्य विषय, जिनसे कि केवल उनका ही नहीं अन्य लोगों का भी हित हो, सिखाए जाएं। ये जानकर कि परोपकार के लिए ये करना है, भारतीय नारी प्रसन्नता से और सरलता पूर्वक कोई भी विषय सीख लेगी। हमारी मातृभूमि के उत्थान के लिए आज उसे ऐसे पुण्य संकल्प, पवित्र आत्मा ब्रह्मचारियों व ब्रह्मचारिणियों की आवश्यकता है।
5: इससे देश का किस तरह भला होगा?
3: उनके आचरण से तथा सर्व साधारण के लिए राष्ट्रीय आदर्श में उपस्थित करने के उनके प्रयत्नों से लोगों के विचारों और आशा आकांक्षाओं में एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। आज क्या स्थिति है, माँ बाप येन केन प्रकारेण अपनी कन्या का विवाह निपटा देना चाहते हैं, चाहे वो 9 वर्ष की हो या 10 वर्ष की। और यदि 13 वर्ष की अवस्था में ही उसकी संतान हो जाती है तो समूचे परिवार के लिए ही महोत्सव हो जाता है। यदि इन विचारों का प्रवाह बदल दिया जाए तो पुरातन श्रद्धा के पुनरागमन की कुछ आशा हो सकती है। और जो ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन यापन करेंगी उनका तो कहना ही क्या, उनकी स्वयं में कितनी महान श्रद्धा और विश्वास होगा और उनसे कितना हित और कल्याण होगा।
0: एक दिन संध्या के समय बलराम बाबू के घर रामकृष्ण मिशन की साप्ताहिक सभा भरी थी। मठ से स्वामी तुरियानंद, स्वामी योगानंद, स्वामी प्रेमानंद व अन्य लोग भी आए हुए थे। स्वामी जी बरामदे में विराजमान थे और चारों ओर बरामदे में लोग भरे थे। जब जब स्वामी जी कलकत्ता आते इसी तरह लोग जुट जाते थे।
1: सभा में उपस्थित कुछ लोगों ने ये सुन रखा था कि स्वामी जी बहुत अच्छा गाते हैं, इसलिए वे स्वामी जी से कोई भजन सुनने के इच्छुक थे। ये जानकर मास्टर महाशय यानी श्री महेंद्र नाथ गुप्त ने स्वामी जी के समीप बैठे कुछ सज्जनों के कान में कहा कि स्वामी जी से गाने का आग्रह करो। स्वामी जी ने उनका आशय ताड़ लिया और वे मुस्कुराकर बोले,
3: मास्टर महाशय, ये आपस में क्या कानाफूसी चल रही है, जरा जोर से बोलें।
1: मास्टर महाशय के प्रार्थना करने पर स्वामी जी अपने सुरीले कंठ से ये गीत

0: ऐसा प्रतीत होता था मानो वीणा बज रही हो। भजन समाप्त होने पर वे मास्टर महाशय से बोले,
1: अब तो खुश हो ना, पर अब और नहीं गाऊंगा, नहीं तो मैं भावावेश में आकर गीत की मादकता में डूब जाऊंगा और पश्चिम में व्याख्यान देते देते मेरा गला भी तो अब खराब हो गया है। मेरे स्वर में अब बहुत ज्यादा कंपन उत्पन्न हो गया है।
2: स्वामी जी ने एक ब्रह्मचारी को मुक्ति पर कुछ कहने का आदेश दिया। ब्रह्मचारी ने खड़े होकर काफी देर तक भाषण दिया। उसके बाद अन्य ब्रह्मचारी भी बोले। फिर स्वामी जी ने इस विषय पर उपस्थित सज्जनों को अपने विचार प्रकट करने को कहा। उनके एक गृहस्थ शिष्य ने वाद का प्रारंभ किया। जब वे अद्वैत और ज्ञान को भक्ति और द्वैत से श्रेष्ठ बताने लगे तो बीच में कहीं किसी श्रोता ने प्रतिवाद किया। जब वे दोनों अपने अपने पक्षों का खंडन करने लगे तो एक अच्छा खासा वाद विवाद आरंभ हो गया। स्वामी जी कुछ देर तो सुनते रहे, पर जब उन्होंने देखा कि दोनों आवेश में आ रहे हैं तो उन्हें शांत करते हुए बोले,
1: देखिए देखिए, आप लोग विवाद में इतना आवेश लाकर सब मजा किरकिरा कर देते हैं। सुनो, श्री राम कृष्ण देव कहते थे कि विशुद्ध ज्ञान और भक्ति में कोई अंतर नहीं है। भक्ति योग में परमेश्वर से परे कोई प्रेम का अस्तित्व ही नहीं है। भक्त के हृदय में जो ईश्वर प्रेम है, वो प्रेम भी तो परमेश्वर ही है।
0: उन्होंने बात को समझाते हुए आगे कहा,
1: इस तरह भक्ति द्वैत कहां रहा? इसी प्रकार जो भी इच्छाएं हैं, आकर्षण हैं, वृत्तियां हैं, वे भी ईश्वर के ही रूप हैं। माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, इन सब भावनाओं और वृत्तियों में भी ईश्वर ही है। एक ग्रह पुंज दूसरे ग्रह पुंज को आकर्षित करता है, उसमें भी ईश्वर ही है, सर्वत्र वही है। ज्ञान योग के अनुसार भी वो सर्वत्र विद्यमान है, इसलिए ज्ञान और भक्ति में विरोध कहाँ है? वे तो एक ही विषय का प्रतिपादन करते हैं।
3: महाराज, माँ की ममता में ईश्वर रह सकता है, पर इससे तो यही निष्कर्ष निकलता है कि ईश्वर जगत के सत्कार्यों का जितना कारणीभूत है उतना ही पाप का भी है।
1: ये दृष्टि केवल परम सिद्धावस्था तक पहुंच जाने पर ही प्राप्त होती है। तभी ऐसा लगता है कि जहां भी प्रेम या आकर्षण है वहीं ईश्वर है। पर अपने जीवन में ऐसी दृष्टि प्राप्त करने के लिए उस अवस्था का प्राप्त होना आवश्यक है।
3: फिर भी यह तो स्वीकार करना ही होगा कि पाप में भी ईश्वर ही है।
1: देखो, यथार्थ में ना तो कोई चीज भली है और ना बुरी है। यह तो केवल एक परिपाटी है कि हम किसी चीज को भली या बुरी कह देते हैं। एक ही चीज को हम बुरी कह देते हैं तो किसी अन्य अवसर पर उसे भली कहने लगते हैं। कोई वस्तु अच्छी है या बुरी, ये उसके उपयोग पर निर्भर करता है।
3: वो कैसे स्वामी जी?
1: उदाहरण के लिए इस दीप ज्योति को ही लो। इसके प्रकाश में हम पढ़ते हैं और कई अन्य उपयोगी काम भी करते हैं। ये उसके उपयोग का एक प्रकार है। अच्छा, अब यदि उसमें कोई अपनी उंगली रखे तो वो जल जाएगी। ये उसके उपयोग का दूसरा प्रकार है। इस प्रकार कोई वस्तु जिस प्रकार उपयोग में लाई जाती है, इसी से उसके भले बुरे का निर्णय होता है। इसी प्रकार सद्गुण दुर्गुण, पाप और पुण्य है। हमारी मानसिक व शारीरिक प्रवृत्तियों का उचित उपयोग ही पुण्य है और उनका अनुचित उपयोग व ह्रास ही पाप है।
2: इस तरह कई प्रश्नोत्तर हुए। फिर किसी ने कहा, नक्षत्र तारा ग्रह मंडलों के परस्पर आकर्षण में भी ईश्वर है। ये सिद्धांत सच हो या ना हो, पर यह विचार अत्यंत कवित्वमय है, इसमें कोई संदेह नहीं।
1: नहीं महाशय, ये कल्पना की उड़ान नहीं। ज्ञान प्राप्ति होने पर इस महान सत्य का आप स्वयं दर्शन कर सकते हैं।
0: स्वामी जी आगे जो कुछ बोले उसका आशय ये था, पुरुष और प्रकृति, आत्मा और जड़ यद्यपि भिन्न मालूम होते हैं, तथापि वे एक ही तत्व के दो रूप हैं। इसी प्रकार ब्रह्म और अंतर जगत में जो भिन्न भिन्न शक्तियां क्रियाशील हैं, वे भी एक ही महाशक्ति की अभिव्यक्तियां हैं।
3: महाराज, तो यह माया क्यों है और आई कहां से?
1: ईश्वर के संबंध में क्यों का प्रश्न करना गलत है। जो अपूर्ण है, जिसमें अभाव और कामनाएं हैं, उसी के संबंध में क्यों का प्रश्न किया जा सकता है। जो निष्काम है, जो पूर्ण है, एक है उसके संबंध में क्यों कैसा, माया कहां से आई, ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। देश काल निमित्त ही माया है। तुम, मैं और हम सब माया में हैं, तथा तुम माया में रहते हुए ये प्रश्न कर रहे हो कि माया के परे क्या है। तुम जब तक माया में हो तब तक ये कैसे कह सकते हो।
2: इसके पश्चात फिर कई प्रश्नोत्तर हुए। फिर मिल, हैमिल्टन, हर्बर्ट, स्पेंसर आदि पाश्चात्य पंडितों के दर्शन शास्त्र पर चर्चा हुई और स्वामी जी ने सरलता से सब समझाया। सबको स्वामी जी का पाश्चात्य दर्शन का अगाध ज्ञान देखकर आश्चर्य हुआ। इसके बाद विविध सामयिक प्रश्नों पर चर्चा हुई और सभा विसर्जित हो गई।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: दोपहिया वाहन की सवारी करते समय हेलमेट जरूर पहने। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।
1: देश के वीर जवानों को समर्पित शौर्य स्मारक की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर संगीत संध्या का आयोजन। सुनिए मिलिट्री बैंड की सांगीतिक प्रस्तुति। इसके साथ ही आप देख सकते हैं शस्त्र प्रदर्शनी 14 अक्टूबर शाम 6 बजे शौर्य स्मारक अरेरा हिल्स भोपाल, स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठा आयोजन। आप सभी सादर आमंत्रित हैं।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, रात्रि के 10 बजे हैं, हमारी यह सभा अब संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।